सुप्रभात। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, आश्विन माह की तिथि 15, तदनुसार 7 अक्टूबर ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as the head of a government. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as the Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as the Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as the Chief Minister of Gujarat. He became the Prime Minister in May 2014. To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnav said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are very few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The Bharatiya Janata Party and Prime Minister Narendra Modi have always pursued public service, national service and the spirit of putting the nation first and the nation above all with clear intentions and clear policies. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire country. He said Prime Minister Narendra Modi introduced several changes in Gujarat through his programs and policies for which Mr. Modi was honoured across the world. The Gujarat model was recognized and appreciated across the world and was subsequently implemented across India. To mark the occasion, BJP launched nationwide celebratory campaign called the Seva Sankalp Abhiyan. Running from September 17th to October 17th, the initiative features nationwide public welfare programs, blood donation drives and cultural yatras connecting Vadnagar, PM Modi's birthplace, to Varanasi, his parliamentary constituency. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Prime Minister Modi interacted with Global System for Mobile Communications Association, GSMA board members at Seva Teerth yesterday ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from 7th to 10th of this month in New Delhi. Mr. Modi stressed that democratization of technology is essential to ensure that no section of society is left behind. He emphasized the need to make technology and digital services affordable and accessible, particularly for the Global South, and highlighted the importance of taking technology to the last mile to prevent a widening digital divide. The Prime Minister highlighted the potential of digital public infrastructure, DPI, as a transformative force, particularly for developing countries. He noted that discussions on DPI with several world leaders had demonstrated its growing global relevance and said that such platforms can serve as a springboard for countries of the Global South. Government has notified the schedule of permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBGRAMJI Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. Ministry of Rural Development said that the new schedule represents a 41% expansion over the 266 works under the previous framework. The works have been recognized around 4 thematic pillars, including water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works for extreme weather events and disaster preparedness. India defeated West Indies by 8 wickets in the opening T20I in Lucknow last night to take a 1-0 lead in the 5-match series. Put into bat, West Indies were bowled out for 171 in 19.1 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: Sh श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं चारुसेन, राजेंद्र और साथी।
4: 218 218।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्रीराम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे चारुसेन राजेंद्र और साथी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में इस भजन से।

श्रोताओं, ये भक्ति में रचना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। और अब आइए अगली रचना सुनते हैं ओम व्यास के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ओम व्यास के स्वर में ये भक्तिमय रचना। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्तिमय रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे कुमार आनंद के स्वर में गीतों का। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा सवेरे 8:30 पर। हमारे केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक होगा सवेरे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे बांग्ला लोकगीतों का अबसुद्दीन अहमद के स्वर में। श्रोताओं, सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। सवेरे 10 सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। उसके बाद आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा सवेरे 10:30 पर। श्रोताओं, आकाशवाणी रांची से ही दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर पुनः सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दिन के 3 आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 4 मुख्य समाचार। शाम 4:02 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 5 सुनिएगा मुख्य समाचार। उसके बाद हमारे केंद्र से शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायिका द्वारा गाए गए फिल्मी गाने। श्रोताओं, शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी, इसमें चर्चा का विषय होगा बीज उपचार। मनोरंजन कीजिएगा हो लोकगीत से मिलानी बोदरा और साथियों के स्वरों में, और साथ ही आपका मनोरंजन करवाएंगे उड़ाव लोकगीत से रमेश लकड़ा और साथियों के स्वरों में। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे, और साथ ही आपको विभिन्न जानकारियां भी प्रदान की जाएंगी। श्रोताओं, शाम 6 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम 6:02 पर सुनिएगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा, इसमें आपका मनोरंजन करवाएंगे जोमनामा गीत से वीर सिंह हेमब्रम और साथियों के स्वरों में। आज की भेंटवार्ता का विषय होगा खेतीबाड़ी के साथ बकरी पालन। भेंटवार्ताकार होंगे यशवती गुइया, उनसे बातें कर रहे होंगे महेंद्र गुइया। साथ ही मनोरंजन करेंगे आंधी लोकगीत से बेलमती माई हाईबुरु और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 6:30 पर सुनिएगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम मनोरमा। शाम 7 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा हमारी श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद शाम 7:15 पर। शाम 8 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जी हाँ, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीकांता। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। रात्रि 10 हमारे केंद्र से सुनिएगा गजलों का प्रोग्राम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग होगा रात्रि 10

5:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर, और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं कुमार आनंद के स्वर में गीतों का। सबसे पहले आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया ये गीत।

श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं कुमार आनंद के स्वर में गीतों का। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं, जिसे लिखा रमानाथ अवस्थी जी ने।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे थे कुमार आनंद के स्वर में गीतों का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सबको हमारा नमस्कार और जोहार। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आराधना।

ये था फिल्म आराधना का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत येसुदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम है संपर्क।

फिल्म संपर्क का ये गीत अभी आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज़ में। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ। आइए अब सुनते हैं अगला गीत मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जंगली।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में फिल्म गीत का ये गाना। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जोहार चायवासा में। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोता, वो गीत हमने लिया है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का ये गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सीता और गीता।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

फिल्म बाबू का ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और भाई सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रंगोली का ये गीत।

और अब श्रोताओं आइए बात करते हैं उनकी जिनकी बदौलत आज हम अपने घरों में सुरक्षित है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हमारी भारतीय सेना के वीर सैनिकों की। श्रोताओं, जब हम कोई त्यौहार मना रहे होते हैं तब हमारे सैनिक बर्फीली पहाड़ियों और तपते रेगिस्तान में देश की रक्षा कर रहे होते हैं। वे अपने परिवार से दूर हर पल मौत से लड़ते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। श्रोता, उनका ये बलिदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे हंसते हंसते देश के लिए जान दे देते हैं और तिरंगे में लिपट कर अमर हो जाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इन वीर जवानों को जो है उनके त्याग और उनके बलिदान को दिल से सलाम करें। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म लीडर का ये गीत है।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का जोहार चायबासा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जल मार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जल मार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जल मार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिक्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जल मार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन दिल्ली में आराम हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है कि आवास परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात की। एक रिपोर्ट।
4: गोवा देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेइचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है। उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर सीबीआई के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
2: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. We have more from a correspondent.
7: To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnaw said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are very few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire country. He said Prime Minister Narendra Modi introduced several changes in Gujarat through his programs and policies for which Mr. Modi was honored across the world. The Gujarat model was recognized and appreciated across the world and was subsequently implemented across India. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
6: Vice President C.P. Radhakrishnan has greeted Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of service to the nation as head of government. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, Mr. Modi's journey as Pradhan Sevak has transformed the vision of inclusive development into a nationwide mission guided by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. is that across his visits to states and union territories, he has witnessed Bharat's visible transformation through improved connectivity, digital advancement, expanding opportunities, and inclusive development. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu praised Prime Minister Modi, highlighting several core qualities that he believes makes the Prime Minister's journey exceptional. In an article in an English daily today, Mr. Naidu said clarity of vision, integrity, discipline, attention to detail, and above all, the ability to execute make Mr. Modi an exceptional leader. The government has notified the schedule of permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VVG Ramji Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. Ministry of Rural Development said the new schedule represents a 41% expansion over the 266 works under the previous framework. We have a report.
8: The works have been reorganized around four thematic pillars: water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works for extreme weather events and disaster preparedness. The water security pillar comprises 128 works, the highest among the four categories. It includes check dams, gully plugs, underground dikes, recharge septs, injection walls, rejuvenation of rivers, rivulets and nalas, reclamation of waterlogged land, and renovation of field water distribution channels. Every work will originate through a bottom-up decentralized planning process under the Viksit Gram Panchayat plan approved by the Gram Sabha and will be tracked through the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
6: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Prime Minister Modi interacted with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Seva Tirth yesterday, ahead of the India Mobile Congress. Mr. Modi stressed that democratization of technology is essential to ensure that no section of society is left behind. He emphasized the need to make technology and digital services affordable and accessible, particularly for the Global South, and highlighted the importance of taking technology to the last mile to prevent a widening digital divide. The 10th edition of India Mobile Congress will begin at Yashobhoomi in New Delhi today. With the theme Scale Without Boundaries, it will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity, and technological innovation, while providing a global platform for collaboration, investment, and knowledge exchange. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the event tomorrow. The event will feature the ministerial program on investing in the next billion digital connections, CEO roundtable on the sovereign inflection and the future of telecom, AI for good, cybersecurity summit, 6G symposium, Startup World Cup India 2026, ITU build-a-thon on AI agents for 5G networks, AI safety, India-UK panel, Robotics for Youth Challenge, and other global technology programs. It will bring together over 1.5 lakh attendees, over 500 exhibitors and partners, over 600 startups, and over 900 thought leaders. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will address the second India EFTA Prosperity Summit 2026 at Bharat Mandapam today to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. The summit will bring together senior government officials, industry leaders and key stakeholders from India and EFTA states, Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein, to further strengthen economic cooperation, foster business partnerships, and unlock new opportunities in trade, investment, technology collaboration, and innovation. With the theme Building a $100 billion investment partnership, creating 1 million jobs in India, the summit will focus on reviewing TEPA progress, announcing new investments, strengthening industry-government collaboration, and exploring opportunities across key sectors. This is Akashvani giving you the news.
9: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
6: President Draupadi Murmu is currently on a three-day official visit to Himachal Pradesh. On arriving in Bilaspur yesterday, she attended the first convocation ceremony of AIIMS Bilaspur, where she conferred medals and degrees upon meritorious students. On the second day of her visit today, the President is scheduled to visit the Atal Tunnel Rohtang. We have more from a correspondent.
3: On the second day of her three-day visit to Himachal Pradesh, President Draupadi Murmu is scheduled to visit Atal Tunnel Rohtang today. She will visit both the northern and southern portals of the tunnel and receive information about the historic tunnel from officials of the Border Roads Organization. In the afternoon, President Murmu will also offer prayers at the famous Hidimba Temple in Manali. Elaborate security arrangements have been put in place in Manali, Atal Tunnel Rohtang and surrounding areas in view of the President's visit. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Manali.
6: A 4.9 magnitude earthquake struck Uttarakhand's Chamoli district last night, sending tremors across several parts of the state and parts of Delhi NCR. According to the National Center for Seismology, NCS, the earthquake occurred at around 10:24 p.m. with its epicenter in Chamoli at a depth of approximately 13 kilometers. The Reserve Bank of India will announce its bi-monthly monetary policy today, with several experts expecting a rate hike after nearly 3.5 years as inflation pressures rise due to the continuing West Asia conflict. The last repo rate hike was in February 2023, when the RBI raised the rate by 0.25% to 6.50%. It then kept the rate unchanged through 2023-24, before beginning its rate cut cycle in 2025. Currently, the RBI's policy repo rate stands at 5.25%. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva, say Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving

0: ये आधार सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना,
1: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देशव्यापी सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन। रांची समेत राज्यभर में भव्य तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग की बड़ी पहल। आज से 9 अक्टूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष डिजिटल कैंप। साहिबगंज बरहड़वा रेल खंड पर सकरी गली और महाराजपुर के बीच प्रभावित डाउन लाइन पर परिचालन बहाल। आज से सामान्य रूप से दौड़ेंगी सभी ट्रेनें। और जेसीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच के लिए भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें आज पहुंचेंगी रांची। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े 3 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में भी इस अभियान के तहत सभी जिलों में विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। राज्य में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्देश दिया है कि 7, 8 और 9 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप लगाए जाएं। श्री कुमार ने बताया कि इसके साथ ही 10 अक्टूबर को मेगा हेल्प डेस्क का आयोजन होगा।
1: 10 अक्टूबर का एक मेगा हेल्प डेस्क कैंप करा रहे हैं ताकि प्रत्येक वोटर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। वहां पर बीएलओ भी रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के BLA2 भी रहेंगे। इससे कितना भी इश्यू होगा उसका शॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐसा भी वोटर के पास चर्चा होगा, उनका जन्म कहाँ हुई थी, उनका माता पिता का भारत में कहाँ जन्म हुई थी, उसके बारे में भी वहां पर चर्चा होगी। फिर नया वोटर है, इनका 18 उम्र हो रही है 1 अक्टूबर 2026 में, उनका भी चर्चा करके उनका भी फॉर्म लेने के लिए किया जाएगी।
0: प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में आयोजित भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है।
2: यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ निराशा ही मिली, और जो उन्होंने घोषणा पत्र में जितनी बातें बोली थी वो बिल्कुल जमीन पर जीरो है। न स्वास्थ्य सेवा है, न शिक्षा है, न सड़क और न ही सिंचाई के मामले में। इसलिए यहाँ पर रहने वाला हर गरीब हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सब परेशान, इसलिए कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होगी।
0: पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल से यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। साहिबगंज बरहड़वा रेलखंड के सकरी गली और महाराजपुर स्टेशनों के बीच प्रभावित डाउन लाइन पर पुनर्बहाली का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मालदा के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा जांच के बाद इस ट्रैक पर परिचालन शुरू कर दिया गया है।
3: करीब एक हफ्ते की मेहनत के बाद करीब 800 कर्मचारी और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं उन्होंने दिन रात 24/7 वहां पर मेहनत की और काफी टेक्निकल पे इनपुट दिया जिससे कि वहां पर जो बैंक का प्रोटेक्शन है वो संभव हो गई। और उसकी वजह से पहली ट्रेन पैसेंजर ट्रेन एक चालू कर दी है, बाकी ट्रेन्स भी आज चालू कर दी गई है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रांची के विभिन्न दुर्गा पूजा और शांति समितियों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। सदस्यों ने मुख्यमंत्री को मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर पूजा उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने सुचारू व्यवस्था और जिला प्रशासन के पूर्ण सहयोग के लिए राज्य सरकार की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज में वन्यजीव सप्ताह के तहत कोटाल पोखर के एक विद्यालय में जलीय जीव संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने गंगा डॉल्फिन को स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान बताते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया।
4: वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। सेशन गैंजेटिक डॉल्फिन पे आधारित था, तो हमें ये इंश्योर करना रहता है कि जो डेथ हुआ है वो नेचुरल डेथ हुआ हो। हर स्पीसीज में पॉपुलेशन स्टेबल रहता है, इसीलिए हम पॉपुलेशन लगातार काउंट करते हैं। नेचुरल डेथ से हमें कोई बुराने की आवश्यकता नहीं, यहाँ का पॉपुलेशन स्टेबल है और अच्छा ग्रो कर रहा है।
0: आज दुनिया भर में वर्ल्ड फाइनेंशियल डे मनाया जा रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि वित्तीय नियोजन यानी सही फाइनेंशियल प्लानिंग जीवन के हर मोड़ पर कितनी जरूरी है, फिर चाहे वह बच्चों की पढ़ाई हो, रोजमर्रा के खर्च हो या रिटायरमेंट का सुरक्षित भविष्य। हमारे राज्य झारखंड के लोगों के लिए यह जागरूकता क्यों आवश्यक है, सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
5: संपदा से समृद्ध झारखंड की धरती जितनी अमीर है, यहाँ के आम लोगों को आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध बनाने के लिए सही वित्तीय नियोजन की जरूरत है। राज्य के ग्रामीण इलाकों से लेकर रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों तक अब लोग सिर्फ पारंपरिक बचत से आगे बढ़कर निवेश की अहमियत को समझ रहे हैं। चाहे खेती किसानी से होने वाली आय हो या नौकरी पेशा वर्ग की कमाई, सही जगह निवेश ना होने के कारण भविष्य की जरूरतें जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक खर्चे एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। वित्तीय जानकारों का मानना है कि सही समय पर लिया गया छोटा सा निवेश का फैसला भी बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। आज वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे पर जरूरत इस बात की है कि झारखंड का हर नागरिक अपनी कमाई को सही दिशा दे, ताकि हमारा राज्य न सिर्फ संसाधनों में बल्कि हर घर की आर्थिक स्थिति में भी आत्मनिर्भर बन सके। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
0: मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई हिस्सों के लिए आज विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत और वेस्टइंडीज T20 मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज दोनों टीमें रांची पहुंच रही हैं। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मैच के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और खिलाड़ियों सहित प्रशंसकों की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद किया गया है।
6: स्टेडियम में इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी कुछ सुधार किया गया है। साथ ही साथ जो इस बार जो टिकट काउंटर की जो बैरिकेडिंग है उसमें भी काफी सुधार हुआ है, और साथ ही साथ हमारी जो क्राउड चैनलिंग है, इमरजेंसी एग्जिट उसको कैसे हैंडल करना है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस किस तरीके से करने हैं, साथ ही साथ एक गेट का क्राउड दूसरे गेट तक ना पहुंचे क्योंकि जो व्यवस्था है वो खराब दिखती है, उस चीज को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले T20 मैच से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज भी ऑनलाइन मिलेंगी टिकट, भारत और वेस्टइंडीज की टीम रांची पहुंचेगी। प्रभात खबर लिखता है, रांची की सबसे सस्ती टिकट लखनऊ से 4 गुना तो इंदौर से 600 रुपए ज्यादा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सीएम का निर्देश, त्योहारों पर राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखें। दैनिक जागरण ने लिखा है, BIT मिश्रा में छात्र को खेलते समय लगा करंट, भड़का आक्रोश। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देशव्यापी सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन। रांची समेत राज्यभर में भव्य तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग की बड़ी पहल। आज से 9 अक्टूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष डिजिटाइजेशन कैंप। साहिबगंज बढ़ावा रेलखंड पर सकरी गली और महाराजपुर के बीच प्रभावित डाउन लाइन पर परिचालन बहाल। आज से सामान्य रूप से दौड़ेंगी सभी ट्रेनें। और जेएससीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच के लिए भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें आज पहुंचेंगी रांची। सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 8:46 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आइए आनंद लेते हैं बांग्ला लोक गीतों का। कलाकार हैं अवसुद्दीन अहमद।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक में आज आप आनंद ले रहे हैं बांग्ला लोकगीतों का। कलाकार हैं अबसुद्दीन अहमद और साथी।

होता हूँ। इसी के साथ ही हमारा आज का लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे बांग्ला लोक गीतों का कलाकार थे अवसुद्दीन अहमद और साथी। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

नमस्कार श्रोताओं, विविध कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और हमारे कार्यक्रम भी आप लगातार सुन रहे होंगे। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि इंसानों के विकास के बाद हमने धरती के जो है, जो धरती है और उसके जो आवरण है उसको हमने बदल दिया है। श्रोताओं, आज जो है इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। श्रोताओं,

0: श्रोताओं, अगर सुबह की जो है शुरुआत पक्षियों की चहचहाट से न हो, अगर जंगल में शेर की दहाड़ और हिरणों की चहलकदमी गायब हो जाए, तो हमारी यह दुनिया कैसी दिखेगी? ज़रा सोचिए, बेरंग, सूनी और बेजान, है ना? श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं खूबसूरत साथियों की जो इस धरती पर हमारे साथ रहते हैं, हमारे वन्य जीव। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि वन्य जीवों का इंसान की ज़िंदगी से क्या लेना देना। हाथी, बाघ, हिरन या छोटे छोटे कीड़े मकौड़े जंगल में रहते हैं, उनसे हमारा क्या वास्ता। लेकिन सच तो यह है कि उनके बिना हमारी सांसें भी अधूरी है। श्रोताओं, प्रकृति ने एक बहुत ही सुंदर ताना बाना बुना है, जिसे हम इकोसिस्टम या पर्यावरण चक्र कहते हैं। श्रोताओं, अगर जंगल में बाघ और शेर न हो तो शाकाहारी जानवरों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि सारे जंगल और खेत खत्म हो जाएंगे। और अगर जंगल खत्म हो गए तो न तो बारिश समय पर होगी और ना ही हमें साफ हवा मिलेगी। पेड़ जो है श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि जंगलों में जो बड़े बड़े पेड़ उगते हैं, उनके बीज फैलाने का काम ये पक्षी, गिलहरियां और जानवर ही करते हैं। वे हमारे पर्यावरण के असली माली हैं। हमारी कई जीवन रक्षक दवाएं और वैज्ञानिक शोध इन्हीं वन्य जीवों और उनसे जुड़े संसाधनों पर निर्भर करते हैं। लेकिन श्रोताओं, अफसोस की बात यह है कि हम इंसान अपनी ज़रूरतों और लालच के चक्कर में इनके घरों यानी जंगलों को जो है काट रहे हैं। श्रोताओं, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं और वन्य जीव बेघर हो रहे हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि बाघ सड़कों पर आ गए या हाथी बस्तियों में घुस गए। गलती उनकी नहीं है श्रोताओं, हमने उनके घरों पर कब्जा किया है। श्रोताओं, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर आज हमने उन्हें यानी कि जानवरों को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ी इन सुंदर जीवों को केवल किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएगी। तो श्रोताओं, अभी ये सवाल उठता है कि हम आखिर कर क्या सकते हैं। बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत छोटी छोटी बातों से भी की जा सकती है। जैसे अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये कचरा नदियों और जंगलों तक पहुंचकर जानवरों की जान लेता है। पेड़ों को कटने से बचाएं और अपने आसपास पौधे लगाएं। और सबसे ज़रूरी बात, वन्य जीवों के प्रति अपने मन में दया और सम्मान का भाव रखें। श्रोताओं, याद रखिए, जब सुरक्षित रहेंगे वन्य जीव, तभी सुरक्षित रहेगा हमारा कल। तो श्रोताओं, इस खूबसूरत चर्चा के बाद अब आइए बात करते हैं वित्तीय नियोजन की। श्रोताओं, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभाल कर और सही जगह लगाकर भविष्य को सुरक्षित करना भी एक विज्ञान है। श्रोताओं, आमतौर पर लोगों को लगता है कि वित्तीय नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों, अमीरों या बैंक अधिकारियों का काम है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वित्तीय नियोजन सबसे ज़्यादा एक आम मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ताकि वो अपनी सीमित कमाई में भी अपने और अपने परिवार के सपनों, जैसे बच्चों की पढ़ाई, खुद का घर, मेडिकल इमरजेंसी और सेवानिवृत्ति को बिना किसी मानसिक तनाव के पूरा कर सके। श्रोताओं, हर साल अक्टूबर महीने के पहले बुधवार को दुनिया भर में विश्व वित्तीय नियोजन दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज विश्व वित्तीय नियोजन दिवस मनाया जा रहा है। श्रोताओं, इस दिन को मनाने की शुरुआत फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FPSB और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशंस यानी कि IOSCO द्वारा की गई थी। श्रोताओं, आम जनता को पैसे के सही प्रबंधन, बचत, सही निवेश और वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। श्रोताओं, यह दिन हमें याद दिलाता है कि केवल कड़ी मेहनत से पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पैसे से अपने लिए सही योजना बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। चाहे कमाई छोटी हो या बड़ी, एक व्यवस्थित योजना से ही इंसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है। श्रोताओं, वित्तीय नियोजन को आप अपने सफ़र के लिए एक नक्शा मान सकते हैं। जिस तरह आप किसी अज्ञात जगह जाने से पहले रास्ता तय करते हैं, उसी तरह अपनी आज की कमाई में से कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और बचे हुए पैसे को कहाँ लगाना है, ताकि भविष्य में आने वाले खर्च आसानी से पूरे हो सके, इसी पूरी प्रक्रिया को वित्तीय नियोजन कहते हैं। श्रोताओं, इसे आसान बनाने के लिए 50-30-20 का नियम मददगार साबित हो सकता है। यानी कि आपकी कुल आय का आधा हिस्सा मकान का किराया, राशन, बिजली पानी का बिल और बच्चों की स्कूल फीस जैसी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च किया जा सकता है। उसके बाद 30% घूमना फिरना, बाहर खाना या कपड़े खरीदने जैसे इच्छाओं को जो है इसकी पूर्ति के लिए खर्च की जा सकती है। और 20% बचत और निवेश, कम से कम 20% हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर सही जगह निवेश किया जा सकता है। श्रोताओं, एक आम आदमी के लिए वित्तीय नियोजन के जो मुख्य चरण होते हैं, जैसे कि आपातकालीन कोष बनाना चाहिए। जीवन अनिश्चित है, अचानक नौकरी छूटना, बीमारी या घर में कोई बड़ा काम आ जाने पर लोग कर्ज में डूब जाते हैं, इसलिए हर व्यक्ति के पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक अलग बैंक अकाउंट या किसी फंड में आपातकालीन कोष के रूप में जमा होना चाहिए। अचानक जो है अस्पताल का खर्च आपकी पूरी जमा पूंजी खत्म कर सकता है। एक सही मेडिकल क्लेम यानी कि स्वास्थ्य बीमा बेहद जरूरी है। और है जीवन बीमा, परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि किसी अनहोनी के बाद भी परिवार को आर्थिक तंगी ना झेलनी पड़े। श्रोताओं, हमारा जो बचत होता है और जो हम निवेश करते हैं, वो लक्ष्य आधारित होना चाहिए। अपने सपनों को समय के हिसाब से बांट लेना अच्छा रहता है। जैसे अगले 1 या 2 साल के खर्च, इसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट किया जा सकता है। और दीर्घकालिक, जैसे कि 5 से 10 साल के बाद के खर्च, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, घर, इसके लिए म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश किया जा सकता है। श्रोताओं, अनावश्यक कर्ज जैसे महंगे ब्याज वाले पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड बिल आपकी वित्तीय सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही लोन लें और समय पर उसकी EMI चुकाएं। श्रोताओं, जिस दिन आपकी नियमित कमाई बंद हो जाएगी, उस दिन भी जीवन के बुनियादी खर्च जारी रहेंगे, इसलिए युवावस्था से ही पेंशन योजनाओं या लंबी अवधि के निवेश साधनों में पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। श्रोताओं, विश्व वित्तीय नियोजन दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने वित्तीय फैसलों को किस्मत या भरोसे पर न छोड़कर एक सोच समझकर बनाई गई योजना पर आधारित करेंगे। वित्तीय नियोजन के लिए बहुत अधिक पैसे की नहीं, बल्कि अनुशासन और सही आदतों की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, याद रखें, आज की गई छोटी छोटी सही वित्तीय बचत और नियोजन कल आपके परिवार के लिए एक बड़े और मजबूत पेड़ की तरह छांव देगी। श्रोताओं, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अब आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। श्रोताओं, आज 7 अक्टूबर है और आज ही के दिन निधन हुआ था, या कह लीजिए कि शहादत दिवस है गुरु गोविंद सिंह जी की। श्रोताओं, आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी बातें। श्रोताओं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। उनका मूल नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह जी को सैन्य जीवन के प्रति लगाव अपने दादा गुरु हरगोविंद सिंह जी से मिला था और उन्हें महान बौद्धिक संपदा भी उत्तराधिकार में मिली थी। वे बहुभाषाविद थे जिन्हें फारसी, अरबी, संस्कृत और अपनी मातृभाषा पंजाबी का ज्ञान था। उन्होंने सिख कानून को सूत्रबद्ध किया, काव्य रचना की और सिख ग्रंथ दसम ग्रंथ दसवां खंड लिखकर प्रसिद्धि पाई। उन्होंने देश, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को संगठित कर सैनिक परिवेश में डाला। दशम गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं एक ऐसे महापुरुष थे जो उस युग की आतंकवादी शक्तियों का नाश करने तथा धर्म एवं न्याय की प्रतिष्ठा के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह जी के यहाँ अवतरित हुए थे। श्रोताओं, गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के समय देश पर मुगलों का शासन था। धर्मांतरण की जबरदस्ती कोशिश उस समय के बादशाह द्वारा की जाती थी। इसी समय 22 दिसंबर सन 1666 को गुरु तेग बहादुर जी की धर्मपत्नी माता गुजरी जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जो गुरु गोविंद सिंह के नाम से विख्यात हुए। पूरे नगर में बालक के जन्म पर उत्सव मनाया गया। खिलौनों से खेलने की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी कृपाण, कटार और धनुष बाण से खेलना पसंद करते थे। वे बचपन में शरारती थे, लेकिन वे अपनी शरारतों से किसी को परेशान नहीं करते थे। वे एक निसंतान बुढ़िया जो सूत कात कर अपना गुजारा करती थी से बहुत शरारत करते थे। वे उसकी पुनियाँ बिखेर देते थे। इससे दुखी होकर वो उनकी माँ के पास शिकायत लेकर पहुँच जाती थी। माता गुजरी पैसा देकर उसे खुश कर देती थी। माता गुजरी ने गोविंद जी से बुढ़िया को तंग करने का कारण पूछा तो उन्होंने सहज भाव से कहा, उसकी गरीबी दूर करने के लिए। अगर मैं उसे परेशान नहीं करूँगा तो उसे पैसे कैसे मिलेंगे? श्रोताओं, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गद्दी पर 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी को बिठाया गया। गुरु की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाया और संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अरबी भाषाएं सीखीं। उन्होंने धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि चलाने की कला भी सीखी। उन्होंने अन्य सिखों को भी अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। सिखों को अपने धर्म, जन्मभूमि और स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध किया और उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया। उनका नारा था, सत श्री अकाल। श्रोताओं, 5 प्यारे जो देश के विभिन्न भागों से आए थे और समाज के अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोग थे, उन्हें एक ही कटोरे में अमृत पिलाकर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बना दिया। इस प्रकार समाज में उन्होंने एक ऐसी क्रांति का बीज रोपा जिसमें जाति का भेद और संप्रदायवाद सब कुछ मिटा दिया गया। वैसाखी का एक महत्व यह है कि परंपरा के अनुसार पंजाब में फसल की कटाई पहली वैसाख को जो है शुरू हो जाती है और देश के दूसरे हिस्सों में भी आज ही के दिन यानी कि वैसाख के दिन ही फसल
कटाई का त्यौहार मनाया जाता है। जिनके नाम भले ही अलग अलग हों, श्रोताओं आज ही के दिन यदि हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के आदर्शों को देश समाज और मानवता की भलाई के लिए उनके समर्पण को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं और उनके बताए गए रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलें तो कोई कारण नहीं है कि देश के अंदर अथवा बाहर से दुश्मनों और हमलावरों जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। श्रोताओं उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का अर्थ है खालिस अर्थात विशुद्ध निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि खालसा हमारी मर्यादा और भारतीय संस्कृति की एक पहचान है जो हर हाल में प्रभु का स्मरण रखता है और अपने कर्म को अपना धर्म मानकर जुल्म और जालिम से लोहा भी लेता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नया नारा दिया, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु जी द्वारा खालसा का पहला धर्म है कि वो देश धर्म और मानवता की रक्षा के लिए तन मन धन सब निछावर कर दे, निर्धनों असहायों और अनाथों की रक्षा के लिए सदा आगे रहे। जो ऐसा करता है वो खालिस है, वही सच्चा खालसा है। ये संस्कार अमृत पिलाकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन लोगों में भर दिए जिन्होंने खालसा पंथ को स्वीकार किया था। जफरनामा में स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है कि जब सारे साधन निष्फल हो जाएं, तब तलवार ग्रहण करना न्यायोचित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 ईस्वी में धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा यानी खालिस अर्थात शुद्ध, जो मन वचन एवं कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करके उन्होंने न सिर्फ समानता स्थापित की बल्कि उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की भावना भी पैदा की। श्रोताओं एक आध्यात्मिक गुरु के अतिरिक्त गुरु गोविंद सिंह जी एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने 52 कवियों को अपने दरबार में नियुक्त किया था। गुरु गोविंद सिंह जी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं जफरनामा एवं विचित्र नाटक। वे स्वयं सैनिक एवं संत थे। उन्होंने अपने सिखों में भी इसी भावना का पोषण किया था। गद्दी को लेकर सिखों के बीच कोई विवाद ना हो इसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु का दर्जा दिया। इसका श्रेय भी प्रभु को देते हुए वे कहते हैं कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलाइयो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियहु ग्रंथ। गुरु नानक जी की 10वीं जोत गुरु गोविंद सिंह अपने जीवन का सारा श्रेय प्रभु को देते हुए कहते हैं

नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। आज मानवता स्वार्थ संदेह संघर्ष हिंसा आतंक अन्याय और अत्याचार की जिन चुनौतियों से जूझ रही है उनमें गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन दर्शन हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। और श्रोताओं, चूँकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं तो आइए जाते जाते सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। तो श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और मेरे यानी उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। आइए अब सुनते हैं अगला गीत। कुमार शानू की आवाज़ में फिल्म का नाम है चाहत।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: और श्रोताओं, ये सुनते हैं फिल्म साजन का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं अब आइए सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और अब श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म तेरे नाम का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
0: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
0: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
0: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
0: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
0: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
0: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं शुरू करते हैं
0: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा।
2: अजीत जी सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
0: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
0: और श्रोताओं उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
2: अजीत जी ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
0: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है
2: जी।
0: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
2: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गांव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
2: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
0: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
2: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
2: एक बच्चा पढ़ाना,
0: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
2: पर्यावरण की रक्षा करना,
0: ईमानदारी से अपना काम करना
2: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
0: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
2: जी तो श्रोताओं, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
0: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
2: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
0: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
2: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व तो और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हल्पल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
0: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम

0: करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
1: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
0: हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
2: नाना ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
0: बस बस मैं समझ गई।
1: वो सोचने लगी,
0: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
0: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
3: तो बच्चों सुना आपने, मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ माता पिता की जहाँ तक हो सके मदद करना, है ना ये हमारा अपना काम। तो आइए जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है। इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
3: सर,
4: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
3: गुड
4: मॉर्निंग सर।
3: नमस्ते। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
5: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
3: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
6: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
5: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
6: जी सर, और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
5: क्यों?
6: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
5: हो,
6: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
3: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग? बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए शक्कर में कर दिया जाए।
6: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
3: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
6: थैंक यू।
2: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
1: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
2: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
7: किसने खींची चेन?
5: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
6: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
7: व्हाट? क्या मजाक है, ये आप कैसे कह सकते हैं?
6: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
7: आइए आइए, देखते हैं।
6: आइए, हम भी चलते हैं।
7: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
6: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
2: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
6: आइए सर, आइए देख लीजिए।
7: अभी तक तो यहाँ भी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई हैं। मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
6: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्रायः सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
7: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
5: We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please?
6: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiya.
5: Oh, the engineer in chief of Mysore State.
3: Aur railway sachiv bhi.
7: Namaskar sir.
6: Ji sir. Main wahi hoon.
5: Namaskar sir. Namaskar. We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
6: धन्यवाद।
2: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
8: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
2: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
8: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
2: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर

सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा, मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:29 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण जोहार रांची।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: जोहार रांची सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को मीत आप बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ में है प्रतीक्षा पांडे। तो आप सभी का स्वागत है और हम दोनों मिलकर करते हैं जोहार रांची।
0: और प्रतीक्षा कैसी हो?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और मीता तुम बताओ तुम कैसी हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। और ऐसा है प्रतीक्षा कि कई बार हम बातें करते हैं, बातों के क्रम में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं।
1: मुझे पता है मीता तुम कुछ सकारात्मक और सुविचार की बात कर रही हो क्योंकि इसके बिना तो तुम्हारा दिन अधूरा रहता है। तो चलो जल्दी से हमारे श्रोताओं को बता दो।
0: सिर्फ प्रतीक्षा मेरा नहीं, हमारे श्रोताओं का भी, हमारे कार्यक्रम का भी, क्योंकि कार्यक्रम का मकसद ही है अपने श्रोताओं से हर तरह की बातें करना, उन्हें अगर हम शुरुआत अच्छी बातों से करें, कुछ सकारात्मक बातों से करें, कुछ सीख की बातों से करें तो काफी अच्छा होता है। क्योंकि सीखना हर किसी के लिए जरूरी है। आप जरूरी नहीं कि इसके लिए घंटों पढ़ाई करें, किसी नई बात को जानने के लिए किसी अच्छी किताब के कुछ पन्ने भी पढ़ लें, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ ध्यान सुन की उसकी बातें भी सुन लें, किसी पुरानी आदत को भी आप बेहतर तरीके से याद करें और अपने सीखने में उपयोग करें तो चल सकता है।
1: बिल्कुल आपने

0: सही कहा अमिता, क्योंकि हम पूरे जिंदगी सीखते रहते हैं और हम ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते कि हम सब कुछ सीख चुके हैं। और ये अनवरत प्रक्रिया है जो हर समय जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और इंसान, पक्षी, पेड़ पौधे, हर सभी कोई कुछ ना कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे भीतर हर दिन दो तरह की प्रतिक्रियाएं चलती हैं। एक प्रतिक्रिया तुरंत सुख या दुख में बदल जाती है और दूसरी उसे केवल देखती है। मुंडक उपनिषद इसे एक सुंदर रूपक से समझाता है कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी हैं। एक फल खाता है, मीठा मिले तो प्रसन्न होता है, कड़वा मिले तो दुखी। दूसरा कुछ नहीं खाता, शांत बैठा देखता रहता है। वृक्ष हमारे जीवन का प्रतीक है और फल हमारे अनुभवों का पहला पक्षी उस मन की तरह है, जो प्रशंसा से खुश और आलोचना से परेशान, सफलता से उत्साहित और असफलता से निराश हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और दूसरा पक्षी साक्षी भाव का प्रतीक है, वह चेतना जो अनुभव को पहचानती है लेकिन हर अनुभव को पहचान नहीं पाती है, उसी का प्रतीक है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी इसे मनोवैज्ञानिक दूरी के संदर्भ में समझा जाता है। एक शोध में पाया गया है कि जब व्यक्ति नकारात्मक अनुभव में डूबने के बजाय उसे कुछ दूरी बना लेता है तो उसकी भावनात्मक और शारीरिक तनाव की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है।
1: बिल्कुल, और तनाव की प्रक्रिया को धीमा करना संगीत का भी काम है। प्रतीक्षा नाएंगे, है ना?
0: बिल्कुल।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और प्रतीक्षा कहो, मौसम का आनंद भरपूर ले रही हो ना? रांची का मौसम अब कुछ अपनी अटखेलियां दिखा रहा है।
2: बिल्कुल भाई, मैं भी वही बोलने वाली थी मीता, कि घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेना बहुत जरूरी
1: मैं
2: है।
1: आज आ रही थी तो सोच रही थी छाता लूं या नहीं लूं, क्योंकि कल जिस तरह से मौसम ने हमें छकाया है,
2: बिल्कुल।
1: बादल कर रहा, लग रहा अब घनघोर बारिश होने वाली। मैं तो धूप में डाले हुए सारे कपड़े हटा ली, उसके बाद देख रही हूँ मौसम खुला है, उसके बाद फिर शाम को घनघोर शुरू हो गई।
2: बिल्कुल, मैं हमेशा छाता अपने साथ रखती हूँ, और मैं अपने श्रोताओं को भी यही बोलना चाहती हूँ कि छाता रेनकोट हमेशा साथ रखें, क्योंकि रांची का मौसम है, कभी भी बदल सकता है।
1: अभी बारिश पूरी तरह से गई नहीं है,
2: बिल्कुल।
1: भले ही आश्विन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी मतलब मौसम को आप कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है।
2: बिल्कुल,
1: तो प्रतीक्षा कुछ बता दो।
2: हाँ, आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, और बारिश आंधी का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो बारिश हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक भी हो सकती है, और रुक रुक कर बारिश भी होगी,
1: और 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।
2: बिल्कुल, और इसी हवा के साथ हम कोई गाना भी सुन लें।
1: गाना सुनना है? चलो, इतना मौसम जब इतना मस्ताना हो रहा है तो क्यों नहीं गाना हो जाए।
2: बिल्कुल।

0: मौसम मस्ताना रहता अनजाना प्रतीक्षा।
1: बिल्कुल, और मुझे पता है कि तुम ट्रैफिक की बात कर रही हो, जो कि हम अक्सर नहीं करते, लेकिन आज के दिन बहुत सारे रास्ते चेंज हुए हैं और बहुत सारी जगहों पर ज्यादा भीड़ होने वाली है।
0: हम तो ये सब जानकारी अपने श्रोताओं से नहीं देते हैं, लेकिन आज जब महत्वपूर्ण है कुछ तो, और ये हमारे श्रोताओं को जानने का हक है और उन्हें जानना चाहिए, और ये हमारा दायित्व है
1: कि
0: हम उन्हें बताएं। तो जो 9 अक्टूबर से शुरू होने वाला है खेल राजधानी के ध्रुवा जेएससी स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच उस T20 का मैच खेला जाएगा प्रतीक्षा, तो इसी को लेकर अक्टूबर को जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बदली गई है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे संबंधित जो जानकारी हमें मिली है हम अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे। शहर में भारी और माल वाहनों के प्रवेश वर्जित कर दिए गए हैं। ध्रुवा शालीमार चौक से स्टेडियम तक जाने वाले मार्ग में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। सुजाता चौक, बीग बाजार कटिंग, राजेंद्र चौक, एजी मोड़, पीसीएस मोड़, आईलेक्स कटिंग, हिनू चौक, बिरसा चौक, एचईसी गेट, पुराना विधानसभा, ध्रुवा गोलचक्कर, शहीद चौक, देवेंद्र मांझी चौक और कडरू ब्रिज अरगोड़ा चौक के बीच सभी प्रकार के छोटे बड़े मालवाहक, ऑटो, टोटो और यात्री वाहन का सुबह 6 से क्रिकेट मैच की समाप्ति तक के लिए प्रवेश परिचालन वर्जित रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने मीता, और ये जो रास्ते में बदलाव है या भीड़ है या ट्रैफिक है, ये त्योहार आने वाले हैं, पंडाल भी बन चुके हैं रास्तों में, उसके वजह से भी ये ट्रैफिक में कुछ बदलाव किए गए हैं, और बारिश की वजह से भी बहुत सारे रास्ते में पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से भी बदलाव किए गए हैं।
0: हाँ, जो नया सराय रिंग रोड होते हुए आएंगे वे अपने वाहन को हाईकोर्ट के सामने हेलीपैड मैदान में पार्क कर सकते हैं। वहां से पैदल तिरिल मोड़ SCA नॉर्थ गेट होते हुए स्टेडियम में जा सकते हैं, और VVIP पास वाहनों के लिए शालीमार बाजार, प्रभात तारा मैदान, पारस अस्पताल होकर क्रिकेट स्टेडियम नॉर्थ गेट के बगल वाले VIP प्रेस मार्ग से प्रवेश कर स्टेडियम नॉर्थ गेट स्थित पार्किंग स्थल में जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारे श्रोता इस समय हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो जाहिर है वो ध्यान देंगे इस बात को, बहुत सारे श्रोता भी होंगे।
1: हाँ, बिल्कुल, और यानी कि क्रिकेट देखने के लिए खिलाड़ियों को ही नहीं, आपको भी मेहनत करनी होगी और थोड़ा चल कर जाना होगा।
0: आम जनता जो है उन्हें भी जानकारी हो जाएगी, तो कम से कम वो अभी से सतर्क हो जाएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। 9 बजे सुबह से रात 11 बजे तक वो मालवाहक गाड़ियां नहीं चलेंगी, ये तो हमने बता दिया।
1: बिल्कुल,
0: और 9 अक्टूबर की सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का शहर में पूरी तरह वर्जित रहेगा। मालवाहक गाड़ियां जो किधर से जाएंगी प्रतीक्षा, ये भी हम अपने श्रोताओं को बता दें, वो अपने गंतव्य तक जाएंगे रिंग रोड से होकर।
1: बिल्कुल, तो भाई जब गाड़ियां चला रहे हैं और रास्ता चेंज कर रहे हैं तो रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, और इस लंबे रास्ते को छोटा करते हैं एक गाने के साथ।
0: बिल्कुल।

0: एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं प्रतीक्षा, यही जिंदगी की हकीकत है, यही जिंदगी का सच है,
1: बिल्कुल
0: और यही वक्त है जो गुजरता चला जाता है और इतिहास के पन्नों में दब जाता है, लेकिन हम यानी कि जो
1: मुझे
0: हर
1: मुझे
0: रांची
1: पता
0: वाले
1: है कि आप इतिहास की बातें अब करने वाली हैं
0: हाँ
1: और कुछ कुछ बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने वाली हैं, तो
0: बिल्कुल,
1: चलिए शुरू करते
0: हम
1: हैं।
0: इतिहास की बहुत सारी बातें अपने श्रोताओं को बताते हैं, लेकिन आज इतने सारे दिवस हैं, यानी 7 अक्टूबर को इतने सारे दिवस मनाए जाते हैं
1: सारे
0: कि हम अपने श्रोताओं से उन सब पर चर्चा जरूर करना पसंद करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो बताओ तुम, क्या है पहला?
1: आज है राष्ट्रीय फैप्रे दिवस। मिश्रित आइस्ड कॉफी पेय का जश्न मनाया जाता है आज के दिन, जिसका आविष्कार 1957 में ग्रीस के थेसालोनिकी में हुआ था, जब नेस्कैफे के एक प्रतिनिधि ने गलती से इंस्टेंट कॉफी को ठंडे पानी के साथ मिला दिया और एक झागदार ठंडा पेय तैयार हो गया, जिसको कि आजकल हम कोल्ड कॉफी के नाम से जानते हैं।
0: बिल्कुल, देखो किस तरह से एक

0: आविष्कार हो गया। ऐसे तो हम घृणियां भी बहुत कुछ
1: बहुत बार गलतियां करते हैं
0: और गलतियों से बन जाता है कुछ अच्छा सा, है ना।
2: वैसे ही किसी ये किया जैसा तुम बताई, क्या थेसालोनिकी ने
1: किया।
2: और श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण संचार दिवस की स्थापना भी अहिंसक संचार, सक्रिय श्रवण और मार्शल रोसेनबर्ग द्वारा विकसित संघर्ष समाधान ढांचों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। ये ऐसे कौशल हैं जो व्यक्तिगत तौर और संगठनात्मक दोनों संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। और प्रतीक्षा,
1: शांति की बात आपने की, तो शांति हर जगह जरूरी है, और घर में हो या बाहर में हो, और दुनिया में हर जगह शांति होनी चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: और इसीलिए हम इस तरह के दिवस मनाते रहते हैं। और राष्ट्रीय कॉफी विथ कॉप दिवस भी आज है, जिसकी स्थापना अमेरिका के न्याय विभाग में सामुदायिक पुलिसिंग सेवा के कार्यालय के अंतर्गत हुई थी। और इसमें अनौपचारिक बातों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी।
2: और प्रतीक्षा, आज राष्ट्रीय एलईडी लाइट दिवस भी है। इसकी स्थापना एलईडी प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एक ऐसी तकनीक जो ताप दीप्त बल्बों की तुलना में 75% कम ऊर्जा का उपयोग करती है और 25 गुना अधिक समय तक चलती है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का अनुमान है कि इससे सालाना $30 अरब की ऊर्जा की लागत की बचत होती है। और हमें लगता है कि आजकल हर घर में एलईडी बल्ब ही यूज हो रहे हैं और उससे बिजली बिल में खपत काफी कम हो रहा है। और
1: आज अंतर्राष्ट्रीय स्कूल पैदल दिवस भी है
2: तो पैदल चलना भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये सब दिवस मनाना अच्छी तरह से मतलब इनकरेज करना होता है, भूल चुके होते हैं।
1: साथ साथ आज है राष्ट्रीय क्षमा और खुशी दिवस,
2: तो मन में किसी के लिए गुस्सा ना रखिए। आपको अगर क्रोध आ रहा है तो इस दिवस को ध्यान में रख करके।
1: दोस्तों, आज
2: आंतरिक सौंदर्य दिवस भी है। मतलब देखिए, बाहरी सौंदर्य पर तो सभी ध्यान देते हैं, मेकअप पुताई तो सभी करते हैं, महिलाएं खास करके, पुरुष थोड़ा कम मेकअप करते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अपना बाहरी सौंदर्य चमकाना चाहता है प्रतीक्षा। लेकिन अगर हम आंतरिक सौंदर्य पर ध्यान दें तो बात अच्छी बन सकती है और शायद हम ऊपर से भी और ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं।
1: और मीता, आज बहुत सारे ऐतिहासिक व्यक्तियों का जन्मदिन
2: भी है। और हम जैसे अपने श्रोताओं को हम पहले बता दें कि आज बुधवार है और आज के दिन आपका ये कार्यक्रम आधे घंटे के लिए होता है। आपका अगला जो कार्यक्रम 11 बजे से होगा वो होगा इनसे मिलिए। तो हमारे पास समय की आज थोड़ी कमी है और हम बहुत ज्यादा बातें आपसे नहीं कर सकते हैं। तो एक मशहूर जो हस्ती है, हस्तियां तो कई हैं, सभी मशहूर ही हैं, और उनके जन्म दिवस के बारे में बता दें। जैसे कि वाल्मीकि दिवस भी है आज,
1: और बेगम अख्तर भारत की प्रसिद्ध गजल गायिका,
2: उनका जन्मदिन है।
1: और
2: दुर्गा देवी भाभी, जो दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध हैं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, उन महान हस्ती का भी आज जन्मदिन है। तो श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम इसी गीत के साथ हम समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। आप सुनिए इस बेहद प्यारे से गीत को, जो समर्पित करते हैं हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, उन बलिदानियों को जिन्होंने हमें ये आजाद जीवन देने के लिए सैकड़ों कुर्बानियां करी हैं, कभी प्राणों की आहुतियां दी हैं, कभी जीवन का सुख त्यागा है।
1: बिल्कुल।
2: तो हमें यानी मीता और प्रतीक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में ये भेंट वार्ता जो ली गई है पूर्व महाधिवक्ता एवं वर्तमान अध्यक्ष झारखंड बार काउंसिल रांची से अजीत कुमार जी से। उनसे बातचीत कर रही हैं सिंधु मिश्रा। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री अजीत कुमार, जो पूर्व महाधिवक्ता झारखंड के रह चुके हैं, और साथ ही साथ आप वर्तमान में झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। तो सर, अभी अभी आपने अध्यक्ष पद को आसीन किया है, यानी इस पद पर आप आए हैं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी को यहाँ मुझे बुलाने के लिए।
0: सर, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आपका पूर्ण परिचय मैं चाहूँगी कि आप हमें दें, हमारे श्रोताओं को दें।
1: देखिए, मैं अजीत कुमार हूँ और इसी राज्य से बिलोंग करता हूँ। मेरा मूल जो गांव है वो हजारीबाग का एक इचाक गांव होता है, वही है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई जो है वो झारखंड में बिहार के स्कूल में, और अंततः जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई। वहीं से मैंने लॉ की भी डिग्री ली, उसके उपरांत मैंने वकालत की और वकालत के पेशे में हूँ।
0: ये भी मैं चाहूँगी जानना कि आपकी स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आप कॉलेज में कहाँ आपने पढ़ाई किया?
1: मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गुमला जिले में, अब जो गुमला जिला है, पहले गुमला जिला नहीं हुआ करता था, वो सब डिवीजन था, वहीं पे रोनियार बाल मंदिर और संत इग्नासियस हाई स्कूल जो है वहाँ 8th तक मेरी पढ़ाई हुई इन दोनों स्कूलों में। उसके उपरांत चूंकि मेरे पिताजी का स्थानांतरण हुआ पटना, तो सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र उच्च विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई मैट्रिक तक की। उसके उपरांत मेरी पढ़ाई सेंट कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग और सेंट जेवियर्स महाविद्यालय रांची में हुई। रांची में पास कोर्स की डिग्री लेने के उपरांत मैं ब्रिज कोर्स करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया था, और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज में मेरी ब्रिज कोर्स की पढ़ाई हुई, यानी मेरे ग्रेजुएशन का तृतीय वर्ष है वो वहाँ पूरा हुआ। उसके उपरांत लॉ फैकल्टी में मैंने लॉ की डिग्री ली दिल्ली विश्वविद्यालय से ही, और सन 1994 में मैंने स्नातक लॉ की डिग्री वहीं से प्राप्त की।
0: सर, अमूमन देखा जाता है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे वो उसकी प्रारंभिक शिक्षा हो, उसी वक्त उनका लक्ष्य एक निर्धारित हो जाता है। तो आपने वकालत को कैसे चुना, आप इस ओर कैसे आए?
1: देखिए, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे स्वयं पता नहीं था कि मैं लॉ के पेशे में आऊंगा और लॉ के पेशे में ही इतना सफल हो जाऊंगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के उपरांत वास्तव में मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था और उस क्रम में मेरी पढ़ाई भी हो रही थी, परंतु लॉ डिग्री पूरी होने के बाद और उससे कुछ पहले यूपीएससी के एग्जाम जो है, यूपीएससी की परीक्षा होती है, तो साथियों ने मन बनाया, मैंने भी मन बनाया, और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना और लॉ की पढ़ाई साथ साथ चल रही थी। यूपीएससी में भी प्रारंभिक परफॉर्मेंसेज मेरे अच्छे रहे और बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें भी मैंने तैयारियां की और उसमें सफल भी हुआ, परंतु क्या पता मुझे सडनली लगा कि यूपीएससी की पढ़ाई और उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करनी चाहिए। इसी क्रम में मैं रांची आ गया था, और जब रांची आया तो मेरे पिताजी जो पेशे से इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया और कहा कि यदि तुम रांची में हो तो पढ़ाई के अतिरिक्त कोर्ट भी जाना आना प्रारंभ करो। मेरे कुछ अन्य मित्र भी काम कर रहे थे यहाँ पे, तो इसी क्रम में मैंने उच्च न्यायालय में आकर के वकालत करने की सोची, और इसी तरह से अचानक मैं कहूँगा एक्सीडेंटली इस पेशे में मैं आया, पहले से कोई ऐसी मंशा नहीं थी।
0: सर देखा जाता है कि आज का युवा जब वो अपने लक्ष्य को लेकर थोड़ा सा तनावग्रस्त होता है तो एक उचित मार्गदर्शन और उचित मार्गदर्शक की ओर वो देखता है ताकि उसे एक सही मार्गदर्शन मिल सके। सर मैं जानना चाहूँगी आज के युवाओं के लिए कि जो इस ओर आना चाहते हैं यानी जो एक अधिवक्ता के रूप में अपने को देखना चाहते हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी करें और कैसे निर्धारित करें कि हम इस जगह अपने आप को सफल कर पाएंगे।
1: देखिए युवाओं के लिए और बच्चों के लिए भी मेरी ये प्रेरणा रहेगी उनके लिए
0: जी
1: कि आपको जो अच्छा लगता है वो जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी खास पेशे के बारे में सोचते हैं या सोचने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं आपके पेरेंट्स के द्वारा और अपने मित्रों के प्रेरणा से। अगर आप कुछ करने का मन बना लेते हैं जबरन तो हो सकता है आप उस पेशे में सफल ना हो और वास्तव में भविष्य में आप असंतुष्ट भी हो जाएंगे
0: जी।
1: तो आपको स्वयं ये देखना होगा कि आपका मन किस बात पे लगता है, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन किस प्रकार से होगी। देखिए मेरे परिवार में कोई लॉयर था नहीं
0: जी।
1: ना तो मेरे पिताजी उस पेशे में थे ना ही मेरे मदर के साइड में या फादर के साइड में कोई भी इस पेशे में था नहीं। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी परेशानी प्रारंभ में ये थी कि मैं किस अधिवक्ता के साथ या किस सीनियर के साथ एज जूनियर काम करूंगा। प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद कुछ एक पहचान के जरिए मैं सिविल कोर्ट रांची में काम करना चाहता था और मैंने 6-7-8 महीने वहाँ काम भी किए, परंतु कालांतर में मेरा मन नहीं लगा और मैं हाई कोर्ट की तरफ रुख करने के उपरांत एक सीनियर की खोज में था। काफी सारे सीनियर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे मना किया, एज जूनियर मुझे अवसर नहीं मिल रहा था, मेरी कठिनाइयां बड़ी थी, परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी और बारंबार लोगों से आग्रह करता रहा। अंततः श्री अनिल कुमार सिन्हा जी जो अब तो नहीं है, वो एक एस्टैब्लिश्ड एडवोकेट थे झारखंड उच्च न्यायालय में, तब तो ये रांची बेंच हुआ करते थे पटना हाईकोर्ट की, तो उनके यहाँ एज जूनियर काम करने का मुझे अवसर मिला। वास्तव में उनके यहाँ भी बहुत खास अवसर काम करने का नहीं मिलता था क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे जूनियर्स वहाँ काम कर रहे थे
0: जी।
1: तो मैंने उन कठिनाइयों के बावजूद मैंने ये तय किया कि मुझे पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी मेहनत से इस पेशे में रहना है और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कभी धोखा नहीं देना है
0: जी।
1: यदि मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है तो उनके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा, पैसे की कोई खास लालच प्रारंभ में नहीं करनी चाहिए। और वैसे युवा आजकल तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं इस पेशे में, मैं आमतौर पे देखता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो मुझे करनी पड़ी थी और मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि वो सब उनको करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, न्यायालय के समक्ष अपना जो बहस है वो काफी सलीके से रखना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ रखना चाहिए। यदि कोई मामला किसी क्लाइंट का योग्य नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है या बिल्कुल बहस करने योग्य नहीं है
0: जी।
1: और उसमें कुछ खास फायदा क्लाइंट का नहीं हो सकता है लीगली, तो वैसे मामलों को नकारना चाहिए। वैसे ही मामले जहाँ पे न्याय कहता है या लॉ कहती है कि आपका क्लाइंट सफल हो सकता है, वैसे मामलों को लेना चाहिए। पैसे की लालच में अगर आलतू फालतू किस्म के मामले न्यायालय में फाइल आप करेंगे तो न्यायालय की इम्प्रेशन खराब होती है। तो कुल मिला करके कुछ ऐसी बातें हैं मेरे सीनियर्स मुझे कहा करते थे प्रारंभ में कि पहले 3-4 साल जो है वो आप पैसे के पीछे मत भागिए और क्लाइंट्स के पीछे भागिए, और 3-5 साल की मेहनत के बाद जो है वो क्लाइंट्स आपके पीछे भागेंगे और पैसे भी अपरंपार आप कमा सकते हैं। तो ये गूढ़ बात मेरे मन में थी और मैंने प्रारंभ में ही नहीं, अब भी मेरी धारणा ये है कि क्लाइंट के साथ काफी अच्छा व्यवहार रखना है, कोर्ट में भी काफी सटीक तौर पे अपनी अपनी बात रखनी है और वैसे ही मामलों में बहस करना है और मजबूती से अपना पक्ष रखना है जहाँ पे कानून जो है वो आपके क्लाइंट के पक्ष में है।
0: सर, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि जो जन साधारण न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं या फिर न्यायपालिका की शरण में जाना चाहते हैं किन शिकायतों को लेकर या किन्हीं समस्याओं को लेकर, तो सबसे पहले किस बात का ध्यान उन्हें रखना चाहिए?
1: देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है
0: जी,
1: उसके अनुसार काफी सारे फ्री लीगल एड की भी व्यवस्था की गई है। वो झालसा यानी झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है स्टेट में, हर स्टेट में इस तरह की अथॉरिटी होती है। लीगल सर्विसेज के लिए अन्य संस्थाएं बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। तो यदि कोई व्यक्ति असक्षम है, पैसे खर्च नहीं कर सकता है, तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। न्यायालय में हर प्रकार के मामले जाते हैं, जैसे कि जमीन जायदाद से रिलेटेड या कोई सिविल क्लेम से रिलेटेड मामला हो तो सिविल सूट्स दायर की जाती है। यदि कोई फौजदारी मामला होता है तो आमतौर पे लोग पुलिस के पास जाते हैं, यदि पुलिस केसेस नहीं लेती है तो सीधे तौर पे न्यायालय एक कंप्लेंट केस फाइल करके भी लोग जाते हैं। उच्च न्यायालय में अपीलेट मामले होते हैं और उच्च न्यायालय में आमतौर पे रिट याचिकाओं की भी सुनवाई होती है। लोकहित याचिकाएं हैं जिसको आमतौर पे PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, वो भी लोग दायर कर सकते हैं। परंतु सभी विषयों के अपने अपने दायरे हैं और अपने अपने प्रोसीजर्स है। उन प्रोसीजर्स को समझना लॉयर्स को आवश्यक होता है। अब तो AI का समय है, AI के हेल्प से गूगल करके या काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आने लगे हैं, तो जो नए युवा हैं जो इस पेशे में आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी सारे अवसर हैं और उन अवसरों को वो बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पेशे में रह करके नाम कमा सकते हैं और काफ़ी पैसे भी कमा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, किसी के दबाव में काम करने की आवश्यकता इस पेशे में नहीं होती है। आप स्वतंत्र होकर के काम करते हैं और एक समाज सेवा का भी काम आप कर रहे होते हैं। जब कभी आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता है आपको, तो आप उसको राहत भी दे सकते हैं, और जब बड़े मामले आते हैं आपके पास और एस्टैब्लिश्ड लॉयर के तौर पे यदि आपकी मांग बढ़ती है तो आप अच्छी फीस की भी डिमांड करते हैं।
0: जो श्रोता अभी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि उन तक आपके मार्फत एक संदेश पहुंचे कि अगर न्यायिक प्रक्रिया में हम जा रहे हैं यानी न्यायालय का शरण ले रहे हैं हम, तो किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि हम अपने कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं जो कभी हम गुजरे ही नहीं हैं, यानी दूसरे पक्ष को हम परेशानी पहुंचाने के उद्देश्य से भी कई न्यायिक प्रक्रिया में पड़ जाते हैं, तो इसमें क्या प्रावधान है, कैसे उनके लिए सजा का प्रावधान है या फिर न्यायपालिका क्या आदेश देती है?
1: देखिए, फ्रिवलस लिटिगेशंस या नाहक लिटिगेशंस तो जरूर हुआ करता है
0: जी।
1: हम लोग आस पड़ोस में कई बार आपसी जलन के वजह से, आपसी द्वेष के वजह से भी झूठे मामले लेकर के पुलिस के पास जाते हैं, अपने पड़ोसी के विरुद्ध, अपने भाई के विरुद्ध भी कई लोग जाते हैं, अपने परिवार वालों के भी विरुद्ध हो जाया करते हैं लोग
0: जी।
1: तो ऐसे मामलों से आमतौर पे लोगों को बचना चाहिए। यदि आपके दीवानी या फौजदारी हक का विषय है तो जरूर उन कानूनी पहलुओं को किसी एक अच्छे अधिवक्ता से समझने की आवश्यकता होती है। और यदि आप उन सभी पक्षों को किसी एक अच्छे अधिवक्ता से समझ करके एक मामला दायर करने के लिए न्यायालय जाएंगे तो फौजदारी या कोर सिविल मामले हैं वो सिविल कोर्ट्स में दायर होंगे। और यदि गवर्नमेंट अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी से कोई विवाद है, किसी सर्विस पर्सन का या किसी एम्प्लॉय का, उनके एम्प्लॉयर या किसी गवर्नमेंट संस्था में वो काम करता है उसके साथ विवाद है तो रिट याचिका दायर की जाती है। कई छात्र जो हैं वो एग्जामिनेशंस

0: में हुई प्रक्रिया से असंतुष्ट होते हैं या उनके साथ अन्याय होता है तो सीधे तौर पर न्यायालय का रुख करते हैं और रिट याचिका दायर करते हैं। यदि आम सुविधाओं की बात होती है या किसी आम चीज जिससे पूरे समाज का हित या अहित हो रहा है तो ऐसे विषय पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीधे तौर पे उच्च न्यायालय में दायर होती है। तो मैं बताऊं दूसरे के साथ प्रेम से रहना है और झूठे मामले जो दायर होते हैं इसके वजह से कोर्ट्स का जो समय जाया जाता है समय बर्बाद होता है और ऐसे मामलों की वजह से जो जायज मामले हैं उनके फैसलों में विलंब हो जाया करती है। तो फालतू के मामले या बेवजह झगड़े के मामले झूठ के मामले ये सब मामलों से लोगों को बचना चाहिए। फिर भी यदि कोई जायज झगड़ा है जायज भूमि का झगड़ा है या जायज कोई फौजदारी मामला है तो प्रक्रियाएं न्यायालय की काफ़ी साफ सुथरी हैं और स्पष्ट हैं और लोगों को न्यायालय का जरूर रुख करना चाहिए। यदि पैसे ना भी हो तो फ्री लीगल एड का जरूर हेल्प लेना चाहिए।
1: सर कार्यक्रम में न्यायिक प्रक्रिया संबंधी और भी बातें हम आपसे जरूर करेंगे लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब व्यस्ततम जीवन से जब आपको थोड़ी सी राहत मिलती है फुर्सत के यानी कुछ लम्हे मिलते हैं तो आप उसमें अमूमन क्या करना पसंद करते हैं?
0: देखिए मुझे फिल्म देखने का बड़ा शौक है, हिंदी फिल्मों से मुझे बड़ा चाव रहता है। अब तो थोड़ा कम ही समय मिलता है क्योंकि काफ़ी सारे सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं और काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है, क्लाइंट्स की भी काफ़ी भीड़ हुआ करती है। प्रतिदिन सुबह में 5 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू होती है, 10 बजे कोर्ट जाना होता है, फिर लगभग 4:30-5 बजे वापस आने के बाद 1 घंटा आराम करना होता है, फिर 6:30 बजे के बाद से क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। यही प्रक्रिया 10:30-11 बजे तक चलती है। फाइल पढ़ने के लिए सुबह का ही समय मिलता है तो सैटरडेज को या संडेज को जब कभी थोड़ा समय मिलता है तो मैं फिल्में देखता हूँ और पुरानी फिल्में हों या नए भी मूवीज जो आते हैं वो मैं देखता हूँ। जब कभी आधा देख पाया तो आधी मूवी दूसरे दिन देखता हूँ, इस तरह से चलता है। बट परिवार चूँकि आपके साथ होता है, मेरी पत्नी स्वयं भी काफ़ी सहयोग करती हैं तो उनके साथ या मेरी एक पोती है अभी तो पोती के साथ खेलना होता है, उसको खिलाता हूँ सुबह में या शाम में जब कभी समय मिलता है। तो
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर और मैं समझती हूँ कि जो मनोरंजन का ये साधन है यानी फिल्म देखना और उस परिवार के बीच रहकर इन सब को देखना ये बहुत ही खुशी हमें देता है। सर फिल्म संगीत तो आप ज़रूर सुनने का शौक रखते होंगे, कोई ऐसा गीत जो आप अभी कार्यक्रम में सुनना चाहें?
0: जी एक पुरानी मूवी हुआ करती है जिसमें एक गाना था चांद सी महबूबा हो ऐसा क्या मैंने ऐसा सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये गाना मुझे काफ़ी पसंद है, मेरी शादी के बाद मैंने अपनी पत्नी को भी यही गाना सुनाया था तो ये गाना मुझे काफ़ी पसंद है।
1: चलिए श्रोताओं अब सर की पसंद का ये गीत कार्यक्रम में हम भी सुनते हैं।

0: संगीत के बाद कार्यक्रम में पुनः स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री अजीत कुमार, पूर्व महाधिवक्ता झारखंड, और साथ ही साथ वर्तमान में झारखंड बार काउंसिल के अभी अध्यक्ष भी हैं। सर सर चलते चलते कार्यक्रम में मैं चाहूँगी कि आम जन के लिए आप वैदिक संबंधी क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस वैदिक प्रक्रिया का फायदा उठा सकते हैं।
1: देखिए, हमारे देश की जो व्यवस्था है और विगत कुछ वर्षों में जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि हर वर्ग के लोगों के लिए, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने कई कानून बनाए हैं। हर व्यक्ति को अपने हक के बारे में जानना चाहिए। यदि चाइल्ड है तो किस एज के बाद एडोलेसेंट काम करेगा, चाइल्ड किसी भी तरह का काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से यदि वर्कर है या लेबरर है तो मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रावधान ऐसे हैं कि मिनिमम वेज जो प्रेस्क्राइब्ड है स्टेट के द्वारा उससे कम नहीं दिया जा सकता है। तो ये सभी कानून एंटी एक्सप्लॉयटेशन के कानून हैं। एससी एसटी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ प्रताड़ना न हो, उनका शोषण नहीं हो, इसके लिए कानून बना है। सीआरपीसी या सीपीसी

0: है तो बिल्कुल एक जानकार अधिवक्ता से मिलना चाहिए उन्हें, और ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिरकार जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो किस प्रकार से निदान के लिए न्यायालय में उसका उनका मामला ले जाया जा सकता है। यदि आमतौर पे ये छात्र जो हैं एग्जामिनेशंस देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, और ये अगर फील करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके एग्जाम्स में टैम्परिंग हुई है या पेपर लीक हुआ है, जैसे आमतौर पे अभी रिसेंटली झारखंड में खास करके रांची में काफ़ी बड़ा आंदोलन छात्र कर रहे थे और राज्य सरकार ने भी 22 एग्जामिनेशंस को कैंसिल किया था, तो ये साफ तौर पे इस तरह के मामले हैं जहां छात्र फील कर सकते हैं कि वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, परीक्षाओं में बैठते हैं और उनके साथ अन्याय होता है और सीटें बेच दी जाती हैं या मैनिपुलेशंस हुआ करती है, तो वो न्यायालय जा करके अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो देखिए, न्यायालय जो है वो हर वर्ग के लोगों के लिए जो समाज में है उनकी सुरक्षा के लिए है और वैसे लोगों को दंडित करने के लिए है जो न्याय जो कानून व्यवस्था का या कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो हर नागरिक की एक ड्यूटी है कि उनके इर्द गिर्द यदि कानून को तोड़ने वाले लोग दिखाई देते हैं तो उनकी रिपोर्ट करना, उनकी सूचना पुलिस को या कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज हैं उनको दें। यदि मामले ऐसे हैं जहां उनके स्वयं के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके इक्वालिटी राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो सीधे तौर पे उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो समाज के हर वर्ग के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए या सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने अनेकों कानून बनाए हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि विषयों की जानकारी सभी को हो। अब तो लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, शहरों में लोग काफ़ी सोर्सेस से आकाशवाणी के जरिए या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए या AI के जरिए सभी तरह की जानकारियां ले सकते हैं और उन जानकारियों के आधार पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए न्यायालय भी जा सकते हैं। यदि पैसे ना भी हो तो फ्री लीगल एड का सहारा लिया जा सकता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया सर, और मैं समझती हूँ कि जितनी भी बातें आपने बताई इन बातों से हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित होंगे। सर, कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत धन्यवाद आपको।

इनसे मिलिए। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम में पूर्व महाधिवक्ता एवं वर्तमान अध्यक्ष झारखंड बार काउंसिल रांची के अजीत कुमार जी से ली गई भेंट वार्ता। उनसे बातचीत कर रहे थे सिंधु मिश्रा। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का, आपकी पसंद थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे श्रोता बेसब्री से इंतजार करते हैं इस कार्यक्रम का, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना सिर्फ गीत होते हैं बल्कि उनकी पसंद के गीत होते हैं, और ना सिर्फ उनकी पसंद के गीत होते हैं बल्कि उनके फरमाइशी पत्र भी होते हैं। तो अपना नाम रेडियो पर सुनना हमारे बहुत से श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता होगा, और जब उनकी पसंद के गीत बजाए जाते होंगे तो वो और भी ज़्यादा प्रसन्नचित्त होते होंगे। तो हम आपकी प्रसन्नता को कम नहीं करेंगे, दोगुना ही करेंगे, और आपके पत्रों को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जो कि फरमाइशी पत्र है। लिखा है सरगुजा मैनपाट से

सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा ने बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जैन रोड मथुरा से दशोम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार और उनके ढेर सारे दोस्त, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयदेव बीरक और मीका बीरक ने सुनना चाहा है फिल्म शक्ति का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। उसे संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। प्यार ऐसी चीज होती ही है श्रोता भाइयों, लेकिन ये भी तो है कि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जाने क्यों लोग प्यार करते हैं।
1: जाने क्यों लोग

0: जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये सवाल था, यानी कि इस गाने के लिए पत्र लिखा था औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, सीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, मेहर नगर उमेर खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गहवानकर, राही श्रीमती सरिता गहवानकर, प्रिंस एकांश गहवानकर, बल्लापुर मुंबई से सिद्धांत गहवानकर, प्रणीता गहवानकर, शरेश गहवानकर, श्रीमती वैशाली गहवानकर, श्वेता सुमित गहवानकर और कुमारी ध्वनि गहवानकर, परी आकार हाइट्स बहादुर बहादुरा नागपुर से। आप सभी ने सुनना चाहा था फिल्म दिल चाहता है का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। शब्द थे जावेद अख्तर के और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। श्रोताओं, प्रेम सिर्फ हम इंसान से ही नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम हमें अपने देश से होता है। तो आइए सुनते हैं सैनिकों की ये शौर्य गाथा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

की स्वर गाथा। आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, जो आधारित होता है फरमाइशी पत्रों पर जो हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं। अगला पत्र जो हम उठा रहे हैं वो आया है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर का। छत्तीसगढ़ भाटपारा ददरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा का। यह पत्र लिखा है जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना राज, रेजवान राह, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज ने। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत आतिफ असलम और अलीशा चिनोई की आवाजों में। आशीष पंडित के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपकी कसम फिल्म का। शब्द हैं आनंद बख्शी के, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने। सुनना चाहा है इंदिरा बिहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी और उनके ढेर सारे दोस्त। रिंग ने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: सुनो,
3: कहो,
2: कहा,
3: सुना,
2: कुछ हुआ क्या?
3: अभी तो नहीं।

श्रोता साथियों, गीत भी इशारे करने को, समझने को कह रही है, यानी कि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो चला है, क्योंकि अगला कार्यक्रम जो है महिलाओं का, गृह लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा में है, और साथ ही प्रतीक्षा में है राखी शर्मा और रानी शुक्ला भी। तो कार्यक्रम आपकी पसंद यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, दिन के 12 बजे हैं, ये समय है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो महिलाओं को संबोधित इस कार्यक्रम को सुनते हैं राखी शर्मा और रानी शुक्ला के साथ।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी और परिवार संग प्रसन्न भी होंगी। कार्यक्रम के आज के इस खूबसूरत से सफर में आपके साथ हैं हम दो सखियां। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी राखी
1: और मैं रानी। गृहलक्ष्मी सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए।
0: इन दिनों सुबह सुबह बाहर निकलो तो मौसम कुछ बदला बदला सा महसूस होता है ना रानी? और तुम्हारी आवाज पर भी मौसम का थोड़ा थोड़ा असर दिखाई दे रहा है, इसलिए बहनों आप भी बारिश में भीगने से बचिएगा और ठंड से थोड़ा बच के रहिएगा, है ना?
1: ये मौसम का ही जादू है राखी। और जब मौसम का मिजाज बदले तो बहनों सिर्फ चाय का स्वाद ही नहीं बदलता हमारा, हमारी दिनचर्या के साथ साथ हमारे पहनावे का अंदाज भी तो बदलता है। और कभी कभी तो हमारे मन में यही सवाल होता है बहनों कि आज ऐसा क्या पहने जो मौसम के हिसाब से सही हो और पहनने में आरामदायक भी।
0: हाँ बिल्कुल सही, कभी हल्के फुल्के कपड़े मन को भाते हैं तो कभी गर्म कपड़ों की जो मुलायम मुलायम सी गर्माहट है वो अच्छी लगती है। और यही तो खास बात है हमारे पहनावे की। कपड़े केवल हमारी खूबसूरती और व्यक्तित्व को निखारने का माध्यम नहीं है बहनों, बल्कि बदलते मौसम में शरीर को आराम देने का एक जरूरी साधन भी है।
1: बिल्कुल सही राखी। और ऐसे भी बहनों कहते हैं ना, मौसम अपना रंग बदलता है तो क्यों ना हमारा पहनावा भी उसी रंग में थोड़ा ढल जाए, ताकि खूबसूरती भी बनी रहे, आराम भी मिले और बदलते मौसम का असर भी हम पर थोड़ा कम हो।
0: क्योंकि सही पहनावा तो वही है बहनों जो सिर्फ अच्छा दिखे ही नहीं बल्कि हमें अच्छा महसूस भी कराए।
1: इसलिए आज हम बात करेंगे बहनों मौसम के अनुसार पहनावे की, जहां फैशन के साथ जुड़ी है सुविधा, स्वास्थ्य और समझदारी भी।
0: हाँ बहनों, हर मौसम की अपनी खासियत होती है और उसी के साथ हमारे कपड़ों की जरूरत भी बदलती है। जैसे गर्मियों में सबसे जरूरी है कपड़े शरीर को हवा लगने दें, वैसे कपड़े और पसीना सोख सकें।
1: ऐसे में सूती और हरे हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं आरामदायक रहते हैं। बहुत ज्यादा तंग और सिंथेटिक कपड़े पसीने और गर्मी की जो परेशानी होती है उसे बढ़ा सकते हैं बहनों। और इन दिनों बाहर निकलते समय कपड़ों के साथ सिर और त्वचा को भी धूप से बचाना भी जरूरी है।
0: हाँ, और अब आते हैं बारिश के मौसम पर। बारिश के जो उमस भरे मौसम की बात अगर हम करें तो उस समय जो नमी के कारण शरीर जल्दी असहज महसूस करने लगता है, ऐसे में वैसे कपड़े चुनना बेहतर है जो आरामदायक हों और आसानी से सूख भी जाएं।
1: और अगर कपड़े भीग जाए तो उन्हें ज्यादा देर तक पहने रहने से बजाय जल्दी बदल लेना चाहिए बहनों। नमी में लंबे समय तक रहना त्वचा के लिए परेशानी पैदा कर सकता है ना राखी?
0: हाँ हाँ। और अब सर्दी की बात भी हम करेंगे, क्योंकि अब तो धीरे धीरे देखो रानी गुलाबी ठंड आ ही चली है ना, दुर्गा पूजा आ रही
1: बिल्कुल।
0: है। इस मौसम में हमारा पहला ध्यान होना चाहिए कि हम ठंड से कैसे बचें। ऊनी कपड़े, जैकेट, स्वेटर, शॉल और गर्म मोजे जरूर पहनने चाहिए और इसका इस्तेमाल हमेशा करें ताकि ठंड से आप बच सकें।
1: हाँ बहनों, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि सर्दियों में सिर्फ बहुत मोटे कपड़े पहन लेना ही समाधान नहीं है। कपड़ों की परतें बनाकर पहनना सुविधाजनक होता है, इससे जरूरत के अनुसार एक परत कम या ज्यादा भी किया जा सकता है ना बहनों?
0: हाँ, और वैसे तो आजकल भाई बाजार में फैशनेबल गर्म कपड़े भी मिलने लगे हैं जो बहुत भारी नहीं होते हैं, बहुत मोटे नहीं होते हैं और आप फैशन के अनुरूप भी चल सकते हैं, है ना? और हल्के भी हैं वो, आरामदेह भी हैं। और बच्चों, बुजुर्गों या ज्यादा समय बाहर रहने वाले लोगों के पहनावे में मौसम का ध्यान थोड़ा और सावधानी से रखना होता है। एक और जरूरी बात है बहनों की मौसम के अनुसार पहनावा चुनते समय केवल फैशन को ही प्राथमिकता न दें, जैसा कि अभी मैंने कहा था, लेकिन कपड़े अक्सर काम और शरीर की सुविधा के अनुसार भी होने चाहिए फैशन के साथ साथ।
1: हाँ, घर के काम हो, बाहर जाना हो, कार्यालय जाना हो या किसी समारोह में शामिल होना हो, पहनावा ऐसा हो जिसमें हम सहज होकर अपना काम पर ध्यान दे सकें।
0: और कपड़ों की सफाई भी पहनावे का जो है ध्यान देना उसी के अंतर्गत आती है, जरूरी हिस्सा है। मौसम चाहे कोई भी हो, साफ और अच्छी तरह सूखे कपड़े पहनना व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: हाँ बहनों, तो कपड़ों का चुनाव करते समय अपने पसंद के रंग और डिजाइन जरूर चुनिए, बस उनके साथ मौसम और अपनी सुविधा का ख्याल रखिए। फैशन जरूर अपनाइए लेकिन मौसम को नजरअंदाज करके नहीं।
0: हाँ हाँ, क्योंकि सुंदर दिखने के साथ सहज रहना भी जरूरी है। अगर आप सहज नहीं है तो फिर देखने में भी समझ में आ जाता है कि आप बहुत स्मार्ट नहीं लग पाएंगे, है ना। और आराम के साथ सेहत का ख्याल रखते हुए अगर आप कपड़े पहनते हैं तो अच्छा रहता है। याद रखिए बहनों, अच्छा पहनावा सिर्फ वो नहीं जो नजरों को अच्छा लगे, बल्कि वो है जो तन, जिसमें तन और मन सहज और प्रसन्न हो और मौसम भी जो है शरीर के अनुकूल कपड़ा पहने।
1: इसलिए बहनों, अगली बार केवल ये मत सोचिएगा कि आज क्या पहनूं, ये भी सोचिएगा कि मौसम के अनुसार क्या पहनना सही रहेगा।
0: हाँ, और इसी तरह छोटी छोटी समझदारी से हमारा पहनावा बनेगा और भी खूबसूरत, आरामदेह और मौसम के अनुकूल। और फिर जो मौसम का जादू आपको दिखेगा तो बात ही उसकी निराली हो जाएगी बहनों। 6, 5, 4, 3

0: स्वागत है पुनः आपका बहनों आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और रानी। और अब बहनों हम बात करेंगे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की, जिनका भविष्य संवारना हमारे ही हाथ में है। बहनों बचपन जीवन का वह सुंदर समय है जब मन एक कोरी किताब की तरह होता है और उस किताब में परिवार, शिक्षक, समाज मिलकर जो भी लिखते हैं उसकी छाप जीवन पर्यंत बनी रहती है।
1: बिल्कुल, और ये बातें व्यक्तित्व का अंग बन जाती है बहनों। हर अभिभावक, हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा अच्छा करियर बनाए, धन, यश, मान, सम्मान अर्जित करे। ये सही भी है, लेकिन इसके साथ ये भी आवश्यक है कि बच्चा संस्कारी हो, बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने।
0: अगर हम गहराई से चिंतन करें सखियों, तो ये समझ सकेंगे कि संस्कार एक दिन में सीखने की चीज नहीं है। बच्चा वही अधिक सीखता है जो अपने बड़ों को करते हुए देखता है। घर में प्रेम सम्मान का वातावरण हो तो बच्चे के व्यक्तित्व पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: अपनी गलती पर सॉरी बोलकर माफी मांग लेना, किसी से भी विनम्रता से पेश आना, यात्रा करते वक्त बुजुर्ग, महिला या अशक्त के लिए अपनी सीट छोड़कर उन्हें बिठाना, ये सब कुछ हमें बचपन में ही सिखाया गया था बहनों।
0: हाँ, घर में अगर कोई काम करने वाली दीदी भी है या रिक्शा चलाने वाले अंकल हैं तो उनसे सम्मान पूर्वक बात करना है। ये बातें तो घर में देखकर बच्चे सीख ही जाते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया शब्दों से कहीं अधिक व्यवहार को देखकर होती है सखियों।
1: पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे राखी, बच्चे दादा दादी, नाना नानी से कहानियां सुनकर बड़े होते थे। रामायण, महाभारत से लेकर कई महापुरुषों की जीवनी सुनकर उनके जैसा बनने की इच्छा बचपन से ही जागृत हो जाती थी, है ना?
0: सुबह उठकर बड़ों के पैर छूना हमने दादी से सुनकर सीखा था। प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ऐसी कई चौपाइयां हमें सुनाई जाती थी जिसका अर्थ हमारे जीवन पर प्रभाव डालता था। पापा कहते थे जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस तरह की बातें सुनकर हम बड़े हुए, तो संस्कार ऐसे ही आते हैं बहनों।
1: बिल्कुल बहनों, संस्कार के बीज बचपन से ही बोए जाते हैं और सही गलत में अंतर समझना बहुत जरूरी है। और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, विकट परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ आगे बढ़ना, दूसरों की मदद करना, विनम्रता से अपनी बात कहना, ऐसी कई बातें हैं बहनों जो व्यवहार द्वारा बच्चों को सिखाई जाती है।
0: बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अच्छा नागरिक बनना भी आवश्यक है। शिक्षा हमें सफलता देती है, संस्कार आगे बढ़ाते हैं। एक संवेदनशील इंसान स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे ले जाता है। और रानी, अब कार्यक्रम को भी आगे ले जाना है, तो भाई जानकारी परक बातों के साथ थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए।
1: हाँ बिल्कुल।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और बहनों, अब बात करते हैं अपनी बेटियों की और इसी से जुड़े एक अभियान की जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी चर्चा पहले भी हमने की है बहनों, आज हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं।
2: हाँ बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक जागरूकता पहल है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, उनके संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना तथा लैंगिक भेदभाव को कम करना है।
1: हाँ बहनों, इसका उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बालिकाओं के प्रति भेदभाव और नकारात्मक सोच करना कम करना, ये तो बताया ही। बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाना है इसका उद्देश्य, और बाल विवाह जैसे जो सामाजिक कुरीतियां हमारी हैं उसके विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना भी है। परिवार और समाज में बेटियों के समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने की सोच को विकसित करना भी है, और बालिकाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण को प्रोत्साहित करना भी है।
2: ये मुख्यतः बालिकाओं के संरक्षण, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता एवं सामाजिक समर्थन कार्यक्रम है बहनों। इसे ऐसी सामान्य योजना की तरह नहीं समझना चाहिए जिसमें हर बेटी के नाम सीधे नकद राशि मिलती हो, है ना?
1: हाँ हाँ, बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के बारे में सहायता और जागरूकता भी इससे मिलती है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि योजना का नाम तो सुनते हैं लेकिन उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती और लाभ नहीं ले पाते हैं बहनों। इसीलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लें, और इसका लाभ लेने के लिए अपने जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन या आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित सरकारी जो कार्यालय है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में उपलब्ध BBBP गतिविधियों और संबंधित योजनाओं की जानकारी आपको लेनी चाहिए। यदि आपको बेटी के लिए सीधे आर्थिक सहायता चाहिए तो भी आप जो हैं राज्य सरकार और केंद्र की अलग अलग बालिका योजना की पात्रता देखें और समझें। आप जब संपर्क करेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको इस बारे में मिलेंगी,
2: और इन जानकारियों को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें बहनों, अपने जो भी आपके करीबी हैं उनके साथ इसे साझा करें ताकि उन्हें भी इस योजना के बारे में जानकारी मिले।
1: हाँ, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ आज भी बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है बहनों, तो भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपकी बेटियों के विकास में सरकार हमेशा आपके साथ है।
2: बिल्कुल,
1: तो हमेशा जानकारी रखें और सजग बने और इस तरफ आगे बढ़ें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और बेटियों के ऊपर गर्व करें क्योंकि आपकी बेटियां वो कर सकती हैं जो आपके बेटे कर सकते हैं, और ऐसा करके हमारी बेटियों ने दिखाया भी है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और अपने माता पिता का ही नहीं अपने देश का भी नाम हमारी बेटियों ने ऊँचा किया है। तो हमारी बेटियाँ जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं आप उन्हें बढ़ने दें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, या फिर अगर वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, संगीत, साहित्य या किसी और क्षेत्र में, तो आप जरूर उन्हें आगे बढ़ने दें। ये बहुत जरूरी है कि लिंग आधारित भेदभाव और कन्या भ्रूण हत्या जो है उसको हम बढ़ावा न दें, उसे रोकें, बेटियों के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करें,
2: और बालिकाओं की शिक्षा और स्कूल में जो नामांकन है उसको बढ़ावा मिले। लड़कियों का पढ़ाई बीच में छोड़ना ये भी सही नहीं है, है ना?
1: हाँ।
2: और
1: कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी किशोरी बेटियां होती हैं उन्हें अपनी जो निजी स्वच्छता होती है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें भी जानकारी उस संबंध में भी देना चाहिए।
2: और पता है राखी, इस कार्यक्रम में केवल छोटी बच्चियां ही नहीं बल्कि किशोरियों, माता पिता, नवविवाहित दंपति, गर्भवती माता और जो भी है, युवा स्कूल समुदाय भी लक्षित समूह है।
1: हाँ हाँ, और अपनी बेटियों के नाम पर जो है आप कुछ बचत भी कर सकते हैं, और आप सीधा वेबसाइट पे जाएं, जो आधिकारिक वेबसाइट है वहीं से आप संपर्क करें, या जैसा हमने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र में आप पता करें। बीच में अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि मैं ऐसा करवा दूंगा ऐसा है, तो इससे आप बचें क्योंकि सरकार सीधा आपसे संपर्क करती है और आप अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: और बेटी की उम्र, कक्षा, परिवार की आय, राज्य और स्कूल कॉलेज के आधार

पर अलग योजना लागू, थोड़ी थोड़ी जो है ना ये योजना उसे बदलाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो सरकार का है ये वही है कि आपकी बेटियां पढ़ें और पढ़ें, और कभी भी आप बेटियों को लेके हीन भावना महसूस नहीं करें, ऐसा ना लगे कि भाई जो हमारे बेटे कर सकते हैं हमारी बेटियाँ नहीं कर सकती हैं, और बेटियों की जल्दी शादी करके निवृत्त ना हो बहनों, वो जो करना चाहती हैं उन्हें अपनी करियर की उड़ान भरने दें। और बहनों अब फिर से कार्यक्रम में चलिए ले चलते हैं आपको मनोरंजन की दुनिया में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और इसी के साथ बहनों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। इसी के साथ अपनी सखी राखी
2: और रानी को दे अलविदा।
1: नमस्कार।
3: गृह लक्ष्मी
4: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत में आइए पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म खुद गर्ज से। आवाजें साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की हैं।
1: हम सफर होता हो ये दिल।

फिल्म बॉबी से। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीत आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: घटपड़े भारतीय सेना।
1: फिल्म संगीत में आपका फिर से स्वागत है। हम सुनवाते हैं अब आपको फिल्म साहिब का ये गीत एस जानकी और बप्पी लाहिरी की आवाजों में। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला है बप्पी लाहिरी ने ही।

राजपूत, जी हाँ, नाम है फिल्म का। सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म खुद्दार से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, राहत इंदौरी का लिखा हुआ ये गीत है और इसे संगीत से सजाया है अनु।

0: टुकड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 72,827 पर, जबकि निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 22,659 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He said that over the past 12 years, the situation has changed completely.
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: होम मिनिस्टर अमित शाह हैज हेल्ड द कंप्लीशन ऑफ 25 इयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज पब्लिक सर्विस एंड डिस्क्राइब्ड इट एज अ गोल्डन एंड हिस्टोरिक डे। Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today, he stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished, including the abrogation of Article 370, the elimination of nationalism, and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. The Reserve Bank of India, RBI, today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, the Monetary Policy Committee unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points.
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening by a majority of 4-2.
1: Central Bureau of Investigation, CBI, has registered an FIR against OSD to Punjab Chief Minister Rajbir Ghuman and his associates in a case of cash for transfers and manipulating postings of officers, including of IAS and IPS rank officers, and other corruption cases to investigate these allegations. Subsequently, raids were conducted at 8 premises. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's partnership with Africa is being built not just for today, but for generations to come. Addressing a gathering at the Foreign Service Institute of Ghana in Accra, he highlighted India's progress in the economy, infrastructure, digital technology and manufacturing. Dr. Jaishankar stressed the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. India has called for stronger climate action and faster implementation of the Paris Agreement at the pre-conference of the parties or COP31 meeting in Fiji. Union Environment Minister Bhupinder Yadav said there is a need to close gaps in understanding, fulfill existing climate commitments, and accelerate progress towards the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. Addressing the plenary session,

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव को बताया अपनी सबसे बड़ी पूंजी। झारखंड भर में उत्साह के साथ सुनी गई प्रधानमंत्री की बात। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने विभागीय कार्यों में सुस्ती बरतने वालों पर दिखाई सख्ती। मेदिनीनगर के कार्यपालक, सहायक और कनीय अभियंता को जारी किया शो कॉज। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। दो शातिर आरोपी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। राज्य के कई हिस्सों में आज वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी। और भारत वेस्टइंडीज महामुकाबले के लिए आज रांची पहुंचेंगे क्रिकेट के धुरंधर। सुरक्षा सख्त, ट्रैफिक एसपी ने जारी की रूट और पार्किंग एडवाइजरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का अटूट विश्वास और कार्यकर्ताओं का समर्पण उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर उन्होंने 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: इधर झारखंड में भी सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा का भव्य आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इसी कड़ी में रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक कार्यकाल की सराहना की।
3: देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 12 साल के अंदर 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। आयुष्मान भारत, इसमें 9 करोड़ 32 लाख लोग अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा लिए। पिछले 6 सालों से गरीबों को 5-5 केजी राशन, यही मोदी है। स्काई रूट, हमारे युवाओं ने प्रधानमंत्री के मोटिवेशन से स्पेस में झंडा गाड़ दिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं कि कैसे इस विजन को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए जमीनी हकीकत में बदला गया है।
4: झारखंड के सुदूर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पक्की सड़कों का जाल अब विकास की नई कहानी लिख रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भारी भरकम बजट से मंजूर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण से राज्य के आकांक्षी जिलों को बड़ी सौगात मिली है। इसी कड़ी में उग्रवाद और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे लातेहार जिले के प्रभावित इलाकों में अब महज 100 की आबादी वाली छोटी बस्तियां भी हर मौसम में चलने वाली बारहमासी सड़कों से जुड़ सकेंगी। योजना के इसी महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
2: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनी है और इनमें से करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पिछले 10-11 साल में बनी है।
4: लातेहार में अब तक 40.5 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और लगभग 900 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें मंजूर की जा चुकी हैं। विशेष जनजाति योजना के तहत दुर्गम पहाड़ी गांव तक भी पक्की राह पहुंच रही हैं। नई सड़कों के बनने से ग्रामीण काफी उत्साहित हैं।
5: पहले तो बहुत जर्जर स्थिति में हमारा क्षेत्र का ये जो बाईपास रोड था, लेकिन अभी सड़क बनने से हमारा क्षेत्र का एक विकास का पैमाना देखा जा सकता है और आगमन का साधन बहुत अच्छा हो गया है। हम लोग कॉलेज या शहर की ओर जाते हैं तो सेफ्टी तरीके से आना जाना कोई परेशानी पैसा है नहीं।
6: हमारे गांव में सड़क पहले खराब थी, अब पीएम जसवाई से बन गया है तो आने जाने में सुविधा अच्छा से।
4: मनिका, हिरहंज और बालूमाथ जैसे इलाकों में पुलों और सड़कों की नई मंजूर योजनाओं से आने वाले दिनों में लातेहार की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री के जनसेवा से देश सेवा के संकल्प को धरातल पर उतारती यह योजना लातेहार के आदिवासियों के जीवन को सुगम बना रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए लातेहार से संजय तिवारी के साथ रांची से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
1: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। मंत्री ने जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए मेदिनीनगर के कार्यपालक, सहायक और कनीय अभियंता को शो कॉज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7: इस समीक्षा बैठक में अभियंताओं के साथ साथ संवेदकों को भी बुलाया गया, दोनों को संयुक्त बैठक रखे थे और उसमें साफ साफ निर्देश दिया गया है कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई कार्रवाइयां भी कल निर्देश दिए हैं, योजनाओं को रिसाइन करने का भी निर्देश दिया है। शेष बचे को दिसंबर तक का अवसर दिए हैं, दिसंबर तक अगर अनुपालन साक्षर नहीं हुआ फिर बैठक करके कार्रवाई करेंगे।
1: जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में मरीन ड्राइव पर कल रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस एक फायरिंग कांड के आरोपी मोहन यादव और अजीत मंडल को हथियार बरामदगी के लिए ले गई थी। इसी दौरान उन्होंने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। CTSP ललित मीणा ने इसकी पुष्टि की है।
8: चोट लगी, गोली लगी और दिन दहाड़े अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे थे और मैसेज एकदम क्लियर है कि सप्ताह भर के अंदर अंदर जिस तरीके से पुलिस ने उनको खोज निकाला, इस प्रकार से अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं पे भी चला जाएगा, कहीं पे भी अपना छुपने की प्रयास करेगा या कुछ अपना अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेगा तो छोड़ दिया जाएगा। उसको कम से कम समय में उस पर कार्रवाई भी होगी।
1: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर और निफ्टी 89 अंक गिरकर 22,687 पर आ गया था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,31,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई हिस्सों के लिए आज विशेष अलर्ट जारी किया है। राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका है, साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रांची के JSCS स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के लिए आज दोपहर बाद दोनों टीमें राजधानी पहुंच रही हैं। मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक SP राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 9 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव को बताया अपनी सबसे बड़ी पूंजी। झारखंड भर में उत्साह के साथ सुनी गई प्रधानमंत्री की बात। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने विभागीय कार्यों में सुस्ती बरतने वालों पर दिखाई सख्ती। मेदिनीनगर के कार्यपालक, सहायक और कनीय अभियंता को जारी किया शो कॉज। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, दो शातिर आरोपी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। राज्य के कई हिस्सों में आज वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी। और भारत वेस्टइंडीज महामुकाबले के लिए आज रांची पहुंचेंगे क्रिकेट के धुरंधर। सुरक्षा सख्त, ट्रैफिक एसपी ने जारी की रूट और पार्किंग एडवाइजरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं शोभा गोटू को। आप पहले प्रस्तुत कर रही हैं मिस्टर पहाड़ी में ठुमरी, उसके बाद आप प्रस्तुत करेंगी दादरा।

0: अंधेरिया है रात सजन, रहियो की जइयो। अभी आप सुन रहे थे शोभा गुरटू की आवाज में ये दादरा, और इसके साथ ही उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त हुआ।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज सुगम संगीत में सुनते हैं गुलाम अली की गाई चंद गजलें। आगाज करते हैं निदा फाजली की इस गजल से, आवाज और मौसिकी गुलाम अली की है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: India has rejected the Organization of Islamic Cooperations or OIC's remarks on Jammu and Kashmir and India's actions against terror infrastructure in Pakistan. Speaking at the UN General Assembly 6th Committee, Lok Sabha MP Biplab Kumar Deb said those making the remarks were unable to distinguish between the victim and the perpetrator. He asserted that India has the right to defend its people against cross-border terrorism emanating from Pakistan. IMF Managing Director Kristalina Georgieva has called on countries, both rich and poor, to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. Speaking in Singapore ahead of the IMF World Bank meetings in Bangkok next week, she said governments have the tools to address economic challenges but need to take necessary policy decisions without further delay. She also highlighted risks from the rapid expansion of artificial intelligence, including heavy investment in data centers, rising energy demand, and potential financial shocks if AI-related earnings fall short of expectations. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Lakhpati Didi Yojana.
1: The government is implementing the Lakhpati Didi scheme with the objective of economically empowering women in rural areas and increasing their income. The initiative aims to enable women associated with self-help groups to earn at least 1 lakh rupees annually through various sustainable livelihood activities. Women are being provided with facilities such as skill development training, financial assistance, access to credit, guidance for entrepreneurship, and linkages with markets. The Prime Minister has said that the target is now to create 6 crore Lakhpati Didis across the country.
2: 3 crore behno ko humne Lakhpati Didi banane ka lakshy tay kiya tha, usko paar kar liya. Ab hum 6 crore Lakhpati Didi banane ke lakshy ko lekar ke aage badh rahe hain. 3 crore nayi Lakhpati Didi banna matlab gramin arthvyavastha mein bahut bada badlav matru shakti ke dwara aane wala hai.
1: Shilpa Deshmukh, a beneficiary from Parbhani district, shared her experience with Akashwani.
3: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है. इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है. इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है.
1: थ्रू द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, द लखपति दीदी इनिशिएटिव इज स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज, विलेजेस एंड रूरल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग टू द विजन ऑफ विकसित भारत. समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर.
0: India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura during the day. After the Met Department of Himachal Pradesh issued a yellow alert, the weather today has taken a turn once again. Snowfall is occurring in the state's high-altitude mountainous regions, while other areas are experiencing thunderstorms and rain. More from our correspondent.
4: Due to the activity of a western disturbance, the weather in Himachal Pradesh has shifted. High altitude areas are witnessing snowfall, while lower regions are experiencing hailstorms and thunderstorms accompanied by rain. There are also apprehensions of damage to crops. This precipitation has led to a drop in temperatures and an increase in the chill. Snowfall has occurred on the high peaks of Lahul Spiti, Pangi and Kullu, while the high peaks of Pir Panjal range, including the Rohtang Pass, are now draped in a blanket of snow. According to the Meteorological Center in Shimla, a yellow alert has been issued for thunderstorms and lightning in the district of Una, Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, Shimla and Solan for the next 4 days, while light snowfall is expected in Kullu and Lahul Spiti. With Ritesh Kapoor's report, Jigyasa Pandey, Akashvani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says present government's policy focuses on solutions for all citizens, addresses Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stresses the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. IMD forecasts heavy rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And India calls for stronger climate action and faster implementation of Paris Agreement at pre-COP31 meeting in Fiji today. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
2: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
5: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
6: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
5: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
7: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
5: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
5: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
9: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक

0: आरबीआई ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
2: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
1: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
5: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

जय भारती सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को मीता बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार और साथ ही गीतों का ये नजराना भी स्वीकार करें।

किसी के प्यार भरे नजराने अगर मिल जाएं तो फिर जिंदगी कितनी सुखद कितनी हसीन मालूम पड़ती है, ये कहने की जरूरत नहीं फौजी भाइयों। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे हसीन लोग मिल जाते हैं कि दिल करता है जिनसे बस बातें किए जाएं, ढेर सारी बातें की जाए, मगर वो सिरा ही नहीं मिलता जो बातों का सिलसिला शुरू करवाए।

और फिर सुई कुछ इस तरह अटक जाती है।

तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

0: इस कहने सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं ये शौर्य गाथा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार. सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर.
2: कार्यक्रम जय भारती में हमारे सभी फौजी भाइयों का फिर से स्वागत है. फौजी भाइयों, सफर हो या जिंदगी, तन्हा काटनी या तय करनी थोड़ी मुश्किल लगती है ना? तभी तो आप या फिर आपके साथी भी तन्हाई में ये जरूर गुनगुनाते होंगे.

चलिया तू चलिया। फौजी साथियों, जीवन में जब कोई आ जाता है ऐसा मन पसंद, कोई भा जाता है, किसी का साथ भा जाता है, तो फिर और कुछ कहाँ अच्छा लगता है। सिर्फ दिलबर का साथ और उसका प्यार चाहिए होता है।

की खुशी का वास्ते किसी का भी दरवाजा

ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती। किसी का भी साथ सब चीजों से प्यारा होता है। हम चाहते हैं फौजी भाइयों कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई बेहद प्यारा रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मीता बोले तो आपकी मीत कार्यक्रम जय भारती से अनुमति चाहती है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर। दोपहर के 2:55 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा ज्योति यात्रा के तहत विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। साक्षी के बौद्ध मंदिर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक पूर्णिमा साहू और सांसद विद्युत वरण महतो समेत भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर मशाल यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री को 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी।
2: गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना जो देश में चलाई, जो स्वर्णिम काल है।
1: बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने सेवा ज्योति यात्रा सह विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया। सर्किट हाउस के सामने मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर और उपलब्धियों का उल्लेख किया। पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने सर्किट हाउस चौक का नाम बदलकर विकसित भारत चौक करने की घोषणा की। पूर्व विधायक बिरंची नारायण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गढ़वा के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का ऑनलाइन संबोधन सुना। राष्ट्रगान और गीत के बाद वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में ज्योति मशाल जलाकर देश के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की शपथ ली गई। कोडरमा ब्लॉक मैदान में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉ. नीरा यादव समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड स्थित दूधमटिया में आज वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में शुरू हुई यह मुहिम अब 2000 से अधिक गांवों तक पहुंच चुकी है और लोगों में वृक्ष तथा जंगलों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है।
3: क्योंकि जंगल से ही हमें सब चीज मिलता है, तो इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इनके संरक्षण को लेकर के ही जो हम लोग का अभियान है वृक्ष रक्षा बंधन का है, उसके क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये यहाँ पर 31वां साल इसका चल रहा है और निश्चित रूप से इससे जो लोगों को प्रेरणा मिलती है वृक्षों को बचाने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को अपने आसपास के पेड़ों को जरूर बचाना चाहिए।
1: पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यों और भुगतान से जुड़े एनसीसीएफ विवाद को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो पूर्व परीक्षा नियंत्रकों से बिंदुवार लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। कुलसचिव ने एनसीसीएफ के कार्यों को संतोषजनक मानकर एग्रीमेंट विस्तार की अनुशंसा, बाद में भुगतान और उठी आपत्तियों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही परीक्षा डेटा, कंप्यूटर सेंटर और सॉफ्टवेयर संचालन से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। चतरा जिले में 248 सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध 6 अक्टूबर को समाप्त हो गया। इसके बाद जवानों के सामने सेवा जारी रहने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सहायक पुलिस संघ ने सरकार से अनुबंध नवीनीकरण और स्थायी समाधान की मांग की है। संघ के अनुसार अगस्त और सितंबर का मानदेय भी बकाया है। बकाया भुगतान नहीं होने पर समाहरणालय घेराव की चेतावनी दी गई है। साहिबगंज में पेंशन फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। न्यायालय से प्राप्त इश्तेहार बोरियो थाना क्षेत्र के तेलुमांझी टोला निवासी अनवारुल अंसारी और बरा बयासी तुमकी टोला निवासी रोहित कुमार शाह के घर पर चस्पा दिया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों को जांच के दौरान प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
1: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
1: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
1: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
1: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
2: अजीत जी सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
1: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
2: अजीत जी ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है
2: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
2: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गांव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
2: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
2: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
2: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
2: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
2: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
2: जी तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
2: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी।
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
2: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व तो और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: अंकल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना

0: बनाना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
1: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
2: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
0: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
2: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
0: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
2: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं। बस सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
2: सिमरन ने आंखें झुका ली।
0: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
2: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
0: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
4: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत
0: गई।
2: वो सोचने लगी,
0: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
2: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
0: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी।
5: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम? तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकटचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल का साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
3: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
4: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
3: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
5: धन्यवाद सर।

0: में नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
1: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा, इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
0: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
1: क्यों?
0: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
1: हो।
0: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
2: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए शक्कर में कर दिया जाए।
0: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
2: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
0: थैंक यू।
3: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
4: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
3: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
5: किसने खींची चेन?
1: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
0: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
5: व्हाट? क्या मजाक है? ये आप कैसे कह सकते हैं?
0: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
5: आइए आइए, देखते हैं।
0: आइए, हम भी चलते हैं।
5: लेकिन मिस्टर, आइए।
0: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
3: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
0: आइए सर।
5: हाँ भी ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट,
0: यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं।
5: ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
0: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
5: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
6: वी आर सो थैंकफुल टू यू, इट्स अमेजिंग। मे आई नो योर नेम प्लीज?
0: आई एम डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया।
6: इंजीनियर इन चीफ ऑफ मैसूर स्टेट।
2: और रेलवे सचिव भी।
0: नमस्कार सर। जी जी सर, मैं वही हूँ।
6: नमस्कार सर, नमस्कार। वी वर एक्चुअली गोइंग टू अटेंड योर मीटिंग ओनली। इट्स एक्चुअली आवर प्रिविलेज टू मीट यू पर्सनली। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
0: धन्यवाद।
3: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया।

0: बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
1: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
0: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
1: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
0: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
3: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद।

0: जमाने वाला भारत मंडपम और यशो भूमि के झिलमिलाते कांच में आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है, तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं, दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर। और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर KG सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: धन्यवाद
0: सुरेश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशो भूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो, G20 में हमने देखा यशो भूमि जो कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूँ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
1: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला, जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का दे दिया था, या ब्रिक्स का नेतृत्व रहा। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष जब वे आएंगे तो उनको आधुनिक भारत की छवि, जिसमें आधुनिक भारत तो है ही लेकिन साथ में एक प्राचीन सभ्यता की झलक भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आज भारत मंडपम हो या यशो भूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं हम में, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या। मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स है, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है, पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में आज हमारा GDP विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहां कर रहे हैं, निवेशक यहां आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो जिनका आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है इन दोनों का नाम भी शुमार।
0: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चूंकि हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई, वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति

0: बना और फिर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, क्योंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था। कैसे देखते हैं उस फेज को, क्योंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
1: देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी। मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं गया था। स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक हैं, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी है। विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है, विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था। और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूसा में हुई थी, और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था। एक बहुत बड़ा टेंट, जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो फिर ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशोभूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती। जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता, वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब देश। भारत एक विकासशील देश जरूर है, लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 का, वो हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो, चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो, इसका अभी निर्माण हाल ही में हुआ है, और सेंट्रल विस्टा का जिस तरह से तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे, तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोर्ट कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे, तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझें कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
0: जी सुरेश जी, हमने यशोभूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, 3 और ऐसी पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना। कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
1: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक, वहीं से ये यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार की जगह सत्ता में जो विनम्रता होनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है, वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी, उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है, उसका अधिकार है, वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए,
2: हम स्वाधीन जरूर बने 1947 में, लेकिन स्वतंत्र, हमारा अपना। हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पर होता था, हमारे भवन जो है विदेशियों का बनाया हुआ था, हमारा अपना क्या। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की जो यात्रा है, और खासकर अमृतकाल में जो हमने 1947 से लेकर 2022 तक जो हमने जो 75 वर्ष और अमृत महोत्सव बनाया, और वहां से शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो है न सिर्फ हमारे अधिकारों की बात हो, साथ साथ हमारे दायित्व बोध भी हमें, ये बहुत आवश्यक है। एक नागरिक को दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, कि कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ, अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहाँ सत्ता भोगने नहीं है, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए। तो इसलिए हम सेवा तीर्थ में भी वही संकल्प को हम देखते हैं, परिलक्षित होते हुए देखते हैं, हम उसी संकल्प को हम देखते हैं जब आप कर्तव्य भवन जो देखें। अब आप कर्तव्य भवन को देखिए, उनका निर्माण देखिए, आधुनिक सारी सुविधाएं, लेकिन भारतीय विरासत और विकास दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता है। जगह का कितना सदुपयोग हुआ है और उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इकोनॉमिकली ही नहीं, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के दृष्टि से भी उसमें कई, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, उसमें कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो विश्व के आधुनिक भवनों में से उनकी गिनती होती है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आधुनिक इंटरनेट और नेटवर्क और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है, बहुत सोच समझ कर, एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब के मध्य में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है, जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जेड़ा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्ट लक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
1: देखिए, दो तीन चीजें हैं हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है, इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हों और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनको बेहतर बनाया जाए और उनको एक नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक IT का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो उसका जो ड्राइवर है, उसकी ड्राइवर एरिया है वो बेंगलुरु है। तो वहां पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बड़ा है, लगातार बड़ा है, तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है इसके पीछे यही रणनीति है कि वहां पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है और बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान में देखें तो वहां पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहां पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं, तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है, तो एक भारत के एक अलग पहचान दी गई है। भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है, वहां पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 100,000 से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए गए हैं, वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए। नॉर्थ ईस्ट एक हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सिविल एयरपोर्ट भी है और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट है उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन है, चाहे वो डिफेंस के हो चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है, अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें, मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा, आखिरकार 2018-19 में इस पे काम शुरू हुआ और ये 2026 की शुरुआत में वो एयरपोर्ट चालू हो पाया। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, जो पहले बन जाना चाहिए था, जब 2000 से बात चल रही थी तो पहले इस पे क्यों फैसला लिया गया। तो जहां पर इस एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब NCR में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए, ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालमपुर लग रहा था कि 1 घंटे हवाई जहाज हवा में चक्कर काटता रहा क्योंकि लैंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार, सामान, तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले। तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालमपुर उतरते तो वहां पर वो 2 दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन 2 दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
0: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है।
2: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है वहां, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहां श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन याद रखें कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था उन लोगों के नाम जो है वहां जोड़े गए हैं। भारतीय थे, इसमें कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है। लेकिन भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47-48 में, 62 में, 65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है, अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग में अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला बाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा, बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर, और क्या उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल, वो उपयुक्त हो। पहले भी मैं गया हूं वहां तो बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसी जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए? और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो BSF हो या ITBP हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों, तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया, दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो, क्या उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या ये कोई भी देश एक कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया, क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिसकर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है। ये संदेश बहुत आवश्यक है और ये नए भारत की पहचान है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
0: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
1: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है कि भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीजें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हल्के भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो आर्थोकिक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है। लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता आज तक। साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं, और जो इमारतें पहले से भूकंप रोधी नहीं है उनको भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंप रोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति मनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए, उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे

0: सूचना प्रसारित किए जाने की जरूरत है, और भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के जोन 4 या जोन 5 में हैं। तो जोन 4 और जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है, तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके जोन 4 में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें तो एक लोगों को जागरूक करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा जिसे अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। लुटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है। भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं। कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
2: निश्चित ही, देखिए जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सिंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सिंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस भवनों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे तो उसमें नए भारत के, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप, उसी से प्रेरित होकर बनाया था। लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से, और जैसे आपने कहा भविष्य की, अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं, जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में, और हम आज बात कर रहे हैं कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे। कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है, और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
1: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है, उनका आकार, उनका स्थापत्य कला या फिर उनका उपयोग, या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले।
0: देखिए तीनों बातें सही हैं, ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती हैं, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी सिर्फ, और बाकी जो भारतीयता की पहचान है, एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है वो भी है, तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है, कर्तव्य भवन उसका नाम रखा गया, तो एक कर्तव्य पथ का जिसे नाम दिया गया, राजपथ नाम चल रहा था, कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था, कोई नहीं जानता इस बारे में, और अब तक क्यों नहीं बदला गया कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा कि जो नए भवन है, चाहे नए एयरपोर्ट है या नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो वहां पर जैसे हम 60-70 साल पुराने वो बिल्डिंगे थी, उस समय की जरूरत तब दूसरी रही होगी, उस समय जो सरकारी स्टाफ रहा होगा कम रहा होगा, अब बढ़ गया। तो स्थिति ये थी कि एक ही ऑफिस चार अलग अलग बिल्डिंगों में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे। तो वो सिस्टम नए भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरियट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था। फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया, तो ये भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा, आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहाँ पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसकी भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरी जिसे हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है, और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
3: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है, और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच, लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं। और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। जन सेवा से देश सेवा, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष श्रृंखला। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बढ़ते कदम, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
5: बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। हमेशा एक ही लक्ष्य के साथ हाजिर होता हूं कार्यक्रम में कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी में बेहतर करें, किस तरीके से हम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं का लाभ ले सके। ऐसे दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये प्लानिंग भी कर ली होगी कि बहुत सारा शॉपिंग करना है, एंजॉयमेंट करना है, परिवार के साथ घूमना है। तो अब मैंने कार्यक्रम में शुरुआत के साथ इस बात को क्यों छेड़ा, वो इसलिए कि ये तब होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम उसी की बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे इकाई की बात करने वाले हैं जो झारखंड में स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, झारखंड को नशा मुक्त करने के लिए, झारखंड को हेल्दी बनाने के लिए काम कर रहा है, जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। ये क्या काम करता है, उद्देश्य क्या है और कैसे लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचाता है, लोगों को जागरूक करता है और जिस लक्ष्य के साथ एनएचएम बढ़ रहा है उसे कैसे पूरा करता है। आज कार्यक्रम में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, डॉक्टर लाल मांझी जो कोषांग प्रभारी हैं आईईसी के। आईईसी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना शिक्षा और संचार, जो जानकारी है उसके बारे में बात करना है और लोगों को शिक्षित करना है। और हमारे साथ है अजय कुमार शर्मा जो कि आईईसी के मीडिया परामर्शी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम शुरुआत लाल मांझी सर के साथ कर रहे हैं। सर, सबसे पहले जब हम एनएचएम की बात करते हैं, जो आम लोग हैं, आम भाषा में अगर समझना चाहें, एनएचएम है क्या, किस उद्देश्य के साथ ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है?
6: ये एनएचएम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके चलाया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत शुरू में उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए जो भी उपाय किया जा सके, उस मकसद से ये कार्यक्रम को चलाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे इससे अगल बगल संबंधित जो भी कार्यक्रम चलते हैं, इसी के अगल बगल चारों ओर चलते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं मैटरनल डेथ रेट और चाइल्ड डेथ रेट को घटाने के लिए। तो इसीलिए हमारा बृहद तरीके से अभी लगभग 30-32 कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि हम लोग मातृ मृत्यु दर को घटा सके और शिशु मृत्यु दर को घटा सके। जैसे उसके अगल बगल है परिवार नियोजन विभाग। परिवार नियोजन विभाग इसलिए बनाया गया है कि स्वस्थ माता जब होगी तो स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे, इसीलिए उसके पहले से ही तैयारी करने के लिए उस मकसद से बनाया गया कि अगर माँ स्वस्थ होगी, वो कम उम्र में नहीं शादी करेगी, तो माँ स्वस्थ होगी और स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, जिसका हमारे समाज में उसका बहुत जरूरत है। उसके साथ साथ उस बच्चा को किस तरह से सही रखा जाए, उसको देखते हुए एक इम्यूनाइजेशन वाला कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इसके बाद फिर जवान लड़के लड़की जो माँ बाप बनने वाले हैं, स्वस्थ रखने के लिए RKS के प्रोग्राम चलाया गया, जो कि अब ये हाल में ही शुरू हुआ है, जबकि शुरुआती में तो सिर्फ RCS के नाम से शुरू किया गया था। अब इसको अच्छी तरह से चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके ये NHM का गठन किया गया है, जो कि हर जिला में हर गांव तक इसका स्वस्थ रहने का जो तरीका है या किस तरह से हम माँ बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं, उस हिसाब से चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। यही हमारा उद्देश्य है।
5: क्योंकि हमारे साथ अजय सर भी हैं और मीडिया परामर्शी हैं। अजय सर, ये समझना चाहेंगे, जैसे मांझी सर ने हमें बताया कि मातृत्व मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, ये हमेशा से झारखंड में एक समस्या रही है और आप मीडिया परामर्शी हैं, आपका काम है कि इन चीज़ों को कैसे आप मीडिया तक पहुंचाते हैं, लोगों तक करते हैं, आपका फिर रोल क्या आता है, कैसे इन ये जो प्रोजेक्ट है और इन विषयों पर काम हो रहा है, इसको कैसे आप एक तेज गति देते हैं?
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जब बनाया गया था 2005 में, तो उस समय देशी था कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। उसी समय RCS 2 आया था, उससे पहले, और उससे पहले 1956 में IC का गठन किया गया था, विभिन्न विभागों में IC का लाया गया। फिर 2000 में 90 में ICBCC को जोड़ा गया और NHM में स्पेशली IC और इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन को लाया गया, ताकि जो NHM का उद्देश्य है, गोल है, उसको आम जनता जो कि हार्ड टू रीच इलाका में रहती है, गांव में रहती है, दूर दराज के इलाके में रहती है, तो उनको कैसे अपने मैसेज को हम सर्कुलेट कर सके, क्योंकि बहुत से ऐसे साधन है कि शहरी इलाके में तो लोग आसानी से कई मैसेज को गेन कर लेते हैं, पर रूरल इलाका में या हार्ट टू इलाका में मैसेज को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए हम लोग जो काम करते हैं कि मातृत्व मृत्यु दर को कम करना है, तो उसके लिए हम लोग उनको संस्थागत प्रसव करवाना है तो हॉस्पिटल में ले जाए, तो इससे पहले से गाँव या दूर दराज में देखते थे कि लोग प्रसव करवाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर में ही अपना प्रसव करवाते थे, तो संस्थागत प्रसव के लिए उनको प्रोत्साहित करना, या टीकाकरण के लोग नहीं आते थे अपने बच्चों को, कहीं उन्हें भ्रांतियाँ होती थी कि हम टीकाकरण करवाने से विभिन्न तरह की बीमारियाँ हो जाएगी। इसी तरह संस्थागत प्रसव में भ्रांतियाँ होती थी कि माँ दाई घर में ही प्रसव करवाती है तो हॉस्पिटल में करवाने की क्या जरूरत है। तो हम लोग ने उस चीज़ को प्रचार प्रसार लोगों को समझाने की कोशिश किया कि हॉस्पिटल में आपको अच्छे डॉक्टर, अच्छे फैसिलिटी, अच्छे नर्स और अच्छी दवाइयाँ मिलेगी, जो गांव में कई बच्चे मर जाते हैं या दाई या अन्य सुविधाओं के चलते। तो उन मैसेजों को, उन सुविधाओं को डॉक्टर के माध्यम से करवाया जाए, उसके लिए हम लोग विभिन्न माध्यमों का यूज किया उनको प्रचार प्रसार के लिए उन्हीं के भाषा में, लोकल में। जैसे झारखंड को हम लोग ले लें तो झारखंड कई प्रदेश में मघी भी बोला जाता है, वो भी बोला जाता है, नागपुरी भी बोला जाता है, मुंडारी भी बोला जाता है। तो हम लोगों ने क्षेत्रों में बांट के उनके माध्यम से उन्हीं के रूप में मैसेज को सर्कुलेट करने की कोशिश किया। चाहे आप उनको हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ले जाएं, उनको माइकिंग के माध्यम से ले जाएं, या अन आईसी का ऐसे पोस्टर बैनर होर्डिंग से ले जाएं, या गांव-गांव में हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतिक व्यक्तिक संवाद, जो लोगों के पास जाके छोटे छोटे ग्रुप में हमारी जो ग्राउंड लेवल पे सैया है या एनएम है उनको, जो एसएजी ग्रुप है, महिला स्वयं सहायता समूह है, उनको जागरूक करना, बताना कि प्रसव हॉस्पिटल में कराने से क्या फायदा। और एक ट्रेन डॉक्टर, एक ट्रेन नर्स, अगर एक अच्छे डॉक्टर से आप प्रसव करवाते हैं तो आपको बच्चे के जीवित रहने के कितने चांसेस, आपके बच्चे कितने स्वस्थ होंगे, किस तरह से आप जांच करवाएंगे। तो ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मीडियम को यूज करके हार्ड टू रीच इलाके में, ताकि उनकी भाषा में हम लोग ऐड बनाए, छोटे छोटे माइकिंग करवाए, लोगों को शाम के ग्रुप लिसनर्स क्लब बनवाए। इसके अलावा हम लोगों ने ग्राम प्रधान या आपके छोटे छोटे एनजीओ हैं जो गांव में पॉपुलर हैं उनको भी जोड़ा, ताकि सब मिलकर रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि उनको जोड़ के हम लोग उस में उनको मोटिवेट कर सकें। सपोज आप मान लें कि खूंटी जैसा इलाका मुंडा लोग बहुत है, पर वहाँ पे लोग ज्यादा निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं,
5: लैंग्वेज बैरियर
7: है। आप जैसे यहाँ से आप चाईबासा चले जाइए, बंदगांव चले जाइए, यहाँ पे अगर आप नागपुरी बोल रहे हैं तो फिर वहाँ पे मुंडारी आ जाता है, बीच में बंदगांव इलाका, तो वहाँ के लोग ना हिंदी समझ पाते हैं ना नागपुरी, वो समझते हैं मुंडारी। हॉस्पिटल तो जाते हैं, अगर एनएम वहाँ पे नर्सेज हमारी अगर वो हिंदी नहीं बोल पा रही है तो दवाई भी नहीं ले पा रही है। तो उनको उन्हीं के भाषा में लोग समझा सके कि बता सके कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल में मिल रही है, क्या फायदा होगा, इस पे हम लोगों ने काम किया ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके।
5: माजी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप नोडल हैं, एक तो नोडल की जिम्मेदारी क्या होती है, आपको क्या काम सौंपा जाता है, किन चीजों को कोऑर्डिनेट करना है, और कैसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल करते हैं और अलग अलग जगह पहुंचाते हैं, ये चैनल कैसे काम करता है?
6: मैं आईसी के हैसियत से यही कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य संबंधी जितने भी कार्यक्रम हमारे स्टेट में चलते हैं, हमारे राज्य में चलते हैं, उसको किस तरह से जन जन तक, लास्ट आदमी तक हम लोग पहुँचाएँ इस संदेश को, क्योंकि सब आदमी तो जानते हैं अस्पताल होता है, स्कूल होता है, ये होता है, लेकिन किस किस तरह का काम होता है, किस किस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे बीच में चल रहा है, किस अस्पताल में क्या क्या हो रहा है, उसकी जानकारी देने के लिए हम लोग को बहुत तरह तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उन तक हम किस तरह से संदेश पहुँचाएंगे, वो हम लोगों को सोचना पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने नहीं जानते, दीवार में लिख देंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, उन पर किस तरह से, किस तरह का विज्ञापन देंगे, किस तरह का प्रचार करेंगे कि वो समझेंगे। उसी तरह से गांव में जो विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं उन तक हम लोग किस तरह से इस तरह का प्रचार कर सकते हैं, ताकि वो समझ पाए कि हमारे अस्पताल में ये योजनाएं चल रही है और इस योजना से क्या का सुविधा से कन्विंस कर पाएं, समझा पाएं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसीलिए तरह तरह के संचार या मीडिया या प्रचार का तरीका हम लोग अपनाते हैं, ताकि 100% हम लोग का मैसेज उन पब्लिक तक पहुंच पाए।
5: माजी सर, वो चैनल क्या है, अगर मैं जो हमारे श्रोता है बढ़ते कदम कार्यक्रम के, वो भी एक समझे, जब एक संस्था की बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बहुत बड़ा चैनल काम करता है, हमें सुनने में तो बहुत आसानी से हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है,
8: जैसे आपने भी कहा और अजय सर ने बताया कि कैसे एक चैलेंज होता है कि गांव के क्षेत्र में, खासकर जहां पे लैंग्वेज बैरियर भी है, लोग ज्यादा पढ़े नहीं है, बाहर नहीं है, चैनल क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन किन के साथ होता है, अगला कैसे कोऑर्डिनेट करता है, ये एक प्रॉपर चैनल कैसे काम करता है?
6: जी, ये हम लोग का तरह तरह का अलग अलग तरह का चैनल है। जैसे अगर हम लोग कुछ तो पेपर के माध्यम से करते हैं, कुछ रेडियो के माध्यम से करवाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो चैनल होता है ये पब्लिक तक पहुंच करके, वहाँ के PRI तक पहुंच करके, वहाँ के मुखिया, वहाँ के सरपंच तक पहुंच करके, वहाँ के धर्म गुरुओं तक पहुंच करके, उस एरिया के जो पब्लिक जो है जिस पर विश्वास करते हैं उसको हम लोग कन्विंस करके ये हम लोग प्रचार प्रसार करने का तरीका अपनाते हैं। ये हम लोग का एक चैनल है।
8: अच्छा सर, यहाँ पर आप लोगों का भी एक रोल आता है कि चीजें सही जगह पे ही ड्रॉप हो, कैसे ये सुनिश्चित हो पाता है?
7: NHM एक प्रोग्राम है और NHM में हर लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, एक ग्रास रूट लेवल हो, सारे स्टाफ हैं, सारे डिपार्टमेंट सेक्शन अलग अलग बटे हुए। जैसे स्टेट लेवल पे सर नोडल ऑफिसर है, ठीक है, इसके अंदर में स्टेट में एक टीम है IC ब्यूरो, ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 4-5 सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें क्रिएटिव आर्ट डिजाइनिंग है, इसमें आपका अलग चैनल है मास मेल इवेंट का, एक है सोशल मीडिया का, एक है आपका मॉनिटरिंग का, ठीक है, इसी तरह से एक है IPC का। तो स्टेट लेवल पे और भी जैसे एड्स कंट्रोल है या फिर आयुष्मान भारत है, इस तरह जो 32 अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम है, तो वो यहाँ पे लीड करते हैं सर, ठीक है। तो सारे प्रोग्राम को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, बैठक, कई मीटिंग्स होते हैं, कई कैंपेन जो चलते हैं हमारे, जैसे कि मान लीजिए पखवाड़ा, फैमिली पानी पखवाड़ा आने वाला जुलाई से, तो हम लोग उस सेल के साथ भी मीटिंग करते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है जिला लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, ग्राम स्तर तक। तो अब मान लीजिए किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई हमने उस पूरा एक प्रोग्राम का रूपरेखा तैयार किया कि कैंपेन कब से शुरू होना है किसी प्रोग्राम का, या IC मटेरियल्स कब जाना है, या जो हमने बनाया है लोगों को जो मैसेज देना, ब्लॉक स्तर पे या गांव में ग्राम स्तर तक कैसे पहुंचे। तो ये स्टेट की टीम जिला लेवल में IC सेल बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, स्टेट के बाद जिला लेवल में, जिला के बाद प्रखंड स्तर पे IC सेल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे CMO सिविल सर्जन की अध्यक्षता में देखते हैं, जो वहाँ पे DPMs हो गए और आपके DPC हो गए, ये आपके नोडल देखते हैं, IC को CMO नोडल ऑफिसर। ब्लॉक लेवल पे हमारे हो गए MOIC जिनके अंदर BPM है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, और फिर आपके आयुष्मान भारत आ गया, जो हम लोग बोलते हैं आयुष्मान रोग्य मंदिर, जिनका अभी नाम कन्वर्ट हो गया, तो वो हमारे यहाँ पे लगभग 4,000 के आसपास है। तो फिर अंतिम हम लोग हार्ड टू रीच में गांव में वहाँ जाते हैं, और इसको हम लोग आंगनवाड़ी, ठीक है, और सेविका सहायिका से भी, SSC ग्रुप से भी जोड़ते हैं, कोई भी एक्टिविटी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, लाते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल को स्टेट लेवल पे डेवलप होता है, और हम लोग फंड, जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं RoP, और एक बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स इन्वॉल्व, जो हम लोग जिला को भी भेजते हैं, कई काम स्टेट लेवल से होना है और कई काम जिला लेवल से होना है, कई काम ब्लॉक स्तर से होना है, तो फिर कई स्टेट यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग करता है, जिला और ब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन में रहता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हम यहाँ से गाइडलाइन भेजा, हमने प्रोटोटाइप भेजा, कई बार हम लोग यहाँ से कई मटेरियल्स भी भेजते हैं, जिला उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो जिला वहाँ पे अपने, मान लीजिए हमारा कैंपेन होना, पोस्टर्स बैनर छपवाना, माइकिंग छपवाना, लोगों को वहाँ पे ग्रुप मीटिंग करवाना, रिलीजियस लीडर मीटिंग करवाना, प्रेस ब्रीफिंग करवाना, प्रेस ब्रीफिंग स्टेट में भी होती है, फिर किसी प्रोग्राम का लॉन्च करना, स्टेट लॉन्च होना, डिस्ट्रिक्ट लॉन्च होना, ब्लॉक लॉन्च होना, तो ये एक चैनल बना हुआ है स्टेट से लेके ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेके आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक, और सबसे नीचे आ गई आपकी सहिया आ गई, तो सहिया बनी हमारी लगभग 39,000 है, तो हर गांव में 1,000 के पॉपुलेशन पे एक सहिया होता, हम उनको बेस्ट यूज करते हैं IPC के लिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, और उनको यूज करते हैं कभी कभी, जैसे कोविड के दौरान हम लोगों ने, ऐसा महामारी था इसमें लोग बाहर निकल के नहीं आ रहे थे, पर स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग था जो पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग जो अड़ा रहा, जो हम लोग रात रात बैठे काम करते हैं अपनी जान की परवाह की बिना, तो हम लोगों ने हर जगह पे वॉल पेंटिंग करवाया सिया से कि कोविड की टीका क्यों जरूरी है, क्यों कोविड लेना है, हैंड वॉश करना है, तो मास्क ढस के रखना है, 2 फीट की दूरी अपनानी है, तो जो भी कैंपेन हो होता है ग्राउंड लेवल पे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों को लाने के लिए, बताने के लिए, वो अंतिम चैनल जो ग्रास रूट पे वो सही है। तो ये चैनल पूरा एक एनएचएम का और स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड देन फिर आरोग्य मंदिर से उठ के ग्राम स्तर पे सैया पे जाके काम,
8: एक बहुत बड़ा चैनल काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हैं तो आपकी योजनाएं, आपका प्रयास वहां तक पहुंच रहा है। माजी सर, जब आप इन चीजों को देखते हैं, क्या एक बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि जब हम मातृत्व मृत्यु दर की बात करते हैं, शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं, परिवार नियोजन की बात करते हैं, किशोरी स्वास्थ्य की बात करते हैं, या फिर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, जो अभी अजय सर बता रहे थे कि कैसे लोगों तक आया, आपने बताया कि वहां के जो मुखिया है, सरपंच है, धर्म गुरु है, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, चेंजेस क्या देख रहे हैं, बदलाव किस तरह का महसूस कर रहे हैं?
6: निश्चित रूप से बदलाव अभी पूरी तरह से नजर आ रहा है, दिख रहा है, बहुत बदलाव हुआ है। जब हम देखे बचपन में थे, मैंने भी कभी टीका नहीं लिया था, मेरी माँ बाप को नहीं पता था कि टीका भी लेना है। लेकिन अब इतना बदलाव आ गया है कि अब माताएं जो हैं, माताओं के बीच में जागरूकता इतनी आ गई है कि पिताजी भले अस्पताल नहीं जाता हो, लेकिन माँ जो होती है अपने बच्चे को लेकर के जरूर जाती है। और इससे जो शिक्षा मिलती है और सबों को, बच्चों को भी, कि हम लोगों को अस्पताल जाना है, इससे हम और इससे बृहद बदलाव देखने को, मैंने भविष्य में हम देख रहे हैं बहुत बदलाव आएगा। और निश्चित रूप से अभी बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है।
8: एक चीज जो है, महिलाएं जो होती है वो ज्यादा जागरूक नजर आती हैं। आप ये महसूस करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अब ये चीजें एकदम से पहुंच गई हैं, वो अवेयर हैं, या अभी भी आपको लगता है कि इस पे भी और काम करने की जरूरत है इन चीजों को लेकर?
6: अभी और काम करना बाकी है। बहुत सारे जगह में ऐसा देखा गया है कि इस मामले में जागरूक कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये देखा देखी में अगल बगल के हिसाब से वो लोग जागरूक होते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को और प्रयास करना है कि कब हम लोग इस हमारा प्रचार प्रसार को एक अनपढ़ औरत तक पहुंचाएंगे, ताकि हम लोग का उद्देश्य ये सफल हो जाए। ये हम लोग का प्रयास अभी जारी है,
8: आखिरी व्यक्ति तक ये चीज पहुंचे। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आप लोग चलाते हैं कि जिसमें लोग शामिल होते हैं, एक दो दिन का आयोजन होता है, जानते हैं विषयों को, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं?
6: जी, हम लोगों ने परिवार नियोजन के तरफ से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और उस तरह का जो सभा होता है उसमें सबको बुला करके गाँव के, जैसे अभी सास बहु सम्मेलन होता है, उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग प्राइज देते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, ताकि इस संबंध में जागरूकता फैले। और इसके अलावा हम लोगों के बीच में कुछ डेवलपमेंट पार्टनर होते हैं जो कि हम लोग के कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं। वे लोग भी गांव-गांव जा करके सहिया स्तर तक या फिर नीचे लेवल में जा करके इसका प्रचार प्रसार करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और सबको जागरूक करने का कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इससे हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल जाता है हम लोग का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए।
8: हॉस्पिटल्स को कैसे आप लोग देखते हैं, कैसे जोड़ते हैं? जैसे सदर अस्पताल की बात करें, वहाँ पे भी आप लोगों का रोल होता है?
6: सदर अस्पताल में भी हम लोगों का रोल होता है, इसीलिए कि हम लोग जो भी मरीज को हम लोग लोअर लेवल में देखते हैं, सीएससी में देखते हैं या एचडब्ल्यूसी में देखते हैं या पीएससी में देखते हैं, उनको हम लोग सदर अस्पताल में रेफर करते हैं। जैसे कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर कुछ एनसीडी का हम लोग का प्रोग्राम है, जो कि निचले स्तर में वो इलाज भी नहीं हो सकता है और जांच भी नहीं हो सकता है, उन सब मरीजों को निचले स्तर में पीएससी सीएससी उनका स्क्रीनिंग करके हम लोग जिला लेवल का अस्पताल तक पहुंचाते हैं, ताकि उनका इलाज सही तरीके से और बेहतर तरीके से किया जा सके।
8: जब आप इस एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप लोग हैंडल करते हैं, मीडिया में जाते हैं, स्कीम्स लाते हैं, आपके सामने जो आपको लगता है कि ये बार बार हर्डल बन रहा है या ये मुश्किल है और इसको अब आपको ठीक करना है, इस चैलेंज को पूरा करना है और इससे आगे निकलकर फिर आगे काम करना है, वो चैलेंजेस कौन से हैं जो आप लोग फील्ड पे फेस करते हैं?
6: कुछ ऐसे कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जैसे हम लोग का टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, जो कि इतने भयंकर बड़े बड़े कंपनी उनका एडवर्टीजमेंट इतना भयंकर होता है कि हम लोगों के जो भविष्य के पीढ़ी के बच्चों तक को वो लोग कस्टमर बनाना चाहते हैं अभी से। ये हम लोगों का बहुत बड़ा चैलेंज है और उन लोगों के पास इतना पैसा है जो कि हम लोग उसका तोड़ निकालने के लिए भी असफल हो जाते हैं। हाँ, उनके एक ऐसा तरह का जो प्रचार प्रसार वो लोग करते हैं जो कि हम लोग उसको रोक नहीं पाते हैं और हम लोग उसी में लड़ते रहते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने बच्चे को बचाएं। ये हम लोग का बहुत दिखा
8: हुआ है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टोबैको कंट्रोल पे बहुत काम कर रहा है, राज्य सरकार भी उस पर विशेष बहुत सारी की योजनाएं चला रही है, सरकार की भी कोशिश है। अजय सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है जो माजी सर बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी कस्टमर तैयार कर रहे हैं ये लोग, और वो भी है, और आपको ये अपने साइड से प्रचार करना है कि इसको रोकना है, इसको कंट्रोल करना है, कितना बड़ा चैलेंज होता है, कैसे टैकल करते हैं फिर मीडिया के माध्यम से?
7: देखिए, टोबैको प्रोग्राम या टोबैको को लेकर आप मतलब कई तरह के इनिशिएटिव लिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। अभी आप देखते होंगे कि हर सिनेमा में, जब भी आप सिनेमा देखते होंगे, शुरुआत में या अंत में या सिनेमा के बीच में टोबैको को लेके कई प्रचार दिए जाते हैं, कई सेलिब्रिटीज आते हैं, कई लोग सेलिब्रिटीज इसमें काम कर रहे हैं। पर ये भी सच है, टोबैको को लेकर गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा टैक्स भी मिलता है, फंड भी जनरेट होता है, तो ये तो पैरेलल चल रहा है, जो मुझे नहीं लगता है कि हटने वाला है। तो अब हम लोग का इशू होता है कि लोगों को हम कैसे बिहेवियर चेंज करें, लोगों को कैसे मोटिवेट करें कि ये भाई टोबैको लेना आपके शरीर के लिए हानिकारक है, जबकि आप हर सिगरेट के पैकेट पे देखते हैं कि एक गंदा सा फोटो बना होता है दिल का। आप हर फिल्म में देखते होंगे मुकेश एक कैरेक्टर है, जो आप फिल्म में देखते होंगे मुकेश को एडमिट हो गया, उसका फेफड़ा जल गया या इतना टार निकलता है, प्रचार चलता है, फिर भी लोग इससे, आजकल क्या हो गया, लोग शौकिया, आजकल के युवा शौकिया दिखावे में ज्यादा यूज करते हैं। तो हम लोग के लिए एक मेजर चैनल है कि लोग बोलते तो है, शपथ भी लेते हैं कि नो टोबैको के दिन हम लोग शपथ लेते हैं धूम्रपान नहीं करेंगे, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं। अब सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब एजुकेशन लेवल पे इसको, जैसे कि आप क्लास 12th या क्लास 8 से एजुकेशन लेवल पे इसको जोड़ा जाए कि क्या इसको, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 30 के बाद लोग अगर ज्यादा उसको हम एजुकेट करें या अगर ज्यादा मैसेज को गेन नहीं करते, पर युवाओं को ज्यादा हम उसको एजुकेट करें तो मैसेज को ज्यादा गेन करते हैं और अपने बिहेव में भी लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का प्रयास यही रहता है कि सोशल या एजुकेशनल चीज में हम लोग इसको लेके आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अवेयर हो सके, इसके बारे में जान सके,
8: प्रभाव
7: नजर आए, क्योंकि अब जो काफी 30 साल 15 साल 20 साल से ले रहे हैं उनको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, उनके आपकी अल्टरनेटिव है, जब तक उनके पास ये नहीं बोल दिया जाए कि अब आप इससे आपके शरीर को नुकसान या किडनी फेलियर हो जाएगा, ये नहीं होगा, या आपको नहीं डराया जाएगा, तब तक कोई छोड़ेगा नहीं। तो एक एजुकेशन लेवल पे या एडोलेशंस बॉय गर्ल्स को हम एजुकेट करें कि इससे क्या है, नुकसान है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, तब उससे हम लोग हो सकता है ज्यादा इम्पैक्ट ला सके, ये एक हो सकता है समाधान।
8: माजी सर, चूंकि कार्यक्रम बढ़ते कदम है और बहुत सारे श्रोता आज आप दोनों को सुन रहे हैं, और NHM की जब बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की बात करते हैं, इतनी सारी योजनाएं चला रही है, जो फोकसली हमने बात किया कि मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कैसे कंट्रोल किया जाए, परिवार नियोजन पर लगातार काम हो रहा है, और चलिए आपके ये प्रयास रंग ला रहे हैं और आगे भी और बेहतर करें। अगर भविष्य की हम बात करें, कुछ प्लानिंग और है, कुछ नई चीजों की प्लानिंग है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग?
6: हम लोग का सोचने का तरीका कुछ अलग तरह का है, किस तरह से भविष्य का युवा पीढ़ी को स्वस्थ बनाए, हेल्दी बनाए, इसको करने के लिए हम लोगों को किस किस तरह का प्रचार प्रसार का तरीका हम लोग अपनाना पड़ेगा, ताकि वो लोग आसानी से समझ पाएँ कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उद्देश्य तो एकमात्र यही है कि मातृ मृत्यु दर को घटाना, शिशु मृत्यु दर को घटाना, उसके साथ साथ ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं जो अभी हमने बताया कि ये टोबैको के चलते भी हमारा भविष्य का पीढ़ी बर्बाद हो सकता है, भविष्य के माता पिता का जो स्वास्थ्य रहता है उस पर असर पड़ सकता है, इसीलिए हम लोगों का एक ये अभी चलता रहेगा इस तरह का कार्यक्रम, हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे हम लोग इस मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटाएं, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे ब्रांच है, इन सबको कंट्रोल में हम लोग को रखना है, इसीलिए एक नहीं हजारों हम लोगों को प्रचार प्रसार करने का तरीका अपनाना पड़ सकता है इसको भविष्य को की स्थिति को सुधारने के लिए।
8: अरे सर, एकदम कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव में है, मीडिया परामर्शी के तौर पर आप आज लोगों को क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो आज बढ़ते कदम कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं?
7: देखिए, लोगों के लिए मैं मैसेज यही है कि स्वास्थ्य पे लोगों को अब जागरूक होने के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में भी अब अपने बात करने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, क्योंकि लोग लाइटली लेते हैं कि पहले स्वास्थ्य को पीछे रखते हैं, अदर चीज को आगे रखते हैं, पर जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप अदर चीज करेंगे नहीं। तो आपको स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में देना होगा, ठीक है, और प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी हेल्थ पे, चाहे आज हम योगा की बात कर लेते हैं या अभी हमने योगा डे मनाया, तो आपको मेरा यही कि हर दिन कम से कम या सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन अपने शरीर पे ध्यान दें, आधा घंटा निकालें, एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, ताकि स्वस्थ, अगर स्वस्थ रहेगा शरीर तभी आप अपने अपने मन को शांत रखेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। और हेल्थ डिपार्टमेंट और NHM का भी वही मोटिव है कि हम लोग का जो रोल है, हम लोग पहले बात करते थे IC पे, फिर बात किए बिहेवियर चेंज पे, अब हम लोग बात करें सामाजिक व्यवहार परिवर्तन यानी सोशल बिहेवियर चेंज पे, कि एक के बदलने से नहीं होगा, दो के बदलने से नहीं होगा, समाज में जब बदलाव आएगा, जैसे सर ने जैसे जिक्र किया टैबेको, तो जब पूरा समाज या गांव छोड़ेगा तब जाके उनके सामाजिक व्यवहार परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। तो हमारा मैसेज वही है कि सारे मिलकर इस पे आगे बढ़े, काम करें।
8: सोशल बिहेवियर चेंज बहुत बड़ी बात आपने बताई और ये जरूरत है, इस पे हम

0: और अपना शरीर को स्वस्थ रखे, यही मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
1: डॉक्टर लाल मांझी सर और अजय सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: कोई बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड से आईसी सेल से अजय कुमार शर्मा जो मीडिया परामर्शी है और डॉक्टर लाल मांझी जो कोषांग प्रभारी है। कार्यक्रम बढ़ते कदम के आज के इस अंक में बस इतना ही। जरूरी ये है कि कार्यक्रम में हम जो बातें करते हैं, जो निष्कर्ष हमारे सामने आता है, जो एक्सपर्ट्स अपनी बात बताते हैं, जो जानकार अपनी बात बताते हैं, उसे हमें और आपको फॉलो करना है। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उठाना है और अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ना है। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान एक नए विषय के साथ। मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम बढ़ते कदम, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का राज्य केंद्र। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर में यानी 4:35 पर आप सुनेंगे हमारी विशेष प्रस्तुति मेक इन इंडिया। संध्या 5:00 और 6:00 आप सुनेंगे मुख्य प्रादेशिक। 5:00 चर्चा वर्ल्ड कॉटन डे और नेशनल इनर ब्यूटी डे। 5:30 पर आप सुनेंगे औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक।

संध्या 6:02 से आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बाड़ी और 6:32 का समय होगा हमारी दुनिया का। 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और आदिवासी अखड़ा में आज आप सुनेंगे मुंडारी भाषा में, जिसमें होगी चर्चा त्योहारों में रखे स्वास्थ्य का ध्यान और मनाए सावधानी के साथ। इस कार्यक्रम का आप सुनेंगे 7:15 से। श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम का समय होगा 8 और उससे पहले आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, जिसका समय होगा 7:45 से। 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी समाचार की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूँ कामिनी। आत्मनिर्भरता की हुंकार, स्वदेशी का गौरव और सशक्त भारत का नया संकल्प, यह है मेक इन इंडिया। एक ऐसी परिकल्पना जिसने देश के विनिर्माण क्षेत्र को एक नई वैश्विक पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र जन सेवा से देश सेवा के तहत शुरू हुई इस मुहिम में आज पूरा देश अपनी सहभागिता निभा रहा है। लेकिन जब हम औद्योगिक क्रांति और स्वदेशी निर्माण के इतिहास और वर्तमान की बात करते हैं, तो भारत के मानचित्र पर एक राज्य पूरी चमक के साथ उभरता है। वह है हमारा झारखंड। झारखंड का छोटा नागपुर पठार, विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका, न केवल देश की खनिज संपदा की रीढ़ है, बल्कि मेक इन इंडिया की जमीनी हकीकत को बयां करने वाला सबसे बड़ा केंद्र भी है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम चलेंगे जमशेदपुर की उस धरती पर, जहां स्वदेशी की नींव सदियों पहले रखी गई थी, और बात करेंगे चाईबासा की उस माटी की, जहां खनिज संपदा भारत के सुनहरे भविष्य की कहानी लिख रही है।

0: नागरिक की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक महाअभियान है। जन जन की सेवा करते हुए कैसे देश को समृद्ध बनाया जाए, इस दूरदर्शी सोच को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
1: जब मैंने कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर काम करना है तो पुराने उस समय के इकोसिस्टम के लोगों को ये समझ नहीं आया था। उनको लगता था कि निराशा के उस दौर में मेड इन इंडिया संभव ही नहीं होगा।
2: साथियों, बीते 11 वर्षों में भारत ने बार बार दिखाया है कि हम जो ठानते हैं वो हासिल करके ही रहते हैं। कुछ वर्ष पहले जब देश ने मेक इन इंडिया का संकल्प लिया था तब कुछ लोगों ने शंकाएं आशंकाएं जताई थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी लगभग 8 गुना तक पहुंच गया है। इसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना से अधिक बढ़ गई है और हमारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में तो 100 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

0: प्रधानमंत्री के इसी विजन को अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना हो तो हमें लौह नगरी जमशेदपुर का रुख करना होगा। मेक इन इंडिया के संदर्भ में पूर्वी सिंहभूम के खनिज संसाधनों और औद्योगिक क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और वरिष्ठ राजनेता सरयू राय का मानना है कि जमशेदपुर के लिए विनिर्माण की यह अवधारणा कोई नई नहीं है।
1: जो हमारा मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है, खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो यह तो जमशेदपुर में 100 साल पहले से चल रहा है। टाटा स्टील ने आरंभ किया अपना स्टील का और लोहे का कारखाना, तो मेक इन इंडिया के उदाहरण है। अब उसके अलावे आधा दर्जन उद्योग हैं, टाटा मोटर्स है, टिमकेन है, और भी दो तीन उद्योग हैं जो यहाँ लगे हुए हैं जमशेदपुर में, ये सब मेक इन इंडिया के ही उदाहरण है। आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने कुछ उद्योगों को देखा जो विश्व स्तर के उद्योग से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
0: वास्तव में जमशेदपुर में संचालित कई बड़े उद्योग स्वदेशी उत्पादन और देश के औद्योगिक विकास के जीवंत उदाहरण हैं। केवल बड़े कारखाने ही नहीं बल्कि जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम उद्योग कार्य कर रहे हैं। ये लघु उद्योग ऐसे सूक्ष्म और जटिल कलपुर्जों का निर्माण कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल हमारे देश की सुरक्षा के लिए बनने वाले विमानों और पनडुब्बियों जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक उपकरणों में किया जाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाने में जमशेदपुर और संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र एक धुरी की तरह काम कर रहा है। मेक इन इंडिया को वास्तविक गति तब मिलती है जब बड़े उद्योगों के साथ साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME क्षेत्र को मजबूती मिले। भारत सरकार की नई नीतियों और MSME को दिए जा रहे बढ़ावा के कारण आज छोटे व्यापारियों में एक नया आत्मविश्वास जगा है। विशेष रूप से भुगतान नियमों में किए गए सुधारों ने इन छोटे उद्योगों की वित्तीय तरलता को सुधारा है। जमशेदपुर के बैटरी व्यवसाय से जुड़े और MSME योजना के लाभुक मौलिक कुमार इस सहूलियत को बड़ी राहत मानते हैं।
2: छोटे लघु उद्योग जो है वो किसी भी देश की या किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं और सरकार उन पर अच्छा फोकस कर रही है और उन पे अगर फोकस करेगी, ध्यान देगी बढ़िया से, तो ग्रोथ अच्छा खासा होगा और ओवरऑल जो है देश में समृद्धि आएगी। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो रहेंगे, जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर रहेंगे उतना ज्यादा रोजगार वो लोग सृजन करेंगे और जो लोगों में एक ये है ना कि जॉब्स नहीं है, लोग क्या है कि ज्यादातर सरकारी नौकरी को जॉब्स गिनते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी एक अपनी एक अलग ही पहचान है, अच्छा पैसा भी है और अच्छा ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट भी उसमें रहता है। तो MSME सेक्टर जितना ग्रो करेगा उतना इकोनॉमी में जॉब का भी सृजन होगा।
0: बाजार में समय पर पूंजी का यह चक्र घूमना लघु उद्योग के जीवित रहने और बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की तरह है। इसी सकारात्मक बदलाव की तस्दीक करते हुए एक अन्य स्थानीय व्यवसायी हर्ष कहते हैं।
3: मैं हर्ष बात्रेवाल, हमारा उद्योग है माइका मोल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम लोग रेलवे के पार्ट्स बनाते हैं। हम लोग एक MSME यूनिट है। MSME को अलग से क्लस्टर करने से हम लोग को एक बहुत फायदा हुआ है। काफी सारी चीजें डिफरेंशिएट हुई है, काफी रूल्स आए हैं जिसके अंडर हम लोग फॉलो करते हैं, ताकि क्या है हम लोग को इजी गोइंग बिजनेस हो सके। जैसे कि सबसे पहला एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निकाला है 45 दिन का पेमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हम लोग को 45 डेज के अंदर में इसका पेमेंट ये करना है। दूसरी चीज MSME फेलिसिटेशन सेंटर, जो कि एक हर शहर हर सिटी मेजर सिटीज में होनी चाहिए। थर्डली MSME क्लस्टर से हम लोग को काफी लोन बैंक से सपोर्ट मिलता है। एंड फोर्थ, MSME का अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो सो दैट वी कैन डेवलप, हम लोग प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सके, हम लोग आगे बढ़ सके। हमारे आगे में कहीं पर भी रोकथाम कुछ भी होने से गवर्नमेंट हम लोग को पूरी तरह से उसमें सपोर्ट कर रही है।
0: इस औद्योगिक सुधार और व्यापारियों के बदलते मूड का व्यापक असर बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मानो केडिया का मानना है कि यह बदलाव आने वाले दिनों में देश के विनिर्माण क्षेत्र का नक्शा बदल देगा।
4: गवर्नमेंट की एमएसएमई को लेकर अच्छी सोच है और वो चाहते हैं कि एमएसएमई ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आज हम चाइना, जर्मनी, जापान, अगर सभी कंट्रीज को देखें, ताइवान को देखें, तो वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत आगे बढ़ी है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की ये सोच थी कि एमएसएमई यूनिट्स को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा औद्योगिक विकास होगा और एक्सपोर्ट में भी सरकार जो है बहुत ज्यादा ध्यान दे रही, सपोर्ट भी कर रही है भारत सरकार और राज्य सरकार। और आने वाले समय में जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मार्केट चारों तरफ फैल रहा है, सरकार भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा विश्वास करिए कि हम यहीं पर R&D करें और इस प्रोडक्ट का निर्माण यहीं पर करें, तो आने वाले समय, आने वाला भविष्य जो है वो ऐसे यूनिट्स के लिए बहुत लाभकारी है।
0: पूर्वी सिंहभूम की औद्योगिक चमक के साथ ही सटा हुआ पश्चिमी सिंहभूम और चाईबासा का क्षेत्र अपनी असीमित खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अधिकांश खनिज संसाधन प्रचुरता में उपलब्ध हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज और चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण चाईबासा हमेशा से देश के औद्योगिक परिदृश्य पर रहा है। चाईबासा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष अनूप कुमार सुल्तानिया की माने तो मेक इन इंडिया की परिकल्पना ने इस पूरे क्षेत्र के व्यावसायिक दृष्टिकोण को बदल कर रख दिया है।
5: देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। इसके पीछे लक्ष्य यह था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब बनाना। पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में अनेक राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरे हैं, जिसमें झारखंड भी एक राज्य है। मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मेक इन झारखंड शुरू की गई। चूंकि झारखंड में कुल खनिज का 40% झारखंड में टाटा स्टील और बोकारो जैसे ज्वाइंट स्टील प्लांट है, जिन्होंने पिछले वर्ष 170 मिलियन टन से ज्यादा स्टील का उत्पादन किया था, झारखंड सरकार द्वारा मेक इन झारखंड के तहत 5 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें पहला क्षेत्र था लो एस कोयला, तांबा, अभ्रक के प्रचुर भंडार के कारण सरकार ने स्टील, रोलिंग स्टील, स्पंज आयरन के निर्माण को काफी प्रोत्साहित किया। झारखंड में स्टील प्लांट की काफी संभावना है, क्योंकि यहां पर लो एस और कोयला दोनों ही है।
0: लेकिन इन संभावनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने के लिए बुनियादी ढांचे और नीतिगत सहयोग की और अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। खनन एवं खनिज विकास की यहां की स्थिति एवं वर्तमान संभावनाओं पर बात करते हुए चाईबासा के प्रबुद्ध नागरिक गौरी शंकर झा सरकार को विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण का सुझाव देते हैं।
6: केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया परिकल्पना की झारखंड में व्यापक संभावना है। जैसा कि सबको पता है कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है, तो झारखंड में भी खनिज आधारित निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसा करने से न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में रोजगार की असीमित संभावनाएं पैदा होगी।

0: झारखंड की इस धरती में केवल पाताल में छिपा खनिज ही इसकी ताकत नहीं है, बल्कि इस माटी के ऊपर रहने वाले इसके लोग और उनकी कर्मठता इसकी असली पूंजी है। पश्चिम सिंहभूम के युवा समाज सेवी रवि बिरोली का मानना है कि श्रम और खनिज का यह मेल ही झारखंड को मेक इन इंडिया का अगुवा बना सकता है।
1: इंडिया झारखंड के युवाओं के लिए अपने हुनर को आगे बढ़ाने और नए अवसर प्रदान करने का एक अच्छा रास्ता है। वहीं झारखंड में प्राकृतिक संसाधन काफी भरपूर मात्रा में है, जिससे छोटे छोटे उद्योग का निर्माण कर बहुत बेहतर तरीके से उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके।
0: राज्य में खनन का क्षेत्र बहुत बड़ा है और खनिजों की भी प्रचुरता है। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत यहाँ विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाना अनिवार्य है। जब झारखंड के खनिज यहीं के कारखानों में प्रसंस्कृत होकर उच्च स्तरीय मशीनों, विमानों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बदलेंगे, तो न सिर्फ देश के नागरिकों को सस्ते और उत्कृष्ट स्वदेशी उत्पादों का लाभ मिलेगा, बल्कि भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत भी हम कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से देश सेवा के संकल्प को साकार करने की पूरी क्षमता झारखंड की इस वीर और रत्न गर्वा वसुंधरा में निहित है। आवश्यकता है तो बस एक सुनियोजित प्रयास और नीतियों के सटीक क्रियान्वयन की। आकाशवाणी रांची के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल और चाईबासा से दिलीप कुमार बनर्जी के साथ समाचार कक्ष से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
2: श्रोताओं, आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति से यह साफ है कि मेक इन इंडिया को यदि एक सशक्त और आत्मनिर्भर मुकाम तक पहुंचाना है तो झारखंड के छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों को एक साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाना होगा। जमशेदपुर का गौरवशाली औद्योगिक इतिहास और चाईबासा के खनिज संसाधन इस बात के गवाह हैं कि आने वाला समय भारत के विनिर्माण क्षेत्र का है, जहां झारखंड देश की प्रगति का इंजन बनकर उभरेगा। इसी के साथ हमारी आज की यह विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। इस कार्यक्रम के संपादक हैं महविश रहमान और प्रवक्ता तथा आलेखकार कुंदन कुमार वर्मा के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त कामिनी को दीजिए इजाजत। देश विकास के इस महाअभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और कुशल नेतृत्व को रेखांकित करते हुए कल फिर एक नए विषय के साथ हम इसी समय आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारी विशेष प्रस्तुति मेक इन इंडिया। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीत संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए आपके रेडियो दोस्त रजनी का प्यार भरा जुहार और नमस्कार। श्रोताओं, शाम हो चुकी है और सभी अपने अपने काम से अपने घर जाने को बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, दिन भर की थकान के बाद यही वो मौका होता है जब वो अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं और कुछ आराम के पल बिताते हैं। तो चलिए आपके इस आराम के पल को हम और भी खास बना देते हैं अपने कुछ गानों के साथ।

बहुत ही प्यारा गाना भी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म थी अनुरोध और इस गाने को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने। आइए अब इसी तरह का एक और प्यारा सा नगमा सुनते हैं फिल्म शागिर्द से लता मंगेशकर की आवाज में। एक बार फिर से संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गाने को लिखा है मसरूह सुल्तानपुरी ने।

0: साज सगम कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची का हरमू चौक अब विकसित भारत संकल्प सेवा चौक के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर इस चौक का नामकरण किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रदेश भाजपा की अगुवाई में इस चौक का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को दर्शाता है। सरायकेला में भाजपा की ओर से सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। इससे पहले टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरे कृष्णा प्रधान ने किया। गोड्डा के गांधी मैदान में भाजपा ने विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित की। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संबोधन

में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर को। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर समय होगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम मनोरमा। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7:00 और उसके बाद जिले में आजकल। संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8:00 समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनी गंधा का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का गुलदस्ता हमने आपके लिए सजाया है एक ही गायिका लता मंगेशकर के स्वर में गाए कुछ फिल्मी गीतों से। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म लम्हे से। आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर को, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिन पास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान।

0: जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाए। रिंपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब सुनवा रहे हैं फिल्म आराधना का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एच डी बर्मन।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं फिल्म हीरो का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरो का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। और कुछ ही पलों में अभी आप सुनेंगे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम बीज उपचार इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि बीज उपचार है क्या। बुआई से पहले बीजों को रासायनिक, जैविक या भौतिक पदार्थों से सुरक्षित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके तहत बीजों पर फफूंदनाशी,

0: करने से आपको कई तरह के लाभ मिलते हैं। पहला तो कीटों और रोगों से सुरक्षा। यह बीजों को शुरुआती चरण में लगने वाले फफूंद, दीमक और मिट्टी जनित हानिकारक कीड़ों से बचाता है। अंकुरण में सुधार। उपचारित बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे खेत में सभी पौधे एक समान और स्वस्थ रूप से उगते हैं। कम लागत और अधिक मुनाफा। फसल के शुरुआती दौर में ही सुरक्षा मिल जाने के कारण बाद में महंगे कीटनाशकों और रसायनों का छिड़काव कम करना पड़ता है, जिससे खेती की लागत घटती है। पौधों का मजबूत विकास। जैविक बीज उपचार से पौधों की जड़ों का विकास तेजी से बढ़ता है और वे मिट्टी से पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाते हैं। पैदावार में वृद्धि। जब फसल की शुरुआत अच्छी होती है और पौधे बीमारियों से मुक्त रहते हैं, तो अंततः फसल की कुल उपज और गुणवत्ता में सुधार होता है। किसान भाई बहनों, दवा की केवल अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। उपचारित करने के बाद, यानी बीजों को उपचारित करने के बाद, बीजों को कभी भी सीधी तेज धूप में ना सुखाएं, उन्हें हमेशा छाया में सुखाकर ही बोएं। बीज उपचार के दौरान हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। बीज उपचार फसल की बेहतर वृद्धि और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
1: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्द्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।

0: किसान भाई बहनों, अभी आप सुन रहे थे होल लोकगीत मेलानी बोदरा और साथी के स्वरों में। इस लोकगीत के बाद जानकारी लेते हैं मछली पालन किस तरह से करनी चाहिए, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं फनी भूषण महतो, और इनसे बातें कर रहे हैं कमलेंदु महतो।
1: आज हम मिलते हैं कृषक से, मछली पालक हमारे बीच में है और हम गए हुए हैं आज गांव भुरकुली, और इसी क्रम में मिलते हैं एक प्रबुद्ध कृषक से। तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है सर?
2: पानी भूषण महतो।
1: अच्छा, तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आप मछली पालन के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा तालाब भी है, तो ये मछली पालन में सबसे आप पहली बात किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है? किस समय आप मछली का जो चारा है छोड़ते हैं और कितने दिनों में ये बड़े हो जाते हैं?
2: मछली पालन तो हम रांची भी गए थे,
1: हाँ,
2: ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। वहाँ से आके हम लोग स्पान ये करते हैं,
1: हाँ,
2: हाँ, और चारा भी दिया जाता है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: और मोटा मोटी 7-8 महीना में,
1: हाँ,
2: 500-600,
1: अच्छा,
2: 1 किलो तक,
1: हाँ,
2: 1 किलो तक ये होता है,
1: बढ़ जाता है।
2: हाँ, उसमें हम लोग को दाना भी खरीद के देना पड़ता है।
1: हाँ हाँ, जो मछली का जो आहार है, वो जो चारा है, वो काफ़ी पौष्टिक होता है, तभी जाकर जल्दी से बढ़ते हैं। अच्छा।
2: उसके अलावा हम लोग गोबर भी डालते हैं।
1: हाँ, गोबर भी डालते हैं। अच्छा अच्छा, मछली पालन के लिए जो हमेशा बहुत कोई कहते हैं कि पानी स्थिर नहीं होना चाहिए, कुछ बहते रहना चाहिए, फिर हिलना डुलना इस तरह का होना चाहिए, जिससे कि उनको एक ऑक्सीजन मिलता है और बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं, मरते नहीं हैं, तो ऐसा कोई व्यवस्था करते हैं तालाब में क्या?
2: नहीं, जैसे हमारा बतख भी है।
1: हाँ
2: हाँ, बतख करीब 150 बतख।
1: अच्छा अच्छा।
2: उसमें हमको ऊपर से कुछ पानी को हिलाना उलाना नहीं पड़ता है,
1: नहीं पड़ता है।
2: हाँ। अच्छा, बात होता है कि हमारा तालाब ऐसा जगह है गांव के ये में,
1: हाँ,
2: तो पूरा गांव का ये
1: नहाते भी हैं,
2: इसलिए वो सब चीज़ हमको नहीं करना पड़ता।
1: हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, काफ़ी बतख है तो ये तैरते रहते हैं और पानी हिलते रहते हैं। अच्छा, तो मैंने मछली के साथ साथ बतख पालन भी हुआ है, दोहरी मैंने इसमें लाभ मिल रहा है। हाँ, तो मछली विशेष करके मैंने आजकल तो देखा जाता है कि कोई मागुर जो किस्म है, हाइब्रिड किस्म के हैं, वो भी पालते हैं, और रोहू और कतला, कौन सा मछली ज़्यादा मैंने जल्दी बढ़ते हैं इसमें?
2: मैंने देखिए, हम लोग वो मागुर तो नहीं पालते हैं।
1: हाँ,
2: हम लोग पालते हैं कतला,
1: अच्छा,
2: रेहू और मृगल।
1: अच्छा अच्छा।
2: ये 3 मछली हम लोग ज़्यादा ये करते हैं, क्या कि ये मछली मार्केट में डिमांड भी है,
1: डिमांड भी है,
2: इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं।
1: अच्छा अच्छा। और ये बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं।
2: हाँ। कतला तो बहुत ही जल्दी बढ़ता है, 6 महीने में मोटा मोटी आप चारा दीजिएगा तो 1 किलो हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा। हाँ, सही बात है। अच्छा, शुरुआती दौर में इनका जो मछली का चारा आप लोग कहीं बाहर से लाते हैं कि इनका कोई अंडा कहीं पर व्यवस्था करते हैं?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं।
1: अच्छा अच्छा। तो ये जिसका मैंने तालाब जिसके आकार का है, उसके हिसाब से आप लोग अंदाज करके उसमें कितना किलो डालना चाहिए, मैंने तालाब के आकार के अनुसार इसको डालते हैं कि किस तरह का?
2: हाँ, हम लोग जैसे बड़ा हमारा तालाब है 3.5 एकड़ का।
1: हाँ,
2: इसमें हम लोग मोटा मोटी मान लीजिए कि फिंगर टाइप का हो गया।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उसमें हम लोग करीबन कितना बोलेंगे, 1000 से ऊपरे पीस रहता है वो फिंगर।
1: हाँ,
2: वाला।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, उसके बाद स्पन रहता है।
1: हाँ,
2: 5-7 किलो।
1: हाँ, मैंने पानी की जो मात्रा है, गहराई किसे है, उस हिसाब से आप लोग अंदाज करके उसमें डालते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें सालों भर पानी रहता है कि कभी कभी सूखता भी है सर?
2: मैंने जैसे पानी लास्ट सीजन में ये हो गया।
1: हाँ,
2: तो पानी रह जाता है, नहीं तो सूख भी जाता है।
1: मैंने यहाँ से मैंने खेती बाड़ी के लिए सिंचाई
2: सिंचाई भी होता है।
1: अच्छा, इसलिए मैंने कभी कभी पानी
2: पानी की दिक्कत हो जाता है।
1: हाँ, तो बहुत सारे ऐसे मछलियाँ हैं जो अपना गोबर या फिर जो चारा है वो खा के बड़े होते हैं, या फिर कुछ घास वगैरह जो भी होता है वो शैवाल वगैरह खा के बड़े होते हैं। तो ग्रास कार्प वगैरह मछली भी पालते हैं?
2: ग्रास कार्प भी कुछ ये करते हैं। मोटा मोटी 2-4 किलो छोड़ देते हैं, घास भी तो होता है।
1: हाँ,
2: उसमें भी ग्रास कार्प भी ठीक बढ़िया ये होता है।
1: अच्छा अच्छा,
2: ग्रोथ करता है।
1: तो आपके इस क्षेत्र में मछली का जो बाज़ार व्यवस्था है कैसे, मतलब आप लोग यहीं पर व्यापारी आते हैं खुद पकड़ने के लिए, या फिर यहाँ पर आप लोग ले करके बाज़ार जाना पड़ता है?
2: नहीं, हम लोग जब मछली तैयार हो जाता है
1: हाँ,
2: तो उस टाइम हम लोग व्यापारी को बोल देते हैं।
1: अच्छा,
2: और उसके बाद वो लोग आके पकड़ के हम लोग को मोटा मोटी 150-250 करके वो लोग ये करता है।
1: अच्छा अच्छा,
2: बड़ा का 150 हो गया।
1: हाँ,
2: तो थोड़ा छोटा हो गया।
1: हाँ,
2: तो वो 150 करके हम लोग को यही वो लोग ये कर देता है।
1: मैंने बेचने के लिए एक अच्छा माध्यम भी है, उसमें एक मुश्त और थोक बिक्री हो जाता है।
2: थोक बिक्री हो जाता है, हम लोग को मार्केट ले नहीं ले जाना पड़ता है।
1: हाँ, सही बात है। तो इसमें बत्तख पालन के लिए आप शुरुआती दौर में क्या किए थे, मैंने छोटे चूजों को लाए थे या फिर आसपास में कोई बत्तख का कोई ऐसा?
2: नहीं, हम लोग का पहले से बत्तख है।
1: अच्छा,
2: हाँ, तो उसमें ढेर सारा बत्तख है।
1: हाँ,
2: ये हम लोग का देसी नस्ल वाला
1: ऐसा,
2: वो चूजा हम लोग नहीं लाए थे।
1: हाँ, इसी से मैंने बढ़ते गए अंडा दिए फिर आप?
2: हाँ।
1: तो ये मछली पालन के साथ साथ जो खेती बाड़ी करते हैं तो विशेष करके क्या सालों भर करते रहते हैं कि सीजन के हिसाब से अलग अलग फसल करते हैं?
2: देखिए, सीजन के बोलने से आपका खरीफ में आपका धान हो गया।
1: हाँ,
2: रवि में चना होता है।
1: हाँ,
2: सरसों होता है।
1: अच्छा अच्छा,
2: यही सब ज़्यादा। हाँ, ये होता है। और वो तो थोड़ा बहुत घर सब्जी के लिए तो बागवानी करते ही हैं।
1: हाँ, तो घर उपयोग के लिए ऐसे बागवानी के हिसाब से जो भी साग सब्जी है ये सब सालों भर करते रहते हैं, मैंने पानी के व्यवस्था के ऊपर निर्भर रहता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो अपने तालाब है इस तालाब के माध्यम से क्या अन्य किसान भी अपना खेती बाड़ी करते हैं कि सिर्फ अपने लिए ही ऐसे में?
2: नहीं, अन्य किसान भी करते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: अच्छा, जैसे इस साल
1: हाँ,
2: मैंने पानी का तो बहुत ही कमी ये हो गया।
1: अच्छा अच्छा,
2: मैंने धान अभी भी मशीन हमारा तालाब में लगा हुआ है।
1: अच्छा अच्छा,
2: उसमें से पानी पटा रहा है।
1: ओ, अच्छा अच्छा। हाँ, धान समय पर बारिश नहीं होने से सिंचाई का ये भी करते
2: हैं। हाँ,
1: अच्छा। तो ये बत्तख पालन के साथ साथ कहीं कहीं देखा जाता है कि इसमें एक सेट के रूप में या फिर छावनी के रूप में जो मुर्गी पालन भी करते हैं, तो ऐसा भी कुछ करने का कुछ सोचते हैं कि कुछ ऐसा सुविधा है करने के लिए?
2: मैंने देखिए, हम लोग तालाब के सामने हम मेरा घर है।
1: हाँ,
2: उसमें हमको तालाब के मेड़ में हमको ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं पड़ा है अभी तक कि वहीं हम कुछ शेड बनाए।
1: हाँ,
2: तो वही हम घर में आ जाता है।
1: हाँ,
2: और वहीं से हम लोग ये करते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें मछली पालन में देखा जाता है कि कभी कभार कुछ मछली कुछ बीमारी भी हो जाते हैं कि विशेष कारण से, तो क्या इसके बारे में कुछ जानकारी या फिर इनका समाधान इलाज वगैरह कैसे करते हैं?
2: इसका इलाज हम लोग मत्स्य विभाग जाते हैं।
1: हाँ,
2: वहाँ हम लोग बताते हैं कि भाई इस तरह का हमारा मछली में थोड़ा ये हो रहा है।
1: हाँ,
2: दिख रहा है।
1: अच्छा,
2: क्या देना पड़ेगा? तो वहीं से हम लोग सलाह लेके वो लोग जो बताते हैं वही दवाई आकर हम लोग देते हैं।
1: अच्छा,
2: खास करके तो चूना तो देना ही पड़ता है।
1: अच्छा, चूना तो देना ही पड़ता है। इसमें पानी शुद्ध भी रहता है और लोकल ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा, तो बहुत सारे तालाब में देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार के फूल, कमल का फूल या फिर अन्य प्रकार के जो रंगीन फूल होते हैं वो भी मैंने लगाए जाते हैं, या फिर धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। तो इस तरह का जो पौधे होते हैं तालाब में, तो मछली पकड़ने के समय में कोई असुविधा होती है?
2: दिक्कत? हाँ, बहुत दिक्कत होता है उसमें।
1: अच्छा,
2: मछली पकड़ने के साफ करना पड़ेगा।
1: हाँ,
2: तब जाकर मछली पकड़ाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ाएगा।
1: हाँ, सही बात है, क्योंकि उसमें जाल अगर गिराते हैं तो फिर फंस जाता है। हाँ, जाल भी खराब हो जाता है।
2: हाँ, इसलिए उसको पहले हम लोग साफ कर लेते हैं, उसके बाद ही
1: अच्छा अच्छा
2: मछली पकड़ना शुरू करते हैं।
1: हाँ, और
2: तो अलग में एक यही लाभ है, मान लीजिए आपका घर से कुछ दूर में है तालाब, उस तरह का आपका जैसे कमल का हुआ, सालों फूल हम लोग बोलते हैं हुआ, वो सब रहने से मैंने चोरी का थोड़ा ये कम हो जाता है, नहीं के बराबर चोरी होता है।
1: हाँ।
2: और हम लोग का जो तालाब है, आप किधर से आए तो नहीं देखे।

0: हमारा तालाब है सामने,
1: हाँ
0: ये तालाब एकदम खुला है, कुछ
1: अच्छा,
0: नहीं है, एकदम साफ।
1: हाँ सामने रहने से देखभाल भी हो जाता है
0: तो
1: अच्छी तरह
0: देखभाल
1: से।
0: हो जाता है, इस ऐसा तालाब दूर में खेती नहीं होगा।
1: हाँ बात सही है, तो चोरी से बचाने के लिए इस तरह का हम लोग तरीका भी अपना सकते हैं। या
0: हाँ
1: फिर
0: हाँ हाँ
1: कभी कभार देखा जाए कि उसमें कोई बांस के बड़े बड़े जो ये डाली होते हैं उसको भी गिरा देते
0: हाँ
1: हैं
0: हम
1: डाली
0: लोग वो
1: में।
0: भी यूज करते हैं, अभी
1: अच्छा
0: भी है
1: अच्छा
0: हमारा तालाब में बांस
1: हाँ
0: डाला हुआ है,
1: हाँ हाँ अच्छा, ये सब पकड़ते समय इसको निकाल करके
0: निकाल
1: अपना।
0: देते हैं।
1: हाँ, तो हमारे किसान भाई जो बहुत सारे ऐसे मछली पालक हैं और करना चाहते हैं, नए किसान हैं, तो उसके लिए आप मछली पालन में किस तरह का लाभ है और कैसे करना चाहिए, संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए मछली पालन माने ये क्या बोलेंगे, माने
1: माने
0: एटीएम जैसा होता है
1: अच्छा,
0: कि
1: हाँ
0: भाई अभी आपको पैसा जरूरत हुआ,
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: कार्ड लिए, जाके वहाँ घुसाए, पैसा निकल गया है।
1: सही
0: इस
1: बात
0: तरह
1: है।
0: से माने मछली पालन एक ऐसा किसान का आय स्रोत है कि
1: हाँ
0: माने जब आपको पैसा का जरूरत होता है, आप नेट रखिए घर में,
1: हाँ
0: हाँ, और वैसा मछली भी आपको तालाब में रखना
1: रखना
0: पड़ेगा,
1: पड़ेगा। हाँ
0: माने एक दो जाल दे दीजिए, 5-10 किलो निकल गया, पाँच
1: हाँ
0: दस किलो निकल गया तो आपका ये थोड़ा मोड़ा आवश्यकता जो ये है वो ये हो जाता है।
1: सही
0: इसलिए
1: बात
0: मछली
1: है,
0: मछली पालन किसान के लिए वो
1: बहुत
0: तो
1: फायदेमंद
0: बहुत
1: है,
0: फायदेमंद।
1: सही बात है। हाँ, जैसे मछली तो ऐसे बहुत कोई मैंने चाहते भी हैं, आवश्यकता भी होता है, कहीं मेहमान आए या फिर शादी विवाह हुआ, कहीं कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें काफ़ी मात्रा में मछली की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए
0: हाँ
1: लोग खरीदते भी हैं, और उस
0: हाँ
1: समय एक साथ अगर बिक्री हो जाए तो फिर किसानों को काफ़ी अच्छा फायदा भी
0: फायदा
1: मिलता
0: भी
1: है।
0: मिलता है।
1: तो आपने खेती बाड़ी के साथ साथ मछली पालन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

किसान भाई बहनों, कार्यक्रम के अंत में आपने सुना उरांव लोकगीत रमेश लकड़ा और साथी के स्वरों में। और इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। धनबाद के जगजीवन नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की गई। सांसद ढुल्लू महतो और विधायकों ने मशाल जुलूस निकाला। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जनसेवा का संकल्प भी लिया। सिमडेगा के नगर भवन में आज पोषण माह समापन समारोह सह व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को पोषण युक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी रखने की जरूरत है। इस अवसर पर पोषण को लेकर जागरूक रहने की शपथ भी ली गई। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में बिंदल मॉल के एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार दो कथित मुख्य शूटर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के दौरान दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। घायल मोहन यादव और अजीत मंडल को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल बरामद किए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ल ने दंगवार इंटरस्टेट चेकना का विभिन्न पूजा पंडालों और विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे सतर्कता, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच तथा नियमित गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही पूजा पंडालों और शहरी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को लगातार चालू रखने को कहा। दूसरे टी20 मैच के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आज रांची पहुंच गई। हवाई अड्डे पर क्रिकेट प्रेमियों और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दोनों टीमों का स्वागत किया। इसके बाद दोनों टीमें बस से रेडिसन ब्लू होटल के लिए रवाना हुई। जीएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि कल पहले हाफ में वेस्टइंडीज और दूसरे हाफ में भारतीय टीम अभ्यास करेगी। 9 अक्टूबर को होने वाले मैच में करीब 50,000 दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हो अखड़ा।

आकाशवाणी रिया चाई भाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज श्रवण अई में तना ना अयुब पिंग 6 बजाय ने ते 2 मिनट होबा सिकाय ना कार्यक्रम हो अकड़ा अई मिच बेन लगिन अलिंग बिटाउ जो केने महेंद्र गोये सबिन को अलिंग पे ते जोहार जाओ दिन लेके गे एसपुरे लिंग सगम अगुत डे इना को मियन मिय तिलिंग अई मिच बिना आयुम लगिन एफएम रेडियो जपारे तयन बेन चेमर ना तरंग बन जपाव जो इन एंड द एला अयमिच बिना लिंग सभी को ते अयर अटकर जगर अटकर रे जगर दो निया गेतना चे अबु ना आ ने रबंग को बोलोय ना नो नन रबंग सुमाय रे अबु असुल तन पशु को मेने रे दो ना आ मेरम उरी मेंडी नेको सबिन अबु असुल केट को नेको चिलके जोगसन को तिया एन संबंध रे निन मेरम उरी को निका जर्गी दे चे बयाना ते निका रबंग बोलतान लो तेगे अकोवा हासू को हुबाना जड़ा वा को ओंडो ओ होटो ता का को मो वा एन होटो ता को मो ऐसे डे एन रदो जमो का को दे ये ओंडो ले करे को फुले वा एना ते आको इना को चारा का को जम दे ये एना को चिरगेल दो चिलके ते उबावा गुपी तेन रे या तो जान जितना अबो चारा को बोइमा को नाना को बुसु को तसट को एन सुमाय रे इनको ककको जोमा एन एन रगे एन रिया लक्षण दो उरुमा अंडो जाड़ा मा को जाड़ा ते दो इना दबु ले लगिया इना चिलके रा को तन रे या तोल को तन रे अको कोंतार को गिती ये इंतार एन लेकते अबु ना ने जर्गी चबाउ जो इने अंडो ओ चबायन गया मैंने तिया का जी ना दने रबंग बोला है ना एन लिका सुमाय रे ने उरी मेरम को अबु जो कौन पशु को असुल ते को इनको जो सुन को ते इसुरी ना गोरो जो मेना चिने मैंने ची ने को आए ते अबु ऐसु पुरे लाभ को बु इडिते ने लाभ मैंने रे दो ना आ अबु बोधर लगेन गोरी इको अंडो ओ मेरम को आ मेरम इको एने इन मैंने या ते ने को ओंडो उरी को दो अबु सी उपाइट्रियो बागु को तरना निया काड़ायलो सर रे सबिन लिका ना रे एन लिका ते ने को बुगेते बु जोगसन को इनंगा अबु इनको ताए ते अबु लाभ ची लपा को दबु नामे निना को जदि इन लक्षण को बु ललकिडा एन रे दो अंजा ते अंजा पशु डॉक्टर को ता जो ब्लॉक रे को मिना को ओंडो कभी कभी आको मिसे मिसे अबु हाथु को तेयो को हुजुए एन रे दो इनको ताए ते अंजाते अंजा कबर एम के ते या तो इनता ते रेड को नो सुई को एम चिकोते या ऐसो दरकार इनका दो नंग आपो दो नन उरी मेरम को दो बोरो सरे कम से कम आपे दुने इनको सुई चीते को रदो एन लेकन हसु को का होबन पहले दो जेटे बोलोतान रे एन चनाम जेटे चबायना ते चिलके जर्गी दे बोलो उंकुड़ो ने एन लेका एना तेन एन जर्गी दे चबायना तेन एन लेका रबंग बोलो तन एन रे चिना होबा अकवा होमो ठीक तई ने अंडो ने लेकन हासु को कानम को मर एन रे दो सबिन बो उड़ो ई के अंडो ने लेका अबो सुलतेन मेरम मेंडी उरी केड़ा को अबो वोगे ते बो लेल को का जगसन को का को बो अंडो एना ते लाभ को बो इडीचे एन लेका होबायन रे दो अंजाता जाबो रे रनु इचे को का तिसिंगे अटकर जगर दो नैन मोले रगे चबाओ तना ना बन अयम तन तई के ना अटकर जगर एन तयम एला उंडा जुका अयर पालिंग अयम चे बिना जमुना मा परोब रिया दूरंग

सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी बहनों का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों, इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बहनों, कभी कभी कुछ महिलाएं भी ना घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाती हैं। यदि हल्की फुल्की कोई बीमारी हो जाए तो भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती हैं, और ऐसे में कभी कभी ये छोटी छोटी बीमारियाँ भी बड़ा रूप ले लेती हैं। इसलिए कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बहनों, इसी सिलसिले में आज हम बातें करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। बहनों, सर्वाइकल कैंसर को लेकर सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं बल्कि अधूरी और डर पैदा करने वाली जानकारी है। अक्सर महिलाएं यह सुनकर घबरा जाती हैं कि यह कैंसर है, लेकिन यह पता नहीं होता है कि बीमारी कैसे शुरू होती है, कितने समय में बढ़ती है और किस स्टेज में पूरी तरह रोकी जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दुनिया का चौथा सबसे आम कैंसर माना जाता है। तो बहनों, ये जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। डॉक्टरों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से यानी गर्भाशय, ग्रीवा या सर्विक्स में विकसित होने वाला कैंसर है।

0: निदान जिन महिलाओं में होता है उनमें से लगभग आधी महिलाएं इसी आयु वर्ग की होती हैं। डॉक्टरों के अनुसार लगभग सभी सर्वाइकल कैंसर के मामलों में एक चीज समान पाई जाती है, वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV का लंबे समय तक शरीर में बने रहना। HPV एक बहुत आम यौन संचारित यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। ज़्यादातर यौन रूप से सक्रिय महिलाओं के शरीर में यह वायरस जीवन में कभी ना कभी आ सकता है। HPV अक्सर बिना किसी लक्षण के शरीर में बना रहता है। अधिकांश मामलों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम इस वायरस को अपने आप एक दो साल में ख़त्म कर देती है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह वायरस शरीर में लगातार बना रहता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर की एक चुनौती यह भी है कि इसके शुरुआती चरणों में अक्सर कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देते। महिला खुद को बिल्कुल सामान्य महसूस कर सकती है और यही वजह है कि यह बीमारी कई बार बिना जांच के पकड़ नहीं आती। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे पीरियड्स के बीच शारीरिक संबंध के बाद ब्लीडिंग होना। अगर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है और अचानक यह बदलाव दिखे तो इसे हार्मोनल मानकर नज़रअंदाज ना करें। और यदि मेनोपोज के बाद किसी भी तरह की ब्लीडिंग आए तो तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि यह तुरंत जांच की मांग करती है। और यदि पानी जैसा खूनी या बदबूदार डिस्चार्ज जो सामान्य से अलग लगे और अधिक मात्रा में बढ़ रहा हो या उसमें दुर्गंध हो तो सर्विक्स से जुड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। अगर इस तरह के लक्षण आपको भी दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाएं और उनसे सलाह लें और अपना इलाज तुरंत शुरू करें। बहनों, इस बातचीत के बाद आइए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिमपास आके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिमपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनों अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन संदेशों के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। छोटी बचत बड़ी मदद, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं रश्मि पाड़िया और उनसे बातचीत कर रही हैं मंजू बोदरा। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
4: कर रहे हैं एक ऐसी गृहिणी से जो कि अपने घर को एक सीमित आय में बाहर कोई नौकरी नहीं करते हुए भी किस तरह से

0: सुव्यवस्थित करके अपने घर को रखी हुई है, चलाती है। तो ये है रश्मि पाड़िया जी। तो रश्मि जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्ते। सबसे पहले गृहिणियों को, सुनने वाली जितनी मेरी बहनें हैं, गृहिणी हैं, उन लोगों को नमस्कार। देखिए, घर को देखते हुए, घर चलाते हुए, घर का घर पर बचत किस तरह करना चाहिए, वो घर की गृहिणी पर निर्भर होता है।
0: हाँ हाँ, तो हम लोग यही, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो है, आप जैसे कि कह रही हैं, आप बाहर कोई नौकरी करने नहीं जाती हैं, ना ही कोई आप एक्स्ट्रा कोई ऐसा काम भी नहीं करते हैं कि उससे आपको आय अर्जित हो। लेकिन आपकी जो जो भी घर की आर्थिक स्थिति है, ये जितने भी आपकी आय है, उससे आप बहुत अच्छा से चलाती हैं, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, घर को अच्छा, घर के परिवारों को अच्छा खाना व्यवस्था कर रहे हैं। ये किस तरह से आप करते हैं, कहाँ क्या किया जाए कि और भी जो गृहिणी है, हमारी बहनें हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो
1: सुन करके
0: कुछ सीखे, वो भी उस तरह से व्यवस्था करें।
1: देखिए, सबसे पहले है कि मैं जैसे घर में, जैसे हम लोग डेली का सुबह शाम सब्जी बनाते हैं, तो वो हम, मेरा कुछ जगह जमीन है, वहाँ पर हम सब्जी उत्पादन कर लेते हैं। लगभग साल भर खाने का सब्जी तो हम उत्पादन कर लेते हैं।
0: अच्छा, आप लोग सब्जी यहाँ बिल्कुल नहीं खरीदते हैं। जो भी जमीन है, आप लोग वहाँ तो किचन गार्डन की तरह उसको यूज कर
1: लेते हैं। हर सीजन का सब्जी उत्पादन कर लेते हैं। और जैसे हुआ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का, तो मैं बच्चों को बाहर ट्यूशन पढ़ाने तो नहीं भेजती हूँ, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने पर भी अपने ही बच्चों को देखना पड़ता है आने के बाद।
0: तो अगर आप दूर भेजते हैं तो फिर पहुंचाना ले जाना, ये भी एक अलग परेशानी
1: है। उसमें जैसे समय का भी
0: बर्बादी
1: है, और जो भी जिस साधन से जाएगा उसमें भी खर्चा है। और इस तरह से हम घर में अपने बच्चों को खुद में ट्यूशन पढ़ाती हूँ। उनके आने के बाद एक दो घंटा मैं उनको बैठाती हूँ। हाँ। जितना स्कूल में होमवर्क हुआ है, जितना आज का दिन पढ़ाई हुआ है, सबको मैं रिवीजन करवाती हूँ। प्रत्येक दिन
0: आप रिवीजन करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्कूल में पढ़ाई होती ही है, उसके बाद जो आप स्कूल की पढ़ाई को रिवीजन करवा देते हैं, तो उतना ही काफ़ी है बच्चों के लिए
1: उतना ही काफ़ी है, क्योंकि प्रत्येक दिन का रिवीजन करते जाने से उन पर कोई लोड भी नहीं होता है बच्चों पर, और वो अच्छी तरह से उस चीज को सीख लेते हैं,
0: क्योंकि हर दिन जो पढ़ाई होती है वही रिवाइज करवा देते हैं आप, तो वो
1: बस
0: बिल्कुल सीख लेते हैं,
1: बस बिल्कुल सीख लेते हैं। उससे ज्यादा उनको पढ़ना ही नहीं है। और उसके अलावा भी जैसे बच्चों का फ्रॉक हुआ, लड़कियों का सूट हुआ, सलवार हुआ, सब मैं सिलाई करती हूँ।
0: अच्छा, खुद
1: बाहर से कपड़ा खरीद के लाते हैं और सिलाई मैं खुद करती हूँ। तो जो सिलाई का पैसा जो हम बाहर सीने के लिए देंगे, उस पर भी मेरा बचत हो जाता है। जिस तरह के भी डिजाइन जैसे बाजार में है, अभी चल रहा है, उस तरह से मैं सिलाई करके बच्चों को खुद पहनाते हैं।
0: तो इस तरह से जो बच्चों के या घर परिवार के लोगों की जो सिलाई में पैसा खर्च होता है, वो उसकी बचत हो जाती है, बचा लेते हैं।
1: और दूसरा हुआ कि जैसे अभी सीजन हुआ ठंडा का, तो बच्चे को स्वेटर चाहिए, उस अनुसार तो हम ऊन खरीद के स्वेटर भी बना देते हैं। तो बाजार से खरीदने से तो पैसा ज्यादा जाता है, लेकिन ढंग का कपड़ा स्वेटर नहीं मिलेगा, तो उस पर भी बचत होता है। इसके अलावे भी ये सब देखते हुए भी, जैसे मेरे गांव में मतलब मेरा खुद खेत में झाड़ू वगैरह बहुत होता है, उसको भी मैं समय पर
0: गिनती हूँ। आप खुद ले आते हैं, वो भी सीख लिए हैं।
1: तो जो बाजार से जो हम झाड़ू खरीद के लाते हैं, तो उससे मेरा खर्चा नहीं के बराबर होता है। अपना खेत में झाड़ू है लाना है और बुन लेना है।
0: हाँ हाँ,
1: तो एकदम बिल्कुल बचत है।
0: हाँ, वैसे भी वो बहुत बड़ी काम नहीं है झाड़ू बनाना,
1: नहीं।
0: तो आप सीख लिए हैं,
1: तो
0: आप घर में जो भी उपयोग में लाते हैं
1: सारा खुद कर लेते हैं।
0: तो इस तरह से भी आप बचत कर लेती हूँ।
1: और इसके अलावा भी जैसे मुर्गी सब पाले हुए हैं, तो अगर घर में कोई जरूरत हुआ पैसे का, तो मुर्गी भी बेच लेते हैं। और
0: घर में आपको खाने के लिए चाहिए तो
1: वो
0: आपको घर
1: भी
0: में भी मिल
1: जाता
0: जाता
1: है। तो वो घर के जितने जरूरत का चीज है उस तरह मैं सब चीज मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ कि घर बाहर से कुछ खरीदने का उतना जरूरत नहीं पड़ता है।
0: तो इस तरह से आप घर में जो चलाती हैं, एक तरह से आप बचत को महत्व देती हैं, बचत करती हैं हर जगह से, और साथ ही साथ अपना जो समय है उसका
1: सदुपयोग
0: भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उसको आप अच्छी शिक्षा भी दे
1: शिक्षा
0: रहे
1: भी
0: हैं।
1: देते हैं।
0: तो ये आप किस तरह से कर पाते हैं आप अकेले उस तरह से, क्योंकि गृहिणी है मीन्स घर की जो है बिल्कुल धुरी की तरह है, तो वो आप कैसे कर लेते हैं अकेले? आपको परिवार वाले किस तरह से सहयोग देते हैं इसमें?
1: मेरे परिवार में सब कोई का थोड़ा थोड़ा सहयोग रहता है, कोई कुछ मदद कर देता है, कुछ कुछ मदद कर देता है, फिर वो लोग अपने अपने काम ड्यूटी पर भी वो लोग भी जाते हैं थोड़ा बहुत मदद करके। लेकिन मैं सुबह जैसे 4 बजे उठती हूँ, सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता खुद बनाना है, मैं नाश्ते में भी मैं बाजार का कोई भी आइटम नहीं टिफिन में पैक करती हूँ, कभी नहीं
0: कभी नहीं।
1: ताजा रोटी ताजा सब्जी बच्चों को डेली देना है,
0: अपने बगान से थोड़ा
1: अपने
0: सब्जी
1: बगान से
0: बनाया और ताजा सब्जी हरी सब्जी
1: ताजा
0: आप
1: सब्जी
0: दे देते।
1: ये नहीं कि पहले दिन का सब्जी रोटी बना है फ्रिज में रख दिया, दूसरा दिन गरम करके पैक कर दिया,
0: ऐसा
1: वैसा
0: कोई
1: मेरे साथ कभी नहीं है। और दूसरी बात, उन लोगों को भेजने के बाद में मैं कुछ समय हर काम का मैं समय बांधती हूँ कि इतना समय तक मुझे ये काम करना है, इतना समय तक मुझे पढ़ाना है बच्चों को छुट्टी आने होने के बाद, और इतना समय तक हमको अपना भोजन तैयार कर लेना है,
0: तैयार करना है, बच्चे आएंगे
1: बच्चे
0: उनको
1: आएंगे,
0: समय पे टाइम
1: टाइम
0: में वो खाना देना
1: खाना
0: है।
1: देना है। मतलब इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है, सब काम समय पर होते जाता है। घर में कोई मेहमान अभी आते हैं तो पर भी मेरा काम उसी तरह कंटिन्यू
0: चलते
1: रहता है।
0: रहता है। तो इसमें परिवार के जो जो कि आपके बच्चे हैं उसको मैं देख रही हूँ कि वो भी जो है अपना काम खुद करते हैं, तो इसको आपने किस तरह से अनुशासन में रखा, किस तरह से सिखाया अपने बच्चों को?
1: मैं जैसे
0: आपको क्या लगता नहीं है कि ये स्कूल भी जाते हैं पढ़ने के लिए और घर में भी आपको देखते हैं थोड़ा बहुत वो लोग मदद करते हैं, तो उस हिसाब से उसके लिए बर्डन नहीं है, आपको क्या लगता है?
1: सबसे पहले ये है कि बच्चों का मन पर निर्भर है, बच्चों को कभी जोर नहीं देना चाहिए, उनके मन को पहले टटोलना चाहिए कि जैसे वो पढ़ाई पर उनको ध्यान नहीं लग रहा है तो कुछ वैसा उनको काम करवाए जिस पर उनका ध्यान लगे और वो कुछ सीखे भी।
0: हाँ, थोड़ा सा दिमाग भी जो
1: चेंज हुए, हाँ, कुछ
0: चेंज हुए। हाँ।
1: इसलिए मैं उस समय वो समय भी मैं बर्बाद नहीं करने देती हूँ, उसमें भी या तो कुछ सिलाई खुला हुआ है, लड़की है तो उसको सिलाई खिला हुआ है तो उसको सीने का सिखाती हूँ, सिखाते हैं ताकि वो आगे चल करके खुद वो काम
0: खुद
1: कर सके,
0: कर ले,
1: किसी पर निर्भर ना रहे। और स्वेटर थोड़ा बहुत बुनना ये सब मैं सिखाती हूँ। इसके अलावे भी घर में जैसे खाना पकाना हुआ, कोई मेहमान आ गए हैं तो उनके लिए चाय बनाना है, ये सब छोटा मोटा काम मैं वही पढ़ाई के साथ साथ ही मैं
0: आप सिखाते
1: सिखाते
0: हैं।
1: समय
0: या फिर सब्जी चुन रहे हैं तो सब्जी चुनने में आप कौन सा चुनना है, कौन सा हटाना
1: तो,
0: है ना,
1: कौन सा सब्जी किस तरीके से काटना है, किससे कैसा काटने से खाने में अच्छा लगता है, वो सब मैं उन लोगों को पढ़ाई के साथ साथ
0: पढ़ाई के साथ ही आप सिखाते हैं। बहुत अच्छी
1: चलते फिरते
0: एक तरह से उनको थोड़ा
1: मनोरंजन भी हो जाता है,
0: मनोरंजन भी हो जाता है, एक नया चीज सीखने को भी मिलता है, बहुत अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं इस तरह से आप अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा पढ़ाई में तो मदद कर ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, स्कूल भी भेजते हैं, घर पे खुद ट्यूशन की तरह उनको समय पर बैठाते हैं, पढ़ाते हैं। साथ ही साथ घर के जो काम है
1: उनको
0: उसे भी आप सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो है देखिए आपकी लड़कियां बड़ी है तो अभी आप उसको सिखा रहे हैं, आपका लड़का अभी छोटा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसको भी आप उसी तरह से बताएंगे
1: उसको भी मैं इसी तरह से काम करवाती हूँ सारा काम। देखिए लड़के लड़कों लड़कियों में तो अंतर काम के मामले में तो नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़कों का यो तो देखा नहीं गया है कि कब किसके साथ कैसा परिस्थिति आए,
0: ऐसा परिस्थिति आए, हो सकता है कल को उसको
1: अकेले रहना पड़े, इसलिए मैं उनको भी वही चीज सिखाती हूँ जो लड़कियों को सिखाती हूँ। तो वो जैसा भी परिस्थिति आए वो उससे तिलमिलाए नहीं,
0: तिल मिलाए नहीं,
1: टगमगाए
0: अपना
1: नहीं,
0: सारा काम खुद कर
1: खुद
0: ले,
1: कर
0: अच्छी
1: ले
0: तरह से कर
1: अच्छी
0: ले हर
1: तरह से
0: परिस्थिति में वो
1: वो
0: अपना।

0: व्यवस्थित हो पाए,
1: व्यवस्थित हो पाए। इस तरह से, इसलिए लड़कों को ये नहीं कि हम लड़के हैं ये नहीं करवाना चाहिए, लड़की का काम ये नहीं करवाना चाहिए, कुछ भी नहीं करवाना चाहिए, तब तो लड़के तो वैसे भी देखा जाए तो बिगड़ ही जाएंगे।
0: हाँ, बिगड़ ही जाएंगे। अच्छा, अभी लड़कियां आपकी बड़ी है, आपको क्या लगता है आप इसको किस तरह से शिक्षा दिलाएंगे? वो जो चाहेंगे आप उसको करने देंगे, या फिर आप जो चाहेंगे वो करवाएंगे उनको?
1: बच्चों पर वैसे दबाव तो देना नहीं चाहिए कभी, वो पहले उनको उनका दिमाग टटोलना चाहिए कि वो क्या करना, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। उसके बाद अब उनके माता पिता को सोचना चाहिए कि वो चीज़ जो सोच रही वो उसके लिए कितना अच्छा हो सकता है। उसके बाद अगर ठीक ही ठीक चीज़ है तो उनको उस पर करने देना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, यानी कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है आप उस अनुसार जाना चाहेंगे, उस अनुसार उसको शिक्षा देना चाहेंगे,
1: शिक्षा उससे उसको कितना लाभ मिल सकता है आगे तक
0: वो आप उस पर सोचेंगे, उसके बाद
1: उनको उनको आप देना पढ़ाना चाहेंगे। और अगर उस पर कोई वैसा कुछ लाभ नहीं है, वो ऐसी
0: उसको परेशानी
1: हो सकती है, तो उसमें थोड़ा समझा करके बच्चों को रास्ते देखना चाहिए।
0: इसके लिए तो आप अभी से ही, जब बच्चे की उच्च शिक्षा की आप सोचे हैं तो स्वाभाविक है आप कुछ सोचे होंगे उसके लिए, क्या योजना बनाए हैं उसके लिए कि आप कैसे करेंगे, कैसे उसके लिए अभी से बचत कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं उनके लिए?
1: मैं तो वैसे अभी से ही उनको पढ़ाई पर ऐसा मतलब स्टेप बाय स्टेप वैसा सिखाते जा रही हूँ, ताकि जैसे लड़कियां हैं मैट्रिक पास करते के साथ ही कुछ वैसा अभी से ही अगर उनका पढ़ाई ठीक रहे तो मैट्रिक पास करने के बाद कोई जॉब के लिए उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं अभी से ही तैयारी कर रही हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे तो थोड़ा या होते ही हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा दिक्कत तो होता ही है।
0: हाँ, दिक्कत तो देखिए हर किसी के जिंदगी में आती ही है, समस्याएं हैं,
1: उतार
0: चढ़ाव होता ही है, समाधान भी है,
1: उसको देखते ही है थोड़ा।
0: तो वैसे भी देखिए सरकार जो है बच्चों के पढ़ाई के लिए या फिर कोई काम करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई है, बहुत सी उस योजना के तहत सुविधा भी देती है, ऋण देती है। तो अगर आपको कल को ज़रूरत पड़ा तो आप इस तरह की सुविधा लेना चाहेंगे अपने बच्चे के लिए?
1: हाँ, अगर ज़रूरत पड़ा वैसा उस तरह का, उस क्षेत्र में अगर वो जाना चाहे जिसमें खर्च ज़्यादा हो और वो हमसे अगर नहीं हो पाता है, तो मैं सुविधा लेने चाहूँगी, जैसा सरकार का जिस तरह से नियम है उस अनुसार।
0: तो उसके लिए आप अभी से बच्चों को भी तैयार कर रही होंगी, बच्चों को भी आप जब इतना अच्छा बचत पे आप सोचे हैं तो बच्चों को भी बचत के लिए प्रोत्साहित दे रहे होंगे?
1: अभी से ही मैं उन लोगों का अभी से ही उसके लिए तैयारी तो मैं कर रही हूँ। जैसे पढ़ाई में ही हुआ, जैसे अभी कंपटीशन होता क्या है कि इंग्लिश जीके हुआ, ग्रामर हिंदी ये सब ठीक रहने से, तो उस पर मैं अभी जो अभी निचला स्तर से है उसको मैं अभी से ही ठीक कर रही हूँ, ताकि उसको उस समय दिक्कत उतना ना महसूस हो,
0: और उसके जो आवश्यकता है उसको भी आप पूरा करते हैं देखते हुए, घर पे भी आप बहुत अच्छा से व्यवस्था करके रखे हैं। तो क्या और भी जो घर में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी आप खुद ही घर पे तैयार करते हैं? हाँ, जैसे कि आपका देख रहे हैं साग सब्जियां बहुत ही उपलब्ध है।
1: हाँ,
0: आपके घर में खुद खेती करते हैं, गांव में भी है
1: इस तरह से।
0: तो अब जैसे घर में जो भी चीज़ें आप उपयोग में लाते हैं खाने के लिए, अचार हुआ और पापड़ हुआ, ये सब खुद घर पे तैयार करते हैं?
1: मेरे घर में जैसे कि पापड़ हुआ, पापड़ को अब चावल तो हम लोग उत्पादन करते ही हैं, धान तो धान को अरवा चावल कूट करके उसको पानी में एक दिन दो दिन भिंगा के रखते हैं, उसके बाद उसको पीस करके घर में, या तो जैसे किसी घर में मिक्सी हो तो मिक्सी को घर में पीस करके, या तो सिलौट पर पीस करके हम लोग उसको, मैं पापड़ बनाती हूँ उसको पका करके डेक्ची में ही करके, नमक उमक जो भी उसका मिर्चा वगैरह डाल करके उसको भी बना करके उसका भी उत्पादन करते हैं। अगल बगल के लोग ऐसे खरीदते हैं जिनको अच्छा लगता है
0: तो अच्छा लगता है
1: खरीदते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे और आगे तक ले जाएंगे तो इससे आप आमदनी का जरिया
1: आमदनी
0: भी
1: का
0: बना
1: बन
0: सक
1: सकता है।
0: हाँ लेकिन हमें लगता है अभी बच्चे छोटे होने के चलते
1: जी
0: आप इसको बहुत
1: समय
0: ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे
1: नहीं
0: हैं।
1: बढ़ा पा रहे हैं, समय भी उतना मिल नहीं पाता है। जो घर का ही काम है, बच्चों को देखते हुए समय इसमें एडजस्ट करते हुए समय इसमें बीत जाता है।
0: तो जिस तरह से आप अपने घर को व्यवस्था करके रखे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को जो बहनें सुन रहे हैं उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस
1: मैं
0: बारे में?
1: जितनी भी गृहिणियां हैं या जितनी भी महिलाएं हैं, उनको चाहिए कि समय का बर्बादी कभी ना करें।
2: बहनों, इसी भेंटवार्ता के साथ ही आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम मनोरमा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने राज्य भर में निकाली सेवा ज्योति यात्रा, विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा को नहीं मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा में किसानों और विद्यार्थियों के लिए विकास योजनाओं की रखी आधारशिला, कहा किसानों एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सरकार संकल्पित। जमशेदपुर के बिंदल मॉल फायरिंग मामले में हथियार बरामदगी के दौरान मुठभेड़, दो कथित शूटर घायल। और भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के लिए दोनों टीमें पहुंची रांची, 9 अक्टूबर को दिखेगा मुकाबले का रोमांच। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और विकसित भारत के संकल्प को साथ लेकर सेवा ज्योति यात्रा के तहत सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का कार्यकाल करोड़ों लोगों के लिए गर्व की बात है।
1: गति शक्ति के आधार पर आएगा तो घर में घुस के हमने मारा, परेशान कर रही है, तो अब वह दिन दूर नहीं जब भारत अपना विमान बनाएगा। उन्होंने कहा वी विल डू इट, और वी विल डू इट के नारे से हम 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे।
0: इधर रांची के हरमू चौक अब विकसित भारत संकल्प सेवा चौक के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर इस चौक का नामकरण किया गया है। इधर गिरिडीह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मशाल लेकर सेवा ज्योति यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को प्रेरणादायक बताया।
2: देश के अंदर में पहले 74 एयरपोर्ट था, आज तो 150 से भी अधिक एयरपोर्ट इस देश में काम कर रहे हैं। हम बगल में ही देखते हैं देवघर हमारे एयरपोर्ट है, तो आप जरा सोचे इस प्रकार से देश के बड़े महानगरों के साथ हम जुड़े हैं, तो ये अगर संभव हो सका है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव।
0: वहीं चतरा के कॉलेज मैदान में भी आज सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की गई। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने मशाल लेकर यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से पूरा होगा। इधर जामताड़ा के गांधी मैदान में जिला भाजपा की ओर से संकल्प सभा एवं संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को पूरा करने में देश के लोग संकल्पित हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका

0: खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मधु कोड़ा ने ईडी के आरोप पत्र में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव को चुनौती दी थी। इससे पहले निचली अदालत भी उनकी याचिका खारिज कर चुकी थी। मामले में ईडी ने याचिका का विरोध किया था। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के बरमसिया में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम और उत्क्रमित आदिवासी आवासीय बालिका विद्यालय में 6 अतिरिक्त कमरों के निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में परेशानी न हो इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसानों को अनाज रखने की सुविधा देने के लिए गोदाम का निर्माण किया जा रहा है।
1: यहाँ के विद्यार्थियों का रुचि इतना बढ़ा है कि जो भी आधारभूत संरचना है ये कम पड़ रहा है और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा है कि दूर दूर से यहाँ तक कि दुमका जिला से भी विद्यार्थी यहाँ आकर के अपना नामांकन कराना चाहता है। हम लोगों ने इस विषय को देखा और सोचा, सोचने के बाद सोचे इस विद्यालय में जो भी आधारभूत संरचना है उसमें अगर विस्तार नहीं करेंगे तो आने वाला समय में विद्यार्थियों का पठन पाठन में दिक्कत होगा।
0: राज्य सरकार की आज होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले 25 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक भी स्थगित हुई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। ग्रामीण सड़क लोगों के जीवन में काफी बदलाव लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कहा कि हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना, इसलिए सरकार जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक बल दे रहे हैं।
2: सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता होता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना, इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं।
0: वहीं आकांक्षी जिला गढ़वा के लाभुकों ने बताया कि अच्छी सड़कें बनने से ग्रामीणों को आने जाने की सहूलियत हुई है।
3: असावधान भी लागत है, रोड भी बन गेलै और हम इनके आराम से गाड़ियों में बाजार मन चल जाले, तो पहले बोदी पैदल रेंगत रही, थक जात रही।
4: रोड बनने से फायदा ये हुआ कि यहाँ का आने जाने का पॉपुलेशन बढ़ा, उससे हम लोग का दुकानदारी का थोड़ा सा संख्या कमाने खाने का रूट अच्छा लगा। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को धन्यवाद।
0: जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में बिंदल मॉल के एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार दो कथित मुख्य शूटर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के दौरान दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। घायल मोहन यादव और अजित मंडल को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल बरामद किए हैं। खूंटी में ओबीसी समाज और बुद्धिजीवियों ने ओबीसी अधिकारों और पेशा कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कई जिलों में ओबीसी के कॉलम को शून्य या समाप्त किया जा रहा है। JLKM जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर ने ऐसे जिलों में ओबीसी कॉलम बहाल करने की मांग की। पेशा कानून के तहत भूमि और अधिकारों को लेकर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। रांची के किशोरगंज निवासी योग शिक्षक राजा वर्मा का वियतनाम के सड़क दुर्घटना में विगत दिनों मौत हो गई थी। सरकार के पहल से राजा वर्मा का पार्थिव शरीर वियतनाम से रांची लाया गया था। आज श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और सांसद महुआ मांझी उनके आवास पहुंचे। उन्होंने श्रम विभाग की तरफ से परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। दूसरे T20 मैच के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आज रांची पहुंच गई। हवाई अड्डे पर क्रिकेट प्रेमियों और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दोनों टीमों का स्वागत किया। JSCA के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि कल पहले हाफ में वेस्टइंडीज और दूसरे हाफ में भारतीय टीम अभ्यास करेगी। 9 अक्टूबर को होने वाले मैच में करीब 50,000 दर्शकों के पहुँचने की उम्मीद है।
5: 9 तारीख का इंतजार था, वो अपने अंतिम चरण में आ गया। कल जो मैच था, तो कल मैच के बाद आज ये लोग ट्रैवल करके आए हैं, तो आज इनका आराम का दिन है। और कल का 8 तारीख का दिन टीम की प्रैक्टिस का दिन है। पहले हाफ में वेस्टइंडीज की टीम प्रैक्टिस करेगी और दूसरे हाफ में भारत की टीम प्रैक्टिस करेगी। और उसके बाद जस्ट 9 तारीख को एक शानदार मैच, जिसका कि इंतजार कुछ लोग कर रहे थे, वो पल आ जाएगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने राज्य भर में निकाली सेवा ज्योति यात्रा, विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को नहीं मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा में किसानों और विद्यार्थियों के लिए विकास योजनाओं की रखी आधारशिला, कहा किसानों एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सरकार संकल्पित। जमशेदपुर के बिंदल मॉल फायरिंग मामले में हथियार बरामदगी के दौरान मुठभेड़, 2 कथित शूटर घायल। और भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के लिए दोनों टीमें पहुंची रांची, 9 अक्टूबर को दिखेगा मुकाबले का रोमांच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
7: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
6: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
7: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
8: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
11: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
12: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
13: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
12: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
13: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
12: माहवारी प्रारंभ होती है,
13: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
12: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
14: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
15: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
16: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर में नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ विचार क्रांति सम्मेलन आयोजित किया गया। विधायक सरयू राय की अगुवाई में समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने ड्रग्स, गांजा, अफीम, जुआ और लॉटरी के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की बात कही। वक्ताओं ने पुलिस की विशेष टास्क फोर्स बनाकर ऐसे कारोबार पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सरयू राय ने कहा कि
2: इसका समाधान हम स्थानीय स्तर पर ही निकाल सकते हैं। थाना क्षेत्र है या पंचायत का क्षेत्र है, उसके स्तर पर ऐसे लोग हो खड़ा जो बच्चों को समझा बुझा भी सके, उनके परिवार वालों से भी गार्जियन से भी बात कर सके, और जो बिल्कुल ही उदंड हो चुका है उसके बारे में हम लोगों को खत्म हम लोगों को ये सूचना दे सके। थाना में यहाँ भी एक जगह है जहाँ ऐसा हो रहा है।
1: यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हीरक जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर कंपनी की 6 दशक की उपलब्धियों, सुरक्षित यूरेनियम खनन और देश की परमाणु ऊर्जा में योगदान को रेखांकित किया गया। इस मौके पर UCIL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर के आनंद राव ने कहा कि देश में पिछले करीब 60 वर्षों से यूरेनियम का सुरक्षित तरीके से खनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम और रेडिएशन को लेकर लोगों के बीच मौजूदा भ्रम दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में यूरेनियम की उपलब्धता अहम होगी।
3: देख रहे हैं 60 ईयर से हमने यूरेनियम का माइनिंग कर रहे हैं इधर, और ये बहुत सेफ्टी के चलते हुए हम कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो भी नेगेटिव परसेप्शन है, जो स्किन डिजीज वगैरह, वो क्योंकि बैकवर्ड एरिया है उसके वजह से, ये नहीं हुआ कि ये रेडिएशन से कुछ हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमारा स्टडीज भी किए बहुत सारा, तो कुछ भी उसमें यूरेनियम के वजह से ये पूरा हो रहा है, दैट इज अ नेगेटिव परसेप्शन। वो हम पॉजिटिव परसेप्शन बढ़ाने के लिए ये पूरा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो यूरेनियम हम निकाल रहे हैं ये आपको क्लीन एनर्जी देने के लिए बहुत उपयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट इधर ही से पूरा एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम स्टार्ट होता है इंडिया में, यहाँ से फिर आपका प्रोडक्ट जाएगा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, और जो 100 गीगावाट न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेट दिया है भाई विकसित भारत 2047 के लिए, यूरेनियम का जरूरी है, तो ये यूरेनियम इधर ही प्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा माइंड से। और अभी आगे चलते हुए 60 ईयर्स के बाद में जो है हम लोग और यूरेनियम बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग माइन का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और नया माइन भी खोलेंगे राजस्थान और आंध्र प्रदेश और हिंदुस्तान। और एक बात है, हिंदुस्तान कॉपर प्लांट टेलिंग से भी हम यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं।
1: दुर्गा पूजा को लेकर शहर में तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। विभिन्न पूजा समितियों की ओर से पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वहीं मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पंडालों को आकर्षक रूप देने के लिए कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। पूजा समितियां सजावट, विद्युत व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं ये पहला खत जो हमें भेजा है बड़ी बाजार चाईबासा से। मौजम बिहारी समीमा सनम जिम्मी बिट्टू किरण रोशनी मुस्कान परी नबीहा गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बीरक जैतेग बीरक मीका बीरक सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा नवनीत राय डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल कुचाई बिदरी से के पी सोए सरिता दुर्गामती रेशमी राजकुमारी विशाल मुन्ना और सन्नी सोए गांव दलाई केला सरायकेला खरसावां से लक्ष्मण सोए बिरसा सोए राज सोए अनीता सोए मनीषा सोए पूनम सोए और समस्त सोए परिवार अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कांसलेकर दिनकर विमल विशाखा कांसलेकर कुचाई ग्राम ईचाहत उसे गोला राम लोवादा लुदरी लोवादा सोमनाथ पूर्णिमा लालमुनि और विंजना लोवादा ग्राम लोसोदीकी से कोमल महतो पेमी महतो गोविंद जीतू साईमान और समस्त महतो परिवार। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत।

और अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में फिल्म धड़कन से, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहा है तूरी टोला चायबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, परमवीर, सोनू, हरी, खुशी, उसार, बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और देवेन बाबू, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अन्नू, रमेश, बनमाली, सिद्ध कुमारी, पूजा और समस्त बेसरा परिवार, ग्राम परजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंदसौलिया, बड़ा निमडी चायबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार, सहावर टाउन, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। आप सबों की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म धड़कन का ये गीत, आवाज़ अलका।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत। संगीतकार अन्नू मल्लिक। इस गीत को सुनना चाहा था सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विकी गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू राजन और माहिर गोप। घाटशिला से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, मिस्टर संतोष आनंद। न्यू कॉलोनी निमडी चायबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीस, अंश, अंशु और मुन्ना। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाबू की आवाज़ों में, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म है जीना सिर्फ मेरे लिए, पसंद आप सबों की है। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिस्का, तन्मय गजभिये, माहौलडीहा सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अन्नू तन्नु, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, कोंडाकाटा से नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी देवी, संजय महली, रघुनाथ चरहट और एनएस महली।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत सुनवा रहे हैं आप सबों की फरमाइश पर। सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं वसुंधरा कॉलोनी से एंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी मधु, जयश्री देवी, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन, मीना पवन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, सरायकेला पारापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पारापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू और FM शिवा मुंडरी, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, GS रामगढ़िया, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। आप सबों की पसंद पर सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का ये गीत, बोल समीर के और संगीत निखिल विनय का।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत। आप सबों की फरमाइश पर सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, रेलवे कॉलोनी भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। आप सबों की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म चोरी चोरी का ये गीत, आवाज़ अलका याग्निक की, बोल आनंद बख्श के और संगीत साजिद वाजिद का।

ठीक है, रुको। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म आँखें से। इस गीत के फरमाइश करता हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी। भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। टुंगरी चाईबासा से सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी, प्रियंका पंडित, आर के पाठक, रिया, प्रिया पाठक और श्रीमती अनीता पाठक। सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सबों की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म आँखें का ये गीत, आवाज़ कुमार सानू और आशा भोसले की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये शीर्षक गीत। इस गीत को सुनना चाहा था खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू, प्रतीक कुमार, मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आन्या अनाया, नेहा सागर गुंबर, हिमांशु गुगलानी, इम्मू कुरैशी, सुधीर नूतन, बेड़ी से हुकुम करमकार, सुनीता करमकार, हार्दिक करमकार, प्राची करमकार, तन्नु करमकार, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि, विनीता होजा, निमित, विशाल गगनेजा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवेई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम रजनीगंधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म दिल जले का ये देशभक्ति गीत, आवाज कुमार सानू और आदित्य नारायण की।
2: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
3: क्या कहती हो शामू की माँ?
2: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
3: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

इस देशभक्ति गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म आसिकी का ये फरमाइशी गीत। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। भरानिमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, अमृत कुमार। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। सुंदरखेर राजमाता नगर बुढ़ाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी। आप सबों की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म आसिकी का ये गीत, आवाज़ अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब कार्यक्रम का अगला फरमाइसी गीत सुनवा रहे हैं आप सबों की फरमाइश पर कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमोहिनी महतो और दीनबंधु महतो। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। आप सबों की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म फूल और कांटे का ये फरमाइशी गीत, आवाज़ अलका याग्निक और कुमार सानू की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फूल और कांटे का ये गीत, आवाज़ अलका याग्निक और कुमार सानू की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोफ, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial फाइनेंशियल कंडीशंस,
7: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
6: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और ईएफटीए के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
8: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with News at 9.

0: the headlines. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientist duo Henri Bicaron and Kenzo Zhuai win 2026 Nobel Prize in Chemistry for solving molecular asymmetry mystery. And Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel to lead India as flag bearers at Asian Para Games beginning in Japan later this month. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said, India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Mr. Modi said the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
1: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhaar raha hai. Samasya sabki hai, to samadhan bhi sabke liye hona chahiye. Aur isliye humne sushasan ko saturation se joda. Saturation yani har labharti jude, koi patra chute nahi, koi hakdar piche rahe nahi. और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके.
0: The Prime Minister said India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said earlier, efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. Mr. Modi said such transformation is possible when the intent is clear and policies are well defined.
1: Desh ne mujhe bahut kuch diya hai, isliye desh ke liye mera daitv bhi sabse adhik hai. और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है. ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है. मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है.
0: Home Minister Amit Shah hailed the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public service and described it as a golden and historic day, addressing the Vikasit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today. He stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished, including the abrogation of Article 370, the elimination of Naxalism, and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. He mentioned that as part of this campaign, torchlight processions are being organized, during which young people will take out a Seva Jyoti Yatra and install the torch at the designated crossing. Mr. Shah urged everyone to join the Yatra in as large numbers as possible.
2: Whenever the history of India is written, these 25 years will be written in golden letters. These 25 years have seen freedom from poverty, a secure India, abrogation of Article 370, the end of Naxalism, construction of the Ram Janmabhoomi and Kashi Vishwanath temples, infrastructure being taken to unprecedented levels, and 25 crore poor people being lifted above the poverty line.
1: And 25 crore garibon ko garibi rekha se upar uthana.
0: Leaders from Japan, Bhutan, Nigeria, the Philippines, Belgium, Nepal, Botswana and Dominica have congratulated Mr. Modi on achieving this milestone. Prime Minister Modi's 25 years in public service has been a journey defined by the mantra of Jan Seva, Sidesh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like the International Solar Alliance.
3: India and France had jointly launched the International Solar Alliance in November 2015 during the COP21 climate conference. The global intergovernmental organization is dedicated to accelerating the deployment of solar energy as a pathway to energy access, energy security and sustainable development. ISA was created to mobilize collective action against climate change through the widespread adoption of solar energy solutions. Today, ISA has evolved into a global platform for international cooperation on solar energy with 129 countries currently registered as members. Co-chairing the launch of International Solar Alliance during COP21 in Paris, Prime Minister Narendra Modi said that the alliance focuses on making solar energy cheap, reliable and widely accessible by driving research and development, streamlining regulations, building infrastructure and unlocking new financing models to draw investment.
4: This alliance is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: Talking to Akashvani News, Director General of International Solar Alliance, Ashish Khanna said that ISA signifies the strength of the vision of Prime Minister Narendra Modi and showcases India's ability to the global south, bringing together countries for cleaner energy, livelihood and energy security.
5: When I look back at the creation of International Solar Alliance, I see the vision of Prime Minister Narendra Modi far ahead of its time. Way back in 2018, he set out an ambition to enable 1,000 gigawatt of solar when India had hardly done 10 to 20 gigawatts. Come today, the world has now seen 3,000 gigawatts of solar, reflecting how true his vision was.
3: The alliance represents a transformative movement towards sustainable energy future. With India leading this initiative, ISA not only aims to enhance energy access and security, but focuses to significantly reduce carbon emissions globally. With Priya Mondal, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
0: This is Akashwani giving you the news.
6: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Welcome back, here with us on the news at 9. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in the last one or two days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said such attacks threaten commercial shipping and endanger the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royad Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were three Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them was injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo-flagged ship, Alpha Watanalso, came under attack yesterday. Expanding on India's broader diplomatic efforts to address the root cause of regional volatility, Mr. Jaiswal emphasized New Delhi's ongoing communication channels with both Moscow and Kiev.
7: On the issue of Ukraine conflict, India has consistently maintained that dialogue and diplomacy are the way forward. You very well, you are aware of our position. Prime Minister on multiple occasions has expressed that this is not an era of war and no solution lies in the battlefield. In Bishkek, as you would recollect, when he met President Putin, he did note and underline that time has come for endless war to now give way to end of war.
0: Meanwhile, Russia has expressed gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Moscow appreciates New Delhi's willingness to offer ideas aimed at finding a peaceful solution to the crisis. After nearly 3.5 years, the Reserve Bank of India, RBI, today raised the key benchmark policy rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to contain rising inflation amid continuing global and geopolitical uncertainties. The last repo rate hike was in February 2023 when the RBI raised the rate by 0.25% to 6.5%. It kept the rate unchanged through 2023-24 before beginning its rate cut cycle in 2025. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points. The RBI also projected real GDP growth for the current financial year at 7.1%, with growth projected at 7.2% in the second quarter, 6.9% in the third quarter, and 6.8% in the fourth quarter. This is Akashvani. You're listening to the news at 9.
6: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi tomorrow. It will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. Prime Minister Modi has called for a free, open and rule-based global maritime order that brings greater peace and progress for all. Mr. Modi said this in a written message to the third edition of Sagar Manthan, the Great Oceans Dialogue, which is being organized by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and the Observer Research Foundation in New Delhi. The 2026 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to French chemist Henri B. Cargan and Japanese chemist Kenzo Soai for their pioneering discoveries of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis. The Royal Swedish Academy of Sciences today said Cargan and Soai solved a century-old mystery of how molecular asymmetry or homochirality can emerge spontaneously in nature. Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel will lead the Indian contingent as flag bearers at the opening ceremony of the Asian Para Games, which will get underway later this month. The games will be held from the 18th to the 24th of October at Aichi Nagoya in Japan, with athletes from across Asia competing in the grand sporting event. Para badminton star Pramod Bhagat has won 6 Asian Para Games medals, including 2 gold and 4 bronze between 2014 and 2023. Para table tennis player Bhavina Patel has also won 2 Asian Para Games medals, a silver and a bronze, between 2018 and 2023. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years, also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientist duo win 2026 Nobel Prize in Chemistry. That is all in the news at 9. Good night.
8: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नजरिया साज पॉलिसियों और सख्त मेहनत के जरिए साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगा। उन्होंने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। भारत ने बहरे अस्वद खित्ते में कमर्शियल जहाजरानी पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि वो कयाम अमन के लिए रूस और यूक्रेन के साथ राबते में है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने में तावुन के लिए भारत की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। आरबीआई ने मौजूदा माली बरस के लिए जीडीपी की शरह तरक्की 7.1% रहने का भी तखमीना लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। फ्रांस और जापान के साइंसदानों की जोड़ी हेनरी बी कैगन और केंसो साय ने मोलिक्यूलर अदम तवाजुन के राज को हल करने पर 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम जीता है। और पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भावेना पटेल इस माह के आखिर में जापान में शुरू होने वाले एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय दस्ते के परचमबरदार होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब नजरिया साज पॉलिसियों और मेहनत के जरिए जरूर पूरा करेगा। आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी तमाम शहरियों के मसाइल के हल पर मरकूज है।
1: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
8: वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त था जब भारत का तस्करा कमजोर पॉलिसी के लिए किया जाता था, लेकिन अब दुनिया भारत की बढ़ती हुई ताकत और मुश्किलात का मुकाबला करने की उसकी सलाहियत के बारे में बात कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 12 बरस के दौरान हालात में यकसर तब्दीली आई है। जनाब मोदी ने कहा कि पहले भारत की दरामदाद बढ़ाने की कोशिशें की जाती थी, जबकि आज भारत बरामदाद के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस तरह की तब्दीली उसी वक्त मुमकिन होती है जब नीयत दुरुस्त और वाजे हो, नीज पॉलिसियां बेहतर तौर पर वजह की गई हों।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है, और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है, और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
8: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है, और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि कैसे बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA जैसी पहलों के जरिए इस विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है।
9: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में COP21 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA का मुश्तरका तौर से आगाज किया था। यह आलमी बैन हुकूमती तंजीम तवानाई तक रसाई, तवानाई की सलामती और पायदार तरक्की के लिए शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए वक्फ है। ISA शमसी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी इश्तराक के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आज 129 रुकन ममालिक शामिल हैं। पेरिस में COP21 کے دوران بین الاقوامی شمسی اتحاد کے آغاز کی مشترکہ طور پر صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ اتحاد شمسی توانائی کو کفایتی، قابل انحصار اور قابل رسائی بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
1: بھارت سرکار نے راجیہ سرکار کے سہیوگ سے ساگر مالا پریوجنا کے تحت پورٹ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کیا ہے، پورٹ کنیکٹیویٹی کو بھی بڑھایا ہے۔
9: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بین الاقوامی شمسی اتحاد کے ڈائریکٹر جنرل آشیش کھنہ نے کہا کہ ISA وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی، روزگار اور توانائی کی سلامتی کے لیے ملکوں کو یکجا کرنے کی بھارت کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ بھارت کی قیادت میں ISA کا مقصد صرف توانائی تک رسائی کو بڑھانا نہیں بلکہ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں نمایاں کمی لانا بھی ہے۔ آکاشوانی نیوز دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
8: وزیر اعظم نریندر مودی نے حکومت کے سربراہ کے طور پر عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کو ایک سنہرا اور تاریخی دن قرار دیا۔ آج گڑگاؤں میں وکست بھارت سنکلپ سبھا سیوا جیوتی یاترا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک میں کئی اہم کام انجام دیے گئے ہیں، جن میں دفعہ 370 کی منسوخی، نکسلزم کا خاتمہ اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو اعلی ترین سطح تک پہنچانا شامل ہیں۔
1: آج غریب سے غریب گھر میں جنمے ہوئے ایک ویکتی نے اپنے گنوں کے آدھار پر، اپنی کشمتا کے آدھار پر اور کروڑوں کروڑوں لوگوں کو ساتھ میں لے کر لگاتار 25 سال مکھیہ منتری اور پردھان منتری رہنے کا ریکارڈ بنایا ہے، اور وہ ویکتی ہے ہمارے پریہ نیتا نریندر مودی جی۔
8: وزیر اعظم نریندر مودی نے حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل ہونے پر مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرنے والے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نائجیریا، ڈومینیکا، بیلجیم، فلپینز، بھوٹان اور بوتسوانا کے رہنماؤں کی جانب سے موصول ہونے والے پیغامات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے ان ملکوں کے ساتھ بھارت کی شراکت داری اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پچھلے ایک دو دن کے دوران بحر اسود کے علاقے میں ہونے والے سلسلہ وار حملوں کی مذمت کی ہے۔ نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے کمرشل جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور سمندری شعبے سے وابستہ افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑتی ہیں۔
10: کل سے لے کے آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ 4 جہازوں پر اٹیک ہوئی ہے۔ اس حملے کی ہم گھور نندا کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے جو وانجیہ کی نو پریوہن ہیں، ساتھ میں جو ہمارے ناوک سمودائے کے لوگ ہیں، ان کو خطرے کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ پہلا جہاز MV رایود مامادوف، یہ بھی بلیک سی میں اس پر اٹیک ہوئی، جس میں 3 بھارتیہ ناگرک تھے۔ اس میں سے 1 بھارتیہ ناگرک کو چوٹ پہنچی اور ان کو وہاں پر اسپتال میں ان کا اپچار چل رہا ہے۔
8: کیپٹن سمتھ مچھر کی صحت کے بارے میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ وہ اس وقت ابوظہبی میں ہیں اور تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ان کی صحت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ روس کی فوج میں موجود بھارتی شہریوں کے بارے میں ترجمان نے بتایا کہ دستیاب معلومات کے مطابق 259 بھارتی شہریوں کو روس کی مسلح افواج میں بھرتی کیا گیا ہے۔ بھارت کی کوششوں کے نتیجے میں ان میں سے 139 بھارتی شہریوں کو قبل از وقت فوج سے فارغ کرایا جا چکا ہے۔ روس نے یوکرین تنازع کو حل کرنے کے لیے بھارت کی آمادگی کے لیے اس کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ موسکو اس بحران کے پرامن حل کے لیے بھارت کی تجاویز پیش کرنے کی آمادگی کی ستائش کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات موسکو میں بھارت کی جانب سے یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے 3 حصوں پر مشتمل تجویز پیش کرنے سے متعلق میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہی۔ ان کا یہ بیان یوکرین کے وزیر خارجہ اندری سبیہا کی جانب سے بھارت کی تجویز کو 4 پیش کشوں میں وسیع تر بتانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ بھارت کے علاوہ ترکی، مصر اور امریکہ نے تجاویز پیش کی ہیں۔ روس یوکرین جنگ اب اپنے 5ویں سال میں ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں شہری ہلاک جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ بھارت نے مسلسل تنازع کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ तकरीबन 3.5 साल के वक्फे के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आज महंगाई में इजाफे को रोकने के लिए अपनी अहम पॉलिसी शरह में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। यह फैसला आलमी और जुग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान किया गया है। दो माही मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे का फैसला किया है। RBI ने पिछली मरतबा फरवरी 2023 में रेपो रेट में इजाफा किया था, जब इसमें 0.25% का इजाफा करके इसे 6.5% किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये कांग्रेस टेलीमुवासलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तिरा के शोबों में भारत की नुमाया पेशरफ्त को उजागर करेगी। इसके अलावा ये आलमी सतह पर तआवुन, सरमायाकारी और मालूमात के इश्तराक के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का मौजू है लामहदूद तौसी, जो भारत की डिजिटल जिद्दत तराजी, अगले सिलसिले की कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पर मबनी इकतसादी तरक्की की बढ़ती सलाहियतों की अक्कासी करता है। 4 रोजा ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है और इसे टेलीमुवासलात का महकमा और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुश्तरका तौर पर मुनक्किद कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 से कबल आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ के मकाम पर मोबाइल के मुवासलाती निजाम से मुतालिक एसोसिएशन GSMA के बोर्ड मेंबरान से बातचीत की। GSMA एक आलमी तंजीम है जो मोबाइल के इको निजाम को यकजा करती है, मोबाइल ऑपरेटर्स और मोबाइल इको निजाम और इससे मुंसलिक सनतों की तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी करती है। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक को सबकी शमूलियत और पायदार तरक्की का एक आला बनना होगा। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हुए चैलेंज का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस मसले के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी हल तलाश करने की जरूरत है। साल 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम फ्रांस के केमिस्ट हेनरी बी कैगन और जापानी केमिस्ट केंसो साई को नामियाती केमिस्ट्री में गैर खत्ती असरात और ऑटोकैटेलिसिस से मुतालिक उनकी अहम दरियाफ्तों के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आज कहा कि कैगन और साई ने एक सदी पुराने इस मामले को हल किया है कि मोलिक्यूलर अदम तवाजुन, जिसे होमो काइरैलिटी कहा जाता है, फितरत में खुद ब खुद किस तरह पैदा हो सकता है। नोबेल कमेटी के मुताबिक केमिस्ट रिवायती तौर पर तजर्बागाह में मोलिक्यूल्स की तैयारी के दौरान एक दूसरे के आईने में नजर आने वाली शक्लों यानी अक्स नुमा मोलिक्यूल्स की बराबर मकदार हासिल करते हैं। दोनों नोबेल इनाम याफ्ता अफराद 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर की इनामी रकम मुश्तरका तौर पर हासिल करेंगे। भारत के बराह रास्त नश्र होने वाली तकारीब के शोबे में गुज़श्ता साल 44% से जायद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुज़श्ता साल मुल्क भर में ऐसी 34,000 तकारीब मुनक़िद की गई। इत्तला और नशरियात की वजारत में सेक्रेटरी चंचल कुमार ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा बराह रास्त नश्र होने वाली तकारीब की तरक्की से मुतालिक सेल की 5वीं मीटिंग में अपने खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये शोबा 1 करोड़ से जायद अफराद के रोजगार का जरिया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक और तेज हवाओं के चलने का इम्कान है। पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियन पैरा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में परचम बरदार की हैसियत से भारतीय खिलाड़ियों की कयादत करेंगे। एशियन पैरा गेम्स जापान के आईची नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक मुनक़िद होंगे। इसमें एशिया भर से खिलाड़ी खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने साल 2014 से 2023 के दरमियान सोने के 2 और कांसे के 4 तमगों समेत कुल 6 एशियन पैरा गेम्स तमगे जीते हैं। और पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने 2018 से 2023 के दरमियान चांदी का 1 और कांसे का 1 तमगा समेत कुल 2 एशियन पैरा गेम्स तमगे हासिल किए हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नजरिया साज पॉलिसियों और सख्त मेहनत के जरिए साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगा। उन्होंने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। भारत ने बहरे अस्वद खित्ते में कमर्शियल जहाजरानी पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि वो कयाम अमन के लिए रूस और यूक्रेन के साथ राबते में है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने में तआवुन के लिए भारत की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। आरबीआई ने मौजूदा माली बरस के लिए जीडीपी की शरह तरक्की 7.1% रहने का तखमीना लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे और पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल इस माह के आखिर में जापान में शुरू होने वाले एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय दस्ते के परचम बरदार होंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुई वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे हम वीबीजी राम जी भी कहते हैं, वो ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसके तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक काम करने की इच्छा होने पर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है और ये व्यवस्था पहले की मनरेगा की 100 दिन की रोजगार गारंटी का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए, इस योजना के बारे में समझने के लिए, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था, बातें हम करेंगे। हमारे साथ में है आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे वीबीजी राम जी भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो बेहतर होगा।
2: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी, यह एक ऐतिहासिक एक्ट जो बना हुआ है, वह पूरे देश में लागू हो चुका है। एक ही दिन में भारत देश के सारे ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत जी राम जी के सारे प्रावधान जो है वो लागू हो चुके हैं। उसके तहत अब तक पिछले 3 महीनों में लगभग 36 करोड़ से भी ज्यादा मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिसे कि हम परसेंटेज कहते हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा वर्क साइट पर जो है विकसित भारत जी राम जी के काम चल रहे हैं और 2,34,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में ये जो काम है वो किए जा रहे हैं। 2.99 ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने रोजगार मांगा, उनको 15 दिन के अंदर अंदर यह रोजगार उपलब्ध किया गया है और लोगों की रोजगार की और आजीविका की कई सारी ये जो डिमांड्स हैं उनको तभी के तभी फुलफिल किया गया है। तो एक तरीके से 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी का राष्ट्रव्यापी जो शुभारंभ हुआ है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई और बहुत ही स्मूथली विकसित भारत जी राम जी लागू हो चुका है और सारे ग्रामीण उसका बहुत सही तरीके से 125 दिन की जो बढ़ी हुई रोजगार की गारंटी है उसका यूज कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, अब उसमें आगे जाते जाते कई सारे पहलू जो है हम लगा रहे हैं, जैसे कि नए कामों की जो सूची अभी अभी भारत सरकार ने नोटिफाई की।
1: रोहिणी जी, इस मिशन का उद्देश्य रखा गया था कि केवल रोजगार ही उपलब्ध न कराया जाए बल्कि कई अन्य काम भी हो, जैसे कि गांवों में जल संरक्षण हो, जल सुरक्षा हो, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिले, आजीविका से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिले और साथ ही जलवायु या फिर अत्यधिक मौसम से बचाव जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाए। इस दिशा में कैसे प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक जो सफलता प्राप्त हुई इसके बारे में बताएं।
2: विकसित भारत जी राम जी का अगर आप नाम ही देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मतलब यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम जो है वो केवल रोजगार की बात नहीं करता है, वो रोजगार के ऊपर जाकर आजीविका की बात करता है, जिससे कि लोगों को केवल मजदूरी, केवल रोजगार ना मिले परंतु स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध हो। और इसी को रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो अनुमेय कामों की सूची है। अनुमेय कामों की सूची में जैसे आपने कहा, टोटल 375 काम जो है वो अनुमेय माने गए हैं विकसित भारत जी राम जी में, जिसकी सूची जारी हुई। इन 375 कामों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्राथमिकता दी गई है तो वह है जल संरक्षण, वाटर सिक्योरिटी। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल है तो कल है, कैच द रेन, ऐसे कई सारे कैंपेन्स जो है भारत सरकार चलाता है, जिससे कि हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण विभाग के लिए, हमारे शहरी विभागों के लिए पानी की कमी ना रहे, वाटर सिक्योरिटी बनी रहे। इंडियाज वाटर विजन 2047 भी यही कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें पहले वाटर सिक्योर भी होना पड़ेगा। इसीलिए जल संधारण के जो कार्य है उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आप देख सकते हैं कि 128 ऐसे काम है 375 में जो कि जल संधारण के कार्य है, वाटर सिक्योरिटी के कार्य है, और उसके बाद जो है ग्रामीण अवसंरचना के कार्य है, और जो 111 ऐसे काम है जो ग्रामीण अवसंरचना के है, जिसमें कि सारी बुनियादी ढांचे में जो भी जरूरतें हैं ग्रामीण विभागों की, रोड हो गए, पुल पुलिया हो गया, खेत सड़क हो गए, किसी स्कूल की लैबोरेटरी की बिल्डिंग हो या क्लासरूम बिल्डिंग हो या टॉयलेट्स हो या फिर आंगनवाड़ी की बिल्डिंग हो, जो भी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ग्रामीण विभागों में है वह सारा 111 कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में आता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैटेगरी ऐड की गई है जिसे कि हम आजीविका मूलक गतिविधियां कहेंगे, जिसमें कि 98 काम उसमें शामिल किए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट

0: पानी और जलवायु और जल सुरक्षा, ये दो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, इसीलिए इसमें किसानों को केंद्र स्थान में रखकर ये बात की गई है कि जल सुरक्षा के कार्य जो है उनको प्राथमिकता दी गई है। और किसानी के साथ साथ हमने यह भी देखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस जिसे लचीलापन कहते हैं वो करने के लिए या फिर ड्रॉट प्रूफिंग की बात, इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव की वजह से कुछ एरियाज हमारे देश में एडवर्सली इफेक्ट होने की संभावना है, कुछ एडवर्सली इफेक्ट हो भी गए हैं, तो ड्रॉट प्रूफिंग की जो बात है, क्लाइमेट रेजिलियंस की जो बात है, यह भी हमारे पानी के संबंधित कार्य ऐड करते समय यह भी हमारे केंद्र स्थान में रहा है, सोच में रहा है, और इसीलिए पानी के कामों को जो है प्राथमिकता दी गई है।
1: आपने ये जिक्र किया था कि मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 111 कार्यों का प्रावधान किया गया है, तो इसमें 100 स्ट्रीट लाइट की बात है, स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, पुस्तकालय, स्कूलों के अतिरिक्त कक्षाओं या फिर अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाने की बात कही जा रही है। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में ये जो बदलाव लाने की अपेक्षा है, आपको लगता है कि हम इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो इनके माध्यम से और तेजी से बढ़ेंगे?
0: भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा उनको और भी अपने अवसंरचना को मॉडर्नाइज करने का एक एस्पिरेशन जो है हमारे गाँव के लोगों में है, और इसीलिए हमने उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वो काम तो केवल शहरी विभाग में ही होने चाहिए, ग्रामीण विभागों में भी जब वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेग्रीगेशन करके उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, यह एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण विभागों में भी अब बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें ग्रामीण अवसंरचना में कई ऐसे काम ऐड किए गए हैं जो कि हमारी बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केटर करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका जब प्रसंस्करण होता है, उसका जब प्रोसेसिंग होता है, तो वह उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्रामीण विभागों की बदलती हुई इन जरूरतों को केटर करने के लिए हमने कई सारे ऐसे मॉडर्न कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो इसमें ऐड किए हैं, और जो ग्रामीण विभाग को न केवल मूलभूत कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा परंतु ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जो है ताकत रखता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर विकसित ग्राम पंचायत का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के हम चलते हैं या चल रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए लाभप्रद होगा इन योजनाओं को लेकर के?
0: विकसित भारत जी राम जी जब हम कहते हैं तो उसकी शुरुआत में ही विकसित भारत आता है
1: जी।
0: ऑलमोस्ट 60-65% हमारी आबादी, निखिल जी, आज भी ग्रामीण विभागों में रहती है। विकसित भारत की कल्पना विकसित गांव की कल्पना किए बिना की ही नहीं जा सकती, इसीलिए विकसित ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे विकसित भारत जी राम जी के ऑब्जेक्टिव्स में कोर ऑब्जेक्टिव रहा है। और इसीलिए जब हम 375 अनुमेय कामों की बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी में, तो यह बहुत जरूरी है कि इन कामों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से नियोजन किया जाए इन कामों का। और इसीलिए विकसित ग्राम की कल्पना जब तक हम नहीं करते तब तक हम विकसित ग्राम पंचायत प्लान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में पहले तो विकसित गांव की कल्पना की गई है और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की बात की गई है, जिन प्लान्स में ये 375 टाइप के काम भी आएंगे।
1: रोहिणी जी, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 98 काम निर्धारित किए गए हैं और इसका जो हिस्सा है पिछले ढांचे में लगभग 1.1% था, अभी बढ़कर वो 26% हो गया। तो इस बड़े बदलाव से ग्रामीण रोजगार को स्थायी आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलने की किस तरह की संभावना आपको नजर आती है?
0: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम विकसित भारत जी राम जी का जो प्रोग्राम है वह केवल रोजगार देने वाला प्रोग्राम नहीं है, यह रोजगार के आगे जाके आजीविका की बात करता है। और इसीलिए पहले के प्रोग्राम में एमजी नरेगा में लाइवलीहुड के बारे में बात ही नहीं की गई थी, अगर थी तो भी केवल एक या दो बहुत ही कम 1% काम जो थे जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज में आते थे, विकसित भारत जी राम जी वही परसेंटेज जो है अब वो 26% हो गया है। इससे यह पता चलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है विकसित भारत जी राम जी में इन अनुमेय कामों को शामिल किया गया है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये काम केवल नंबर्स नहीं है, जैसे मैंने कहा कि हमारे किसान जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण विभागों में रहते हैं, और किसान कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, धान्य होता है या फिर फल होते हैं, सब्जियां होती है, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना एक बात है, अच्छा भाव दिलाना एक बात है, परंतु कई बार इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर सही तरीके से उसका भंडारण किया जाए, स्टोरेज किया जाए, सही तरीके से उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए या उसमें मूल्य संवर्धन किया जाए, उसमें वैल्यू एडिशन की जाए, तो हमारे किसानों की आय

0: गुना बढ़ सकती है और इसीलिए हमने लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में खाद्य प्रसंस्करण हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज हो या फिर उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हो, ऐसे कई सारी चीजें हमने इसमें ऐड की है। अन्नदाताओं से अगर हम महिलाओं तक जाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, गांव में ये दीदियां रहती है, लखपति दीदियां बन चुकी है या करोड़पति बनने की ओर अग्रेसर है, तो ये हमारी जो दीदियां हैं वह भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, परंतु उनके लाइवलीहुड एक्टिविटीज को अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत पड़ती है तो ऐसे काम भी अब हमने जो है विकसित भारत जी राम जी में अलाउ किए हैं। जैसे कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर कोई एक एंटरप्राइज करना चाहता है जिसके लिए कि उन्हें वर्कशेड की जरूरत है, तो अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से वह वर्कशेड बना सकती है। कोई एसएचजी चाहता है कि हम एक नर्सरी रन करें जिससे कि प्लांटेशन को भी बढ़ावा मिले, वह भी कर सकता है। तो हमारी दीदियां, हमारे युवा और हमारे अन्नदाता, इन सभी के आजीविका के जरूरतों को कैटर करने का जो सामर्थ्य इन 98 कामों में है जो कि हमारे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है।
1: श्रोता, हम आपको बता दें कि नारी शक्ति और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्यों को इनमें शामिल किया गया है। तो रोहिणी जी, ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा, तो क्या इनका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना है या फिर इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और दीर्घकालीन आजीविका से भी जोड़ने की व्यापक रणनीति बनाई गई है?
0: बिल्कुल सही कहा, 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो मिनिमम गारंटी दी गई है कि 125 दिन रोजगार मिलेगा, परंतु विकसित भारत जीराम जी यह कहता है कि हमारे दीदियों को या फिर हमारी महिलाओं को या फिर अन्नदाताओं को केवल 125 दिन का अकुशल रोजगार लेना ही उनका एस्पिरेशन नहीं है। वह चाहते हैं कि उनको दीर्घकालिक एक आजीविका के अवसर मिले और वो करने की क्षमता जो है विकसित भारत जीराम जी के कार्यों में है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे ग्रामीण विभागों की बदलती हुई जरूरतें अगर आप देखें, तो अगर एक पैकेजिंग और ग्रेडिंग यूनिट भी अगर हम गांव में बनाएं जो कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन के लिए काम आ सकता है, मिनी फ्लोर मिल्स बनाए जाए, मार्केट यार्ड्स बनाए जाए, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कई विभागों में भारत दुनिया का बहुत बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और अगर हमारे पास मिल्क चिलिंग प्लांट्स अगर बन जाए, क्लस्टर लेवल पे भी बन जाए, तो भी हमारे युवाओं को, महिलाओं को और अन्नदाताओं को यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है फॉर टू गेन सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार से आगे बढ़ करके दीर्घकालिक आजीविका के लिए ये लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
1: रोहिणी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि नई अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से संपदा और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जैसे विषय भी शामिल किए गए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, सरकार इन विषयों पर लगातार ध्यान देती रही है। तो क्या ये संकेत इस बात का भी है कि बुनियादी ढांचे की योजना अब केवल पारंपरिक निर्माण कार्यों तक सीमित न रह करके अधिक समावेशी बनने जा रही है और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम एक टारगेट सेट करके बैठे कि हमें बहुत ही जल्दी अपने यहाँ से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहता है प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में, आपने सभी ने, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। तो हमारे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, इसीलिए ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गए या फिर और भी कई रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो है वो विकसित भारत जी राम जी में हमने शामिल किए हैं। तो यह एक अलग डायमेंशन जो है वो विकसित भारत जी राम जी में ऐड हुआ है। समावेशी होने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी पीछे ना छूटे, इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में भी यह कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कैटल शेल्टर हो गया या कोई खेत तालाब हो गया, जो भी इंडिविजुअल एसेट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनमें हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो अंत्योदय वाले सेक्शंस है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की गई है। और जो भी एसेट्स बनेंगे वो सारे डिफरेंटली एबल फ्रेंडली होने के बारे में भी हमने जो है प्रावधान रखे हैं।
1: रोहिणी जी, जैसा कि आपने भी बताया, तो मैं आपसे यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगा, जो वास्तव में सबसे कमजोर परिवार तबके के लोग हैं या अंतिम छोर तक के वाले जो लोग हैं, वो इन परिसंपत्तियों या रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको विकसित भारत जी राम जी के प्लानिंग में केंद्र स्थान पर रखने की बात की गई है। अगर आप विकसित ग्राम पंचायत प्लान का, जो एक अभी बहुत ही हाल ही में विकसित ग्राम पंचायत प्लान का एक फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया और राज्यों के साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान जब बनेगा, तब जब यह एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होगा, ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा के माध्यम से एक साथ बैठेंगे और चर्चा के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से, वह यह तय करेंगे कि हमारे गांव में कौन कौन से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसी के साथ जब बात आएगी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की, तब जो है ग्राम सभा ही यह सूची बनाएगा कि ऐसे कौन कौन से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं जिनको कि यह इंडिविजुअल एसेट्स देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उनकी सूची जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से सभी के संज्ञान के लिए वहां पर पब्लिक प्लेस में उसे डिस्प्ले किया जाएगा, और जिनको भी यह बेनिफिट्स चाहिए वो उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनको अगर किसी को कुछ आपत्ति भी है तो भी वो उसमें दर्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक पारदर्शी और लोगों को केंद्र स्थान पर रखने वाली विकसित ग्राम पंचायत प्लान योजना बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जा चुका है, और आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में जो ग्राम सभाएं हुई उसमें पहला डिस्कशन विकसित ग्राम पंचायत प्लान को लेकर वह भी हो चुका है।
1: रोहिणी जी, ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसमें प्रत्येक कार्य को विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर शुरू करने और ग्राम सभा से अनुमोदित करने की व्यवस्था की गई है। अगर व्यवहारिकता को हम समझें तो स्थानीय जरूरतों और तकनीकी रूप से व्यवहार परियोजनाओं के बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर तकनीकी क्षमताओं का ये कहें कि अभाव है या फिर वहां पर सीमित है वो व्यवस्थाएं।
0: मंत्रालय या भारत सरकार जब भी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सक्लूजन या ना कि किसी प्रॉब्लम का वो द्योतक बननी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज टू मेक द पीपल्स लाइव्स इजियर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है लोगों की, उसको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मंत्रालय करता आ रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह 2 प्रकार से किया जा रहा है। मैं यह कहूंगी कि युक्त धरा नाम का जो पोर्टल हमने इसरो के एसोसिएशन में उनके साथ मिलकर जो बनाया है, वह युक्त धरा पोर्टल हमारे पंचायत सेक्रेटरीज या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्राम पंचायत प्लान बना रहे हैं जो कि ग्राम सभा से ही अनुमोदित होगा, वहां पर इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे कि अगर आपके गांव में एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक, तो वह चेक डैम कहां पर कंस्ट्रक्ट करने से वहां सबसे ज्यादा पानी रुकेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा होगा, इसका सजेशन दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सजेशन जरूर मिलेगा जिससे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव एसेट होगा, परंतु अल्टीमेटली उसको अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वह ग्राम सभा के पास ही रहेगा। तो ग्राम सभा केंद्र स्थान में है, परंतु एक पोर्टल है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मदद करेगा। वह एसेट्स के दोहराव को भी रोकेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता इंश्योर करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को फास्टर करना, मोर एफिशिएंट करना, और यह करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इसकी वजह से छूटे ना, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्लूजन। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होता है कि अगर कोई तकनीक फेल हो जाती है कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, तो वहां पर हमारा अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या रहेगी।
1: श्रोताओं को बता दें कि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से डिजिटल निगरानी और विभिन्न योजनाओं के निवेश के अभिसरण की बात कही गई है, और ये प्रणाली जमीन पर कामों के दोहराव को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी साबित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रोहिणी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहली बार इस तरह से आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए भी 38 कार्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसमें कि बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए कितने काम किए जा रहे हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे?
0: 38 काम ऐसे है जो पहली बार यह कैटेगरी ऐड की गई है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। यह एक सेपरेट कैटेगरी कभी नहीं थी जिसमें कि आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उन्हें टैकल करने के लिए, पहली बार यह एक सेपरेट कैटेगरी ऐड की गई है जिसमें कि 38 काम है। हमारा देश जैसे कि निखिल जी आप जानते हैं बहुत बड़ा है और हर एरिया की एक अलग वल्नरेबिलिटी होती है। कोस्टल एरियाज है जहाँ पे साइक्लोन प्रोन कुछ एरियाज है, भूस्खलन के लिए वल्नरेबल कुछ एरियाज है, जहाँ पे बाढ़, सूखा, ऐसे अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए हमने यह 38 काम जो है इसमें ऐड किए गए हैं। कुछ काम इसमें ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके चलते फॉरेस्ट फायर्स की भी घटनाएं कई बार सामने आती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के मेजर्स जैसे कि फायर लाइंस हो गए, फ्यूल बफर जोन्स हो गए, वो भी अब ऐड किए गए हैं। जैसे कि फ्लड रिलीफ के शेल्टर्स, कई बार फ्लड आता है तो स्कूलों में या कहीं और लोगों को रखना पड़ता है, वो ना हो इसीलिए फ्लड रिलीफ शेल्टर्स, रिटेनिंग वॉल्स, एम्बैंकमेंट्स का स्ट्रेंथनिंग, ऐसे भी कई सारे काम जो
1: रोहिणी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि 375 स्वीकार्य कार्यों का इतना व्यापक दायरा है, निश्चित रूप से कई सारे विकल्प हमारे सामने रखता है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन की जटिलता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो सरकार इस विस्तार के साथ गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है या करेगी?
0: सरकार ने विकसित भारत जीराम जी के एक्ट, कई सारे गुणवत्ता मूलक गतिविधियां जो है वो एक्ट का ही पार्ट है, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे कि हमने देखा है कि एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उनको इसके लिए जवाबदेही माना गया है। पंचायत केंद्र स्थान पर है, कार्य योजना वही बनाएगी, विकसित ग्राम पंचायत योजना, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, वह इस कार्य योजना के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की हर एक स्थान पर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है, जो कि एक्ट का ही एक पार्ट है। और सोशल ऑडिट की जो व्यवस्था है, जिसमें कि गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकसित भारत जी राम जी में, उनकी निगरानी करेंगे, तो उससे भी गुणवत्ता में जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता का मॉनिटरिंग होगा। ऑल्सो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स। जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसका त्रिस्तरीय जियो टैगिंग करना पड़ता है, जैसे कि काम होने से पहले एक बार, जब काम हो रहा है तब एक बार, और काम होने के बाद भी एक बार जियो टैग करके फोटो अपलोड करना पड़ता है। जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की आपने बात की, तो एक डिजिटल निगरानी के लिए वह एक बहुत अच्छा साधन बनेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से पंचायतों में कौन से कैटेगरी के कितने कार्य जो है वो चल रहे हैं, कितने अभी पाइपलाइन में है। तो आगे जाकर ये निगरानी की व्यवस्था और भी बेहतर होगी, और राज्यों को इसके लिए पूरी तरीके से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है कर रही है। अभी हमारा नेशनल लेवल पे 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई, और फिर राज्यों में भी, वह राज्य लेवल पे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हमारा NIRDPR का संस्थान है, उसके माध्यम से भी बिल्कुल गांव लेवल तक की कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य चल रहे हैं। जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो सरपंचस है, हमारे पूरे देश में जितने प्रधान और सरपंचस है, उनके लिए भी हमने पंच सम्मेलन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे कि आज तक लाखों जो है एरियाज में पंच सम्मेलन जो है किए गए हैं, जिससे कि हमारे सरपंच और प्रधान भी जाने कि उनका विकसित भारत जी राम जी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे यह जो जटिलता आपको अभी लग रही है वह जरूर सिंप्लीफाई होगी।
1: जी बिल्कुल। और रोहिणी जी, वैसे आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन को स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ऐसे कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया होना जरूरी होती है जब भी कोई आपदा आती है, और समय पर उसमें रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात होती है, तो संतुलन कैसे बनेगा? ये
0: सेक्शन 7 जो है विकसित भारत जी राम जी का, वह ऐसे आपदा के समय पर किस टाइप के रिलैक्सेशन आपको एक्ट देता है, उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट ने जो है वो आपदा को टैकल किया है, ऐसे मुझे लगता है। अगर एक जगह से विस्थापित होना पड़ता है लोगों को बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलमिटी, तो यह कहा गया है कि उनको टेम्पररी जॉब कार्ड भी देकर तभी के तभी जो है उनको लाइवलीहुड की, उनके रोजगार की व्यवस्था वहीं पर की जाए। कई काम जो अदरवाइज अलाउड नहीं है, ऐसे काम भी लिए जाने की पॉसिबिलिटी जो है नेचुरल कैलमिटीज में हो जाती है। जो गारंटीड वर्क डेज है 125, वह बढ़ाकर देने की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है अगर कोई आपदा आती है तो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है, हमारे विकसित भारत जी राम जी पोर्टल के माध्यम से। अगर आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आज भी दिखा सकती हूँ कि कौन से पंचायत में कितने लोगों का आज हाजिरी लगा है, कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह पता चलता है कि आज कौन कौन काम पर आया और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो फिर एक साइड में आपदा के लिए हम रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी हमें पता चलेगा कि अगर आपदा आई है तो कहाँ पर आई है, कहाँ पर लोगों ने काम किया है, कहाँ पर कौन कौन से रिलैक्सेशन अवेल किया है, तो यह बैलेंस इसी तरीके से बनाया जाएगा।
1: रोहिणी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य हमें दिया है, और हम भी जी राम जी को 2047 के विकसित भारत के व्यापक विजन के साथ जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं। तो अगले वर्षों में या अगले एक दशक की हम बात करें तो किस रूप में विकसित होते हुए आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा है आने वाले एक दशक में? क्या ये सिर्फ ग्रामीण रोजगार का एक कार्यक्रम रहेगा या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ देश का जो एक टिकाऊ विकास होना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, उस पर भी काफी हद तक मदद मिलेगी और हम सफल होंगे।
0: विकसित भारत जीराम जी के नाम में फिर से जाने का मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा, क्योंकि विकसित भारत जीराम जी के नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि विकसित भारत बनाना है और इसीलिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बन रहे हैं जिसके माध्यम से विकसित भारत जीराम जी के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। तो ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव तो विकसित भारत बनाने का ही है और वो विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से ही विकसित भारत जो है बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा 5 साल का 7 साल का, तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन जैसे आप कहा अगले दशक में अगर हम देखेंगे तो वीबी जीराम जी के माध्यम से पंचायतें पूरी तरीके से सैचुरेट होती हुई हमें दिखेगी, पंचायत पूरी तरीके से विकसित होती हुई दिखेंगी, हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वह रोजगार से आगे जाकर के आजीविका और हाई इनकम की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे थ्रू विकसित भारत जीराम जी।
1: रोहिणी जी, इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का हमारे देश के ग्रामीण युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन या ऐसे लोग जिन्हें इनकी जरूरत है, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करनी चाहिए?
0: 125 दिन की रोजगार गारंटी यह तो इसमें एक मिनिमम चीज है ऐसा मैं कहूंगी। विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों को केवल ना देखें, विकसित भारत जीराम जी में जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को और भी पिछड़े तबके वाले जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन्होंने भी विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों के साथ साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर देखें तो गांव के विकास को संपूर्ण बनाने की क्षमता विकसित भारत जीराम जी रखता है। पूरी तरीके से अगर उसका यूज किया जाता है तो वह विकसित भारत की ओर जाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा।
1: रोहिणी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो इस योजना के साथ साथ हमारी जो अन्य तरह की विकास की योजनाएं होती जिनका हम लाभ उठा सकते, खासतौर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं?
0: निखिल जी, विकसित भारत जीराम जी में कन्वर्जेंस की बात करी है, इसीलिए आपने जो पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिसरण के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको वीबी जीराम जी में 90 से 95 दिन का रोजगार भी उसके साथ मिल जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, हमारी दीदियां जैसे मैंने कहा लखपति दीदियां बन रही है और वो हायर एंटरप्राइजेस की ओर अब जा रही है। तो दीदियों से भी ये अनुरोध है जब आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही है तो वीबी जीराम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास पा सकते हैं, कौशल पा सकते हैं और उसको कई सारे उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं। मुद्रा लोन अवेल करके वह कई सारे अपने खुद के एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने उठाना चाहिए।
1: श्रोताओं, भी हम बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे से, जिन्होंने विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में तमाम विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद निखिल जी,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुई वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। समय है गजलों के कार्यक्रम महफिल का। कार्यक्रम महफिल में सुनवाते हैं ये पहली गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में ये गज़ल, और अब सुनवा रहे हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800345406।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम महफिल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवा रहे हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह के स्वर में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम महफिल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग में सुनवाते हैं ये पहला गीत किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म है

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म हमराज का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस विराम के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म हवस का ये गीत।

और अब सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म हीर रांझा का ये गीत। गीतकार कैफ़ी आज़मी और संगीतकार मदन मोहन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म हमराही का ये गीत। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
1: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
2: The Prime Minister said, India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation